तो कहते हैं यारो, प्यार करना जो है वो सिर्फ नसीब वालों को मिलते ही, कि ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल कर आता है जो जिसको नसीब में होता है।

और आपकी आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ सीन है। फिल्म के नाम है ये वादा रहा। कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बहाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और तुम्हारी नजरें क्यों खफा हो गई? कभी कभी नजर तो खफा हो जाते हैं कि मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। ना रूठो ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे। ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे, दिल के दुनिया तमाम कर जाएंगे। प्यार किया है हमने, कोई मजाक नहीं किया है, दिल के धड़कन तेरे नाम कर दी।

और जरा फिर से, और जरा फिर से कहना, और क्या कहना है हमारे यारो आपको, क्या कहना है, सोच मिलने चाहिए, दिल तो अपने आप ही मिल जाते हैं, तो शक ना कर मेरी जज्बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की, मरते इंसान के लिए बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

और क्या आप भी कभी भूला है और कभी याद किया है, लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे, तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया। तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह। हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में

0: ये पर्दा हटा दो।
1: और दोस्तों ये सब गीतों का महान प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं। है ये गीत जो है आपको जरूर सुनना चाहिए।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 Max Touch। Check!

और व्हाट इज योर मोबाइल नंबर सोनी निगम का यानी का ये गीत है हसीना मान जाएंगी, हसीना मान जाएंगी कि बिन आपके कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पल की जुदाई भी सही नहीं जाती, तुम खुद ही समझ लो और तुम खुद ही समझ लो और प्यार की लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं जाती, लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं।

मोर लेके पहला पहला प्यार, और कौन के ये पहला पहला प्यार है हमारे यारो। और उसके बाद अभी हम और आगे अपना प्रोग्राम को आम की सुनाएंगे। तो आज का सॉन्ग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: to enjoy ever.
1: और रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योगेश बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा. तो आओ चला जाए और वो है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएगी लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाटकी लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है और मूवी के नाम है मिस मेरी।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली। झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग के ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मूवी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

Out the heart of the millions, Mukesh. मूवी का नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का

बोलो बोतल में बंद जवानी पिल बिले दिल जा।

जाओगे। दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल मेरे पीछे बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो बोलो।

0: दरवाजा खोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो
1: और राम बोलो बोतल में बंद जवानी फरमान श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीतों आपको हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत, अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीने दिल हो जवान पद्मा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी हो हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का पद्माश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते हैं और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मौफी का नाम है, मौफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती जटले, जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जी लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को निकटीन 55 तक का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत। एंड सेशन सेस्टक का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों दिल के भंवरे करे पुकार अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहीं पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं एक गीत है दोस्तों, देखती होंदत ऐसा सफेर तक का, मौफी का नाम है अनमोल घड़ी, अनमोल घड़ी मौसी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों। Toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet. Ik heb deze film ook niet gezien. Maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर, वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जॉनी जरूर चलाना, तो हम जरूर चलाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए। ये कालम नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है।

पी हम उड़ जाएंगे, मूवी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों। और इस फिल्म में इस गीत को गाए है शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपने जिंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहूर राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाओ नेगेटिव 125 का ये सॉन्ग है दोस्तों। और इस गीत आओ सुना जाए, दिस इज हेमंत दादा।

Bajal. 1953 kan je zongen. Auro bachpan me mohabbat bahut log kiya hai. बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं, जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है। और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है, तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

गौरव बचपन के ये दिन आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत के जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सड़क के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम

सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से सुबह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं हूँ संजय और आपके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे।

और जहाँ खुशी है तो कहीं भी गम भी हो सकता है, तो जहाँ गम है भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि उन्हें शक्ति प्रदान करे।

जो तैयारियां कर रहे स्कूल जाने के लिए, तो उनसे कहूंगा कि माँ सरस्वती जो ज्ञान का भंडार देने वाले हैं, उन्हें भूलना नहीं।

जैसे कि अभी आपने सुने हरिओम सरन जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन। सुनने वालों, ऐसा हुआ कि प्रश्न गुरु महाराज जी, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है और उनका ये नाम क्यों पड़ा, बताने के कृपा करें, ऐसा प्रश्न रखे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न रखा गया तो उसका उत्तर ये कहा जाता है कि पशुपतिनाथ शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक शब्दादिक और एक तात्विक।

कि शब्दिक अर्थ जब लिया जाए तो पशुपतिनाथ, पशु पति और नाथ तीन शब्दों से और जुड़ा हुआ है, अर्थात पशुओं का पति वह नाथ। पति का अर्थ होता है पथ रखने वाला, कहा गया है कि नानक पथ पति जाइए जा पति राखे सोई। नाथ अर्थात भगवान। इस अवप्रकार पशुपति नाथ का अर्थ हुआ पशुओं का रक्षा करने वाला भगवान।

जय माता दी जयकार के साथ ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनवलो, भारत में एक गांव कहा जाता है मोहनजोदड़ो नाम से, और एक बार ऐसा हुआ कि एक भयंकर बाढ़ आए और वो पूरे गांव वहां से लुप्त हो गया था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो एक गांव था और वहां पर खुदाई हो रहे थे, यानी कि वैज्ञानिक द्वारा जो हम आर्कियोलॉग कहते हैं, और वहां से भगवान शिव का एक बहुत पुरातन तस्वीर मिली। इसमें भगवान शिव ध्यान के अवस्था में बैठे हुए हैं। चारों ओर पशुओं बैठे हुए अर्थात

कहा जाता है चित्रित में अस्पष्ट भगवान शिव को पशुओं की स्वामी के रूप में अवचित्रित किया गया है। वैसे भी हम देखे कि भगवान शिव के गले में सर्प को अवधारण किया है। और उनका वाहन भी एक वृषभ यानी कि एक बैल है। केवल भगवान शिव के ही नहीं, सभी धर्मों के अनेक और देवी देवताओं के वाहन पशुओं ही है। जैसे देखा जाए कि सरस्वती माता का वाहन हंस है, देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू, गणपति का वाहन मूषक है, देवी दुर्गा का वाहन सिंह और रोम का देवता विनस का वाहन

संकेत है कि पशु परमात्मा द्वारा और रचित इस सृष्टि के अभिन्न वे महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि समय और परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार कई बार ईश्वर ने पशु रूप में भी अवतारित लिया।

विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कश्यप और मुवारह अवतार पूर्णताय पशु रूप में ये थे और नरसिंह अवतार आधा नर और आधा पशु रूप में अवतारित थे।

ईश्वर ने तो हमें कितने ही अवसंकेतों द्वारा समझाया है, पशु भी परमात्मा की ही रचा तथा परमात्मा के ही रचना है और उसे प्रिय है।

रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने कहे है कि मम माया संभाव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उप जाया अर्थात ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है और भगवान ये भी कहते कि वे सभी मुझे प्रिय है क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। सभी हमारे प्रिय होते हैं। समझ समझ के समझो, ये भी एक समझ है क्योंकि इसमें हमें किस प्रकार दृष्टि डालना है। जितना चराचर जितना जीव है, कहावत है कि सब भगवान के द्वारा उत्पत्ति भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

गया है कि अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोही बराबर ही दया, कि सब पर मोही बराबरी दया। ये संपूर्ण विश्व मेरे पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी और बराबरी दया, यानी कि बराबर का और दया है।

कवि ने इन्हीं अवभावों को शब्दों में कुछ यूं पिरोया है। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, कि मानो पशु पक्षी लता पदप कीट पतंग सब में प्रभु नित्य वास रहे। सब में उनके अंग कहने का भाव कि इस अवधारा पर श्वास ले रहा प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है, इसीलिए प्रभु को अप्रिय है। परंतु ये सभी सत्य ही है। इन सभी जीवों में से मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कृत्य है। ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया है।

संबंधों का कुछ पांच सीढ़ियां होते हैं। देखना पहला होता है, अच्छा लगना दूसरा होता है, चाहना तीसरा और चौथा होता है पाना। ये चार बहुत सरल सीढ़ियां है। सबसे कठिन पांचवा सीढ़ी है, इसे हम निभाना कहते हैं। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अक्तंत भजन प्रोग्राम जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और अगला भजन जो रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

अनूप जलोता जी के आवाज में हम सब सुंदर सा भजन को जो सुने, रोतदम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोतदम वेस्ट ब्लॉक बाकर स्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कोलन कॉम्प्लेक्स भवन से पंडित मंडली सभापति श्रीमान पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से कि जिंदगी वही है, जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं।

गंगा के किनारे, ये हरीशराज रघुवंशी ने ये सुंदर सा भजन को और गाए है। अगला भजन जो हम रखने वाले हैं हमारे अख्तुंत भजन प्रोग्राम कार्यक्रम के

शिव ही मेरी स्तुति, शिव ही मेरा ध्यान, शिव ही है मेरे गुरु, शिव को कोटि कोटि प्रणाम। अगला भजन का मांग करने वाले श्रीमती लीलियन मोतीराम जी। श्रीमती लीलियन मोतीराम जी जो अपने ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए मांग किए हैं। दुनिया के हर एक कोना में जहां तक इंटरनेट है ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है।

हर हर महादेवा रे देवा। ये सुंदर सा भजन जो स्पॉन्सर किया गया फ्रॉ लिलियन मोतीराम जी के ओर से,

जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाला होता है, जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाले होते हैं, उनके लिए दुआएं अपने आप निकल आते हैं। हमारे फाहन का दिरक्सी और सभी स्टाफ लेडर की ओर से ये सुंदर सा भजन जो हम अब आपके लिए प्लेयर पर चुन करके रखे हैं।

सुनने वालों, ये सुंदर सा भजन जो हमारे डायरेक्सी और स्टाफ के ओर से रखा गया। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं और अनूप जलोता जी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे अगला भजन जो स्पॉन्सर किया गया है दनहा खै क्नुतल स्त्रातिन हिंदी प्रचार संस्था परिवार चांद गुरबीन के ओर से। हिंदी के बारे में कुछ भी मानो बात आपको करना है, कैसे पढ़ना है, लिखना है, कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में आप जरूर चांद गुरबीन जी को और मालूमात कीजिए। उनका तार का नंबर है 06 45 09 05 26। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

0: सुख के सब साथी,
1: मेरे राम
0: दुख में ना कोई। सुन वालों, यहाँ आज तक हमारा हिस्सा कार्यक्रम का। आशा ये रखता हूँ कि आपको कुछ न कुछ अच्छा लगे होंगे।
1: दुख में ना को।
0: सुने वालों, ये कहा जाता है कि वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। मैं हूं आपका सेवक संजय, और आपको एक शुभ दिवस फैन दख्तुखवंस्त।

किसी तरह बुझाई न गई, आग जिस दिन से लगी आँख लगाई न गई। निगह ना से घायल तो बेशुमार हुए, नजर लड़ान में दिल सैकड़ों शिकार हुए। न न न नीर बह

मोहब्बत में जान खोता हूँ, दिल के अरमान किसी के न निकलते देखा, जिसको देखा कफे अफसोस ही मलते देखा।

जान अपनी गंवा दी इसने, इश्क ने कर दिया है सैकड़ों घर को वीरा, रस्म उल्फत का निभाना नहीं जाकिर रास, सोच अगर है

नजर में मुफे के बैठो अभी गुस्सा नजर में इस तीर से बढ़ जाएगा नाथ।

ये लुत्फ का एजाज है, ये जुल्म का जादू। ये लुत्फ का एजाज है, ये जुल्म का जादू। अकीर भी है, सहर भी है।

ਤੇਜਾਂ ਸੁਰਾਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਜਾਂ ਸੁਰਾਈ ਮਸਤੂ ਕਰ।

रस गरस यह दीदार हो तेरा जन्नत से गरज ये हके दीदार हो तेरा भूरे नहीं जस्ती तेरे बेहो।

जिंदगी या खातिर साथी को देखता मुझको ये शर्मी आई के शर्मा के पी गया।

0: तेरे बिना भी क्या जीना है, ये सुंदर सा गीत निकाला गया फिल्म का नाम जो मुकद्दर का सिकंदर। ऐसा एक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना कला से प्रदर्शन दिए, उसमें एक्ट्रेस राखी जो खेले है, और आज ये सुंदर सुंदर गीतों जो चल रहा अमिताभ बच्चन का। तो शांता जी, आप एक्टरों में से अमिताभ बच्चन का फैन हो या कुछ उनके फिल्म जो देखते रहते हो आप या नहीं देखते रहते हो, क्या उसके बारे में आप क्या सुना सकते हो?
1: अमिताभ बच्चन जी, द बिग बी, ये एक्टरों में से भी एक मशहूर एक्टर है, और देखना कि कितना फर्क है ना, जब ये जवान था तो लंबू से कहते थे, और अब तो देखो कितना दिनार हो गया, 80 साल, लगभग 80 साल का हो गया है ना?
0: नहीं, 80 से ज़्यादा हो गया,
1: 80 से ज़्यादा।
0: और ये मुझे बड़ा गर्व की बात है कि एक ऐसा एक्टर है, कुछ साल पहले जो यहाँ हॉलैंड में एम्स्टर्डम में हुआ था आईफा अवार्ड
1: जी,
0: तो आईफा अवार्ड जब हुआ था शांता जी, तो हम एयरपोर्ट से और काम करते हैं थे, और उस समय हम लोगों ने वो आईफा अवार्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें जुड़े हुए थे, और कहते हैं कि बड़े बड़े बड़े ढेर सारे एक्टर्स आए ना आईफा में, कितने एक्टर को जो हम जानते ही भी नहीं थे, पर अमिताभ बच्चन एक ऐसा एक्टर है, कोई कहे दुनिया पे कि वो अमिताभ को नहीं जानते तो मुश्किल होगा।
1: पूरा दुनिया ना सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तान में ये मशहूर है, बल्कि जैसा आप कहते हैं पूरा दुनिया में
0: ये मशहूर है। ऐसा एक एक्टर भी, जैसे अमेरिकन एक्टर, जैसे कोई कहे कि हम माइकल जैक्सन के नहीं जानते हैं, तो क्या उस पर आप क्या कह सकते हैं?
1: एक माइकल जैक्सन है और एक अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान जी है, और अमिताभ बच्चन को भी हमारा जो तुर्की है ना, और कैसे पहले इथियोपी के मलई लोग जो है, वहाँ के लोग जो है, तुर्की के मोरक्कानो भी मारोक्को को, वो सब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को। और फिर अमिताभ बच्चन के खूबी ये है, इनसे हम भी सीख सकते हैं कि आज तक वो ऐसे कहीं बैठे ही नहीं है, वो बिजी रहते हैं। और अगर आप बिजी रहते ना, जब आप बैठ जाओगे तो जीवन ख़त्म। और ऐसे जैसे अमिताभ बच्चन एक अच्छा सीख करते कि कुछ ना कुछ जरूर से जरूर करते रहो अपने जीवन में।
0: मीनाक्षी जी इस पे भी कुछ कहने वाले हैं।

0: और फिल्मों में अभिनय उनका बहुत ही बढ़िया रहा है, कई फिल्में तो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है कई फिल्मों ने तो उनका, तो एक इंडिया के एक बेहतरीन अभिनय नेताओं में से एक हैं वो।
1: सबसे मशहूर फिल्म शोले।
2: एक हाँ, पर चलो शोले जो 2025 में फिर से दोबारा रिलीज किया गया ना, 2025 की 26 में उसे फिर से उसे 26 में मैं उसे फिर से जो बनाया गया उसमें फिर और म्यूजिक और रंग आदि यानी कि फिर का फिल्म बनाया गया। शांता जी आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, बबली जी आप क्या कहने चाहते हैं?
3: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, उनको
2: ऐसा ये नाम कैसे पड़ा?
3: क्योंकि वो ज़्यादातर उस टाइम पे थोड़ी लड़ाई वाली फिल्में बनते थे और पारिवारिक भी बनती थी, तो वो थोड़ी लड़ाई करते थे इसलिए उनको पता नहीं, मैं भी नहीं जानती पूरा तो कि कैसे उनका नाम एंग्री यंग मैन पड़ा। और जब शुरू में शांता जी मीनाक्षी जी वो फिल्मों में आना चाहते थे तो डायरेक्टर कहते तुम एक्टर नहीं बन सकते, इतनी लंबी टांगे पतले थे, तो कहते ना। तो वही देखो बाद में जो उनको मना करते थे वो भी उनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते, ऐसे ही होता है ना, कहते चढ़ते सूरज को सलाम है, जब इंसान मशहूर हो जाए तो हर कोई उनकी वाह वाह करता है।
2: उनके समय पे देखो कुछ एक्टर्स जो जैसे अमजद खान, एक बहुत बेहतरीन एक्टर जो एंट्री लिए थे शोले फिल्म से ना, और काफ़ी फिल्म उनके साथ उन्होंने खेले है और बनाए हैं। देखा जाए कि एक एक उसमें से एक फिल्म जो निकाला जाए किशोर कुमार के आवाज़ में, मैं सुनाना चाहता हूँ।

सुनने वालों, अभी आपने सुना फिल्म कालिया से निकाला गया ये गीत, जो अमिताभ बच्चन और अमजद खान ने उसमें अपना कला से प्रदर्शन दिए। प्राण भी थे उसमें, कालिया में अमजद खान थे, प्राण भी थे ना, उसमें ऑफिसर हुए हैं और भी।

0: अभी एक दो गीत चलाएंगे अमिताभ बच्चन के फिल्मों के बारे में। और क्या और सुनाने वाले हैं बबली जी आप?
1: और इस फिल्म का डायलॉग था, कल्लू से कालिया बन गया।
0: कल्लू से कालिया बन
1: पहले
0: गया,
1: उसका नाम कल्लू होता है, तो जब फिर वो बड़ा बन जाता है तो कालिया बन जाता है।
0: अब देखो राइटर लोग कितना अच्छा अच्छा संदेश रख देते हैं कि कल्लू जो प्यार से अपने बेटा का कोई कल्लू पुकारते हैं, फिर बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा यानी कि अपना कला से प्रदर्शन में जो एक कैसे कहते हैं कि इसमें ये कालिया फिल्म किसके बारे में जा है? वो जमीन का, जमीन में से वो तो कोयला है ना, काला पत्थर है
1: ना, ये तो फिल्म थी उसके ऊपर। अरे वैसे चोरी चकारी,
0: चोरी चकारी के अंतर्गत था। और यही कल्लू जो कुत्ते भोगते थे तो डर के मारा भागते थे और बाद में ये कालिया बन जाता है।
1: और मिस्टर नटवाला में भी पहले नाम नट्टू होता है तो फिर मिस्टर नटवाला।
0: हाँ बिल्कुल, नट्टू से नटवालाल हो जाता है। चलो एक और भी मुकद्दर का सिकंदर का निकाला हुआ गीत जो अमिताभ बच्चन और रेखा जो इस फिल्म में काम किए हैं चलाते हैं।

0: जिंदगी हर कदम जीत जाएंगे हम
1: जिंदगी।
0: यहाँ तक था हम सबका जो आज का कार्यक्रम। आशा यह रखता हूँ कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। कुछ हिले मिले गीतों के साथ कार्यक्रम में हम सब आपके साथ जुड़े रहे। नमस्कार।

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेव कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए हैं एक फिल्म जो 2025 में नई खतीन मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मार तार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल की शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सो न्यूज़कीरक बे हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जाह्नवी कपूर के

सुन, कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

प्रभु का नाम तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुनकर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे शाहिद कपूर और कृति सनान, एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों, हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर, उससे एक और गीत रखेंगे।

फिल्म जिसमें काम किए हैं रणवीर सिंह और नया कलाकार सारा जो अपना कला को प्रदर्शन दिए है। दोस्तों मैं एक और सॉन्ग चुनकर रखे हुए हैं 2026 के नए सॉन्ग से निकाला हुआ तेरा प्यार में। और ये फिल्म में आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है उसने काम यानी कि उसके ओर से रखा गया। देखते हैं क्या सुना रहे हैं।

एक फिल्म जिसमें आर्यन खान और राश मीखा ने काम किया है 2026 में, और ये गीत जो रजिस्टर हुआ है और देखा जाए कि कितना सुंदर रूप से ये अपना कला को प्रदर्शन किए है। एक और फिल्म का नाम जो भूत बंगला है अक्षय कुमार का, और ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है। अक्षय कुमार का भूत बंगला, जो उससे मैं गीत रखने को कोशिश करेंगे।

0: समझ रहे हो, उनकी जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं. फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं.

आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का, अदवाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माय लव से हमने पेश किए हैं रुक जा ऐ हवा, लता जी आपको सुनाने वाले हैं ये सुंदर सा गीत, आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे रुक जा ऐ हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।
1: ए नर्क

अभी आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका। फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

0: कर दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती हैं, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती हैं, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए? किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा, आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

अभी आप सुन रहे थे मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, और ये गीत पेश किया गया वीरेश शिवराज जी की याद में, जो इस दुनिया को छोड़ चले हैं, हम सभी को छोड़ चले हैं। तो उन्हीं की याद में माता और पिता ये गीत अपने बेटे के लिए मांग कर रहे थे। नीदरलैंड देन हाग से बहन अश्विनी शिवराज अपने भाई की याद में ये सुंदर सा गीत मांग कर रहे हैं, जबकि उनकी भाई इस दुनिया से चले गए हैं, सभी को छोड़कर चले गए हैं 4 जुलाई को। और बहन अश्विनी जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महात्मा आत्मा गए हैं, भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे और परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे। ये गीत के साथ

देनहा का रहने वाला वीरेश युवराज, जिनकर आयु 37 साल की थी और जिनकर मृत्यु हुई गत शनिवार 4 तारीख जुलाई को, और दाह संस्कार किया गया 7 तारीख जुलाई को क्रेमेटोरियम लेपनहॉफ डेल्फ में, तो उन्हीं की याद में उनकी बहन ये गीत को मांग किए थे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा है, भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे और परिवार को सहन शक्ति दे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। भाई ने निखिल गोपी अपनी मामा की याद में ये गीत को मांग करते हैं, जबकि मामा जी उनसे बिछड़ गए हैं, उनके परिवार से भी बिछड़ गए हैं, तो निखिल उन्हीं की याद में ये गीत को मांग किए हैं। तो निखिल गोपी ये सॉन्ग हम यानी स्पेशली पेश करते हैं आपके मामा जी के वास्ते।

ये गीत को मांग किए थे निखिल गोपी जी अपनी मामा की याद में, जबकि उनके मामा उनसे बिछड़ गए हैं, उन सभी से बिछड़ गए हैं गत 4 तारीख जुलाई को और 7 तारीख जुलाई 2026 में इनकी दाह संस्कार किया गया क्रेमाटोरियम लेपनहॉफ डेल्फ्ट में। तो उन्हीं की याद में निखिल जी यानी निखिल गोपी जी ये गीत को मांग किए थे। लेट्सहफेन के रहने वाले मौसी श्रीमती चित्रा रामावतार लक्ष्मण अपने बेटे की याद में, मौसा श्रीमान रॉबी रामावतार अपने बेटे की याद में, दो बहन शर्मिला और आशा अपनी भाई की याद में, दो बहनों जिमी और सुरेन अपनी सार की याद में, 5 लड़के जैसे नादिया जेमी शेन दिलन और जेदन के तरफ से अपना भाई, और मिखाइल के तरफ से अपने सार की याद में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करें और परिवार वालों को सहन शक्ति दें।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, और ये प्रोग्राम पेश किया जाता है वीरेश शिवराज यानी स्वर्गीय वीरेश शिवराज की याद में लेट्स हफेन से मौसी और मौसा चित्रा रामावतार लक्ष्मण मौसा रॉबी रामावतार अपने बेटे की याद में दो बहन शर्मिला और आशा अपनी भाई की याद में दो बहनों जेमी और सुरेन अपने सार की याद में पांच लड़के जैसे जेमी शेन नादिया दिलन जेदन अपने भाई की याद में मिखाइल अपनी सार की याद में ये प्रोग्राम यानी ये गीत को मांग किए थे। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे और परिवार के लिए सहन शक्ति भी मांग किए हैं। लेट्स हफीन के रहने वाले मौसी और मौसा आलिस लक्ष्मण और इवान जियावन अपने बेटे की याद में सुनीता इन और फितेज अपने भाई की याद में आशना अपने देवर की याद में स्टैनली अपने सार की याद में शिरानो जेसन जॉर्डन यानि शिरानो जेसन जॉर्डन अपने मामा की याद में ये गीत को मांग किए हैं। और वीरेश शिवराज उनके यानी शिवराज उनके मामा जी जो थे और गत चार तारीख यानी शनिवार 4 जुलाई को जिनकर मृत्यु हुई और गत मंगलवार 7 जुलाई को जिनकर दाह संस्कार किया गया इपनहॉफ डेल्फ में यानी क्रेमाटोरियम इपनहॉफ डेल्फ में। तो भगवान से ये सब मिल करके यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे और परिवार वालों को भी सुख और शांति प्रदान करें।

अब ये आप सुन रहे थे जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेसोफीन के रहने वाले मौसा और मौसी श्रीमान आइवन जियावन और श्रीमती आलिस लक्ष्मण के तरफ से अपना एक बेटा, सुनीता इनफितेश के तरफ से अपना भाई, आशना के तरफ से अपना देवर और जेसन जॉर्डन का मामा, यानी जेसन जॉर्डन और शिरानो का मामा वीरेंद्र शिवराज के लिए ये गीत को मांग किए थे और ईफन अपने काका की याद में ये गीत को भी मांग किए हैं, जबकि काका जी उन सभी से बिछड़ चले हैं। गत 4 जुलाई 2026 में और इनकी दाह क्रिया किया गया क्रेमाटोरियम इपनहॉफ डेल्फ्ट में, तो उन्हीं की याद में ये गीत को मांग किए थे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। नीदरलैंड वुर्डन के रहने वाले मौसा और मौसी महेश शंकर और नीला शंकर लक्ष्मण अपने बेटे की याद में, विनंत और रोफाना अपनी भाई की याद में, उदित अपने सार की याद में और तीन बच्चे अपने काका और मामा की याद में ये गीत को मांग किए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं उस आत्मा को शांति मिले और परिवार वालों को सुख उनकी, यानी सुख और उनके परिवार वालों जो है उनके आत्मा को भगवान सुख और शांति प्रदान करे, ये गीत के साथ।

ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे और ये गीत पेश किया गया वीरेश यानी स्वर्गीय वीरेश शिवराज जी की याद में, जबकि वो इस दुनिया को छोड़ चले हैं। तो बूढ़े से श्रीमान महेश शंकर यानी मौसी और मौसा, श्रीमान महेश शंकर और नीला शंकर लक्ष्मण अपने बेटे की याद में, विनंत और रुफाना अपने भाई की याद में, उदित अपने सार की याद में और तीन बच्चे अपने मामा और काका की याद में ये गीत को मांग किए हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा है उस आत्मा को भगवान सुख और शांति प्रदान करे और परिवार वालों को सहन शक्ति प्रदान करे। नीदरलैंड से सोनिया लक्ष्मण यानी मौसी जो है और मौसा रॉब अपने बेटे की याद में, नयन बसंतराम और एंडी बसंतराम अपने भाई की याद में, वंदना अपने देवर की याद में और याना अपने काका की याद में ये गीत को मांग किए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब की।
1: अभी आप सुन रहे थे लो खून से खून जुदा हुआ, मुश्किल से जो मिल न पाया, वो मिल के भी फिर ना मिल सका, तकदीर को ना भाया, लो खून से खून जुदा हुआ। और ये गीत कुमांग किए थे सोनिया लक्ष्मण यानी मौसी, सोनिया लक्ष्मण मौसा रॉब और नयन और एंदी बसंतराम के तरफ से अपना भाई, वंदना के तरफ से अपना देवर, याना के तरफ से अपना काका, और जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं यानी स्वर्गीय वीरेश शिवराज, उसी के आत्मा के लिए ये परिवार मिलकर के भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं उन्हें सुख और शांति प्रदान करें और परिवार वालों को यहाँ पर सहन शक्ति प्रदान करें। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। नीदरलैंड से मामा और मामी श्रीमान जगदीश लक्ष्मण और श्रीमती शीला लक्ष्मण भुलाए, तीन बहन रेणुका मनीषा शरिष्ठा अपना भाई, विशाल अपने सार, वीरायशा और रियान अपनी मामा की याद में ये गीत को मांग किए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। और जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उन्हें सुख यानी सुख

ये प्रोग्राम पेश किया जाता है वीरेश शिवराज यानी स्वर्गीय वीरेश शिवराज जी की याद में, जिनकर आयु 37 साल का था और जिनकर मृत्यु हुई गत शनिवार 4 तारीख जुलाई को और दाह संस्कार किया गया गत मंगलवार 7 तारीख जुलाई को क्रेमाटोरियम इपनहॉफ डेल्फ्ट में। उनकी अस्थियां कल शनिवार 25 तारीख स्केफनिंगन के नदी में प्रवेश किया गया। तो आज उन्हीं की याद में ये प्रोग्राम पेश किया जाता है और ये गीत को मांग करने वाले थे देन हाग से श्रीमान यानी मामा जी श्रीमान जगदीश लक्ष्मण अपने बहने श्रीमती शीला लक्ष्मण भुलाए अपने बेटा की याद में, तीन बहनें रेणुका मनीषा शरिष्ठा अपने भाई, दो दामाद अपने सार की याद में और वीरायशा और रियान अपने मामा जी के याद में। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे और परिवार वालों को सहन शक्ति प्रदान करे। देन हाग के रहने वाले श्रीमान शोर्ष लक्ष्मण यानी मामा जो होते हैं श्रीमान शोर्ष लक्ष्मण अपने बहने श्रीमती सविता लक्ष्मण भुलाए अपने बेटा की याद में, शैनिस और जूलियन अपने भाई की याद में ये गीत को मांग करते हैं और भगवान से यही कहते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं उस आत्मा को सुख और शांति प्रदान करें।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती, भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले।

परेशान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

अभी आप सुन रहे थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और ये गीत को मांग करने वाले थे मामा शोर्ष लक्ष्मण और मामी सविता लक्ष्मण भुलाई अपने बेटे की याद में, शहनीस और जूलियन अपने भाई की याद में। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा है गए हैं, भगवान उस आत्मा को सुख और शांति प्रदान करे और परिवार वालों को सहन शक्ति प्रदान करे। सुतमेर के रहने वाले मामा हैंक लक्ष्मण अपनी बेटे की याद में, मामी एल्फिया अपने बेटा की याद में, दो बहनें एलिशा और तेसा अपनी भाई की याद में, दो भाई फ्रांसिस और कॉकी अपनी भाई की याद में ये गीत को मांग करते हैं, यानी ये गीत को मांग करते हैं स्वर्ग शिवराज यानी वीरेश शिवराज जी की याद में, जो हम सभी से बिछड़ चले हैं यानी परिवार से बिछड़ चले हैं। और जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं, भगवान उन्हें सद्गति प्राप्त

0: Julia.
1: Dinner ready?
0: Not tonight, darling. Michael? Yeah.

0: अभी आप सुन रहे थे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं तो धूप जिंदगी, हर पल जहां जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। सुतमेर के रहने वाले मामा जो होते हैं श्रीमान हैंक लक्ष्मण और मामी एल्फिया, अपना बेटा, दो बहन एलिसा और तेसा अपने भाई, दो भाई फ्रांसिस और कॉकी अपने भाई की याद में ये गीत को मांग किए थे, यानी वीरेश शिवराज के लिए मांग किए थे, जबकि उनकर मृत्यु हुई 4 जुलाई 2026 को और उनकी अंत्येष्टि की संस्कार किया गया 7 जुलाई को क्रेमाटोरियम इपनहॉफ में जो डेल्फ्ट में है। तो उन्हीं की याद में ये परिवार ये गीत को मांग किए थे और जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे। सुनने वालों, प्रोग्राम हम बाकी में पेश करेंगे क्योंकि यहाँ पर से यानी अब समय हो चला है विज्ञापन का। चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।
1: बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 973652247। मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahong Hindustani Radio.
0: सुनने वालों, यहाँ तक आप सुन रहे थे इश्तिहारे और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। ये शोक प्रोग्राम पेश किया जाता है स्वर्ग यानी स्वर्ग वीरेश शिवराज जी की याद में, जिनकर मृत्यु हुई गत शनिवार 4 जुलाई को और उनकी दाह संस्कार किया गया 7 जुलाई को क्रेमाटोरियम इपनहॉफ डेल्फ्ट में जो है, तो डेनहाग के रहने वाले श्रीमान विनोद लक्ष्मण अपने बहने की याद में, विजंती नाथू अपने बेटा की याद में, रायनीश लक्ष्मण और अक्षय करण गरीब अपने भाई की याद में, रायन जस्टिन अक्ताप आयत और कबीर अपनी दादा की याद में ये गीत को मांग कर रहे हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

वीरेश यानी स्वर्ग वीरेश शिवराज जी जो हम सभी को छोड़ चले हैं, इस दुनिया को छोड़ चले हैं गत शनिवार 4 जुलाई को, और जिनकर दाह क्रिया यानी दाह संस्कार किया गया 7 जुलाई को क्रेमाटोरियम इपनहॉफ डेलफ में, और जबकि मामा जी जो होते हैं देनहाग से, मामा जी विनोद लक्ष्मण अपने बहने विजयंती नाथू अपने बेटे की याद में रायनीश लक्ष्मण और अक्षय करण गरीब अपने भाई की याद में रायन जस्टिन अक्ताब आयत कबीर अपने दादा की याद में और फहीमा अपने बड़कू की याद में ये गीत को मांग किए थे, और भगवान से हम सभी मिलकर यही प्रार्थना करते हैं इस महान आत्मा के लिए कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा हैं भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे और परिवार वालों को सहन शक्ति दे। नीदरलैंड देनहाग के रहने वाले मौसी जो होते हैं अशना बसंतराम लक्ष्मण और मौसा रुबेन लक्ष्मण अपने बहने और बेटे की याद में रायन और जस्टिन अपनी यानी अपने भाई की याद में ये गीत को मांग करते हैं।

समझौता खामोशी कर लो ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं स्वर्गीय वीरेश शिवराज जी की याद में, जिनकर मृत्यु हुई 27 साल की आयु में 4 तारीख जुलाई को और 7 तारीख जुलाई को क्रेमेटोरियम इपनहॉफ में उनकी दाह संस्कार किया गया। तो मौसा रूबेन बसंतराम, मौसी आशना बसंतराम लक्ष्मण अपने बेटे की याद में, रायन और जस्टिन अपनी भाई की याद में ये गीत को मांग किए थे। प्रोग्राम को इस प्रोग्राम में एक गीत और हम पेश करने वाले हैं और ये गीत को मांग करने वाली है शांता बिहारी जी, मौसी शांता बिहारी जी और 3 बहन और भाई मिल करके ये गीत को मांग करते हैं अपने भाई की याद में, अपने बेटा की याद में, यानी स्वर्गीय वीरेश शिवराज जी की याद में। चलिए ये गीत हम पेश करते हैं।

ये गीत पेश किया गया स्वर्गीय वीरेश सिंहराज जी की याद में, जिनकी मृत्यु हुई गत शनिवार 4 जुलाई 2026 को और दाह संस्कार किया गया 7 तारीख यानी मंगलवार 7 जुलाई को क्रेमेटोरियम इपनहॉफ जो डेल्फ्ट में है। तो देनहाग से मौसी अपने बेटे की याद में और 2 बहन एक भाई अपने भाई की याद में ये गीत को मांग किए थे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे और परिवार वालों को सहन शक्ति प्रदान करे। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के अंत में सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो सभी परिवार वालों के तरफ से पेश किया जाता है वीरेश शिवराज यानी स्वर्गीय वीरेश शिवराज के नाम हम पेश करते हैं उन्हीं की याद में। और हम सभी मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं वीरेश शिवराज जी के लिए कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उस आत्मा को सुख और शांति प्रदान करे और ख़ास करके हम लोगों को सहन शक्ति प्रदान करे। तो इसी के गीत के साथ ये प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे और हम आशा रखते हैं आप सभी से कि जो भूल हमसे हो गई हो इस प्रोग्राम में तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा प्रोग्राम ये परिवार वालों को बना कर दूँगी कि वो हमेशा जिंदगी भर यानी जिंदगी भर एक यादगार बनकर रह जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये सुंदर सा सॉन्ग हम पेश करते हैं उमर जी की आवाज़ में।

0: kalana jani unchinich kalana jani jaat sorti mata dj humko apni aashirwaad de
1: teri shayari
0: तमाम रेडियो फाहुन की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम

दोस्तों हम एक ही दम बढ़ते हैं अपना समाचार की ओर और हमारे नानी नाना मौसी मौसा जी आजा काका काकी सबके यहां से जॉनी के यानी कि प्यारा अब तक पहुंचे हम चलते भैया एक बार ना 14 बार फिर 3 केरमेन से 14 बार हमारे यारो 14 बार यहाँ पे भैया चोर लोन चोरी करी से 14 बार उस जहल काटी से और निकल के आवे है तो फिर अपन धंधा चोरी के शुरू कर देवे भैया सलेर नीत अब 2 आदमी भैया बताए गए है 14 बार फॉर और डील करी से सिपाही ओके फॉर डेंकिंग फॉर दीप स्टाल के बारे में इन औतन वेर द फॉर्मूलक भैया इन बा इन इन ब्राक और रेडिएटर एर मेदर एल्युमिनियम अंदर डीलन आन खतरोफन और एगो फैफन देर तक यार के गो नीघन फेर तक यार कितना सोचे भैया लोन अनिमर है बदराई फना इस सब के काम है चोरी करके 14 दाई इदेगो कपड़ी भैया सिपाही के पकड़ चुकल है और बतावे हैगा सिर्फ यार में होते इनमें फिन एक पकड़ी से और बोले एगो मार्टिन लिकलन लुथर्स किंग वेक में पकड़े रहा तेन होक्त फन अन बदरेव मेदर स्मा के बारे में और इस सब के सिपाही 14 बार जहल काटी जाने पकड़ी से और फिर से 15 बार पकड़ाई गई है और बताया द फरदाख्तर को द नीड फील लातर ऑफ द सेल्फ द वेक फॉर द स्टाद द खाउद बे दोर सुकिंग ओकर ऑटो में तरादिया तोर पाई से कर कॉफर बाग में अल्मुनियम पाई से अंदर तेल पाई से सब इस सब चोरी कर ले रहा भैया तो बोले हैगा सेस फोनस ऑफ से नाम इन 8 keer veroordeeld beiden zijn eerder schuldig bevonden de mannen zijn overgebracht naar het politiebureau Houtenke bakitu ja ne hua pe kahan theek se jahal hal mile hai de deze mensen leren zich nooit af mensen तो 14 बार ई अदमियन के दीगो की सिपाही पकड़ी से और ये सब तरी मनी बन हुए निकल जा फिर शुरू कर दे वही कमवा कर खम जाए भैया मारेंगो के ओर मारेंगो के ओर तो ये बात बोली जोनी मारेंगो को मारेंगो बोले ट्रैक ऑन बरे एक बार ख्रोंदन इन एंड गिव द मेंशन बाउ रे पे ख्रोंदन बोलेगा जितना ख्रोंदन है बोले जोन जोन ऑन बरे एक बार जे पर आदमी काम ना करे जंगल बोले सब इन ट्रैकर एनडीपी के पार्लियामेंटेरियन हैगा माइकल मोरेंगो बोले है रखेरिंग के बोले हैगा अफखलोपन यारन बोले बीते हुए सालों में जितना पर्सील बोले सबन बाटी से जहां पे जंगल है स्वंपू है बोले सब इन ट्रैकर फॉर फेलेंस इन ऑन बार एक बार बोले हुआ तो ना जाई पिए है दो दारों भरू बोले उस सब जगह ये स्वंपू जंगल हो बार एक बार ना है और बोले चाहेगा खेबी बी के और दे से खरोड़ लीफर बोले इन ट्रैक कर ले और बोले इन रेल दारफोर खरोंदन ऐत खेफ वार में से वेल द मोगलखाई धेवन ओम डायरेक्ट बोवन बोले स्वंपू जंगल तो आदमी के बांध डेले बाटे और बोले हुआ आदमी जाई ना पावे बोले ओके इन ट्रैक करके बोले उस सब के खात बोले दूसरा जगह दे जहां पे आदमी अपन घर द्वार बनाई सके है बोले इंटेंसिफिजेर्ड ए एक्ट बोग्रोंदन फॉर मेंसर वार से एक्ट कुनन खान बोवन बोले दैट लातन दैट डून से मोरेंगो इंटरव्यू में बताई से और बोले है ही अन रेगलमातिग में जोंगन टू स्प्रेकन दी एन पर्सील हैवन टूगेवेसन gekregen फॉर verschillende landmeter hebben benaderd maar nergens de nodige hulp krijgen तो एक बारे में बोले है जनता अन ई भैया बोले है ओम रेल करो के और ये पार्लियामेंटारी बोले हैगा दैसन द हजार को जगह है बोले हिलास इस हिल खरो डील फॉर द खरोंटन अफकलोपर यारन से uitgegeven maar nog steeds niet ontwikkeld hij pleit ervoor dat er goed voor onderzoek moet worden alvorens gronden worden uitgegeven hij vindt het daarom goed dat de huidige regering aan de andere kant gestart is met een woningbouwproject और ये बात बोले मोरेंगो दोस्तों तो हम और आगे जाते हैं
अपना समाचार की ओर। भैया गायाना में एक बोट बुड़ल है हमारी जनता, गायाना में एक बोट बुड़ल है। हाँ फिर बोत्रेम गायाना तिंग तालन फरमेस्ट न सिंकन फन एम्फी बा रीमा के बातचीत हुए है हमारे जनता, हमारे सुनने वालों, हमारे प्यारे प्यारे जनता। बोट बुड़ल है भैया गायाना में, तो यहाँ बतावे गए है शनिचर और अतवार के रात के एगो पशाशीर फेर बहुत है एमफी बारीमा रात के बुड़ल है रेडिस वर्कर से मसाल इन खसे तरवेल तीन तालन और फारन दन नौख वार्दन फरमेस जेकर लेग सबना पाई से सातदाख मेदाख के क्वार्ट ओवर थ्री जॉर्ज स्टोन में बोले हैगा मैं बस्टेमिंग naar Port Kaitumame en noordwesten van Guyana aan de boot bevonden zich volgens de autoriteiten 116 passagiers raha, 17 kamkarter raha en totaal 133 admir raha, 11 bije raad ke i boot bural hai en bolehega सब खोजे है रेडिंग्स ऑपरेशन भय लेगा बोले जेमा सेफनन सस्तक आदमी बोले है परसोन लीफन एडेड वादर खरे सेफनन सस्तक आदमी के लीफन मिल गए है अंदर वी किंदरन के भी पाई से फॉर द ओवर को ऑफ फारन वर्ड नो खसो बोले द सुक एक्सिस स्टैटिक से आउट ओवर खबीत फॉर मोर देन 1000 फीरकांत किलोमीटर में सबन ओके खोजे है बोट खोजे है फ्लिक्टर खोजे हेलीकॉप्टर खोजे दैकर्स खोजे है हेल्प फॉर फिशर्स एंड पर्टिकुलर फार्टाइकन सब गले सब के खोजे है फॉल्स एंड गायाना के अथॉरिटीटन हुआ बोले हैगा बोले फेल एक्सरसाइज मिडलन वार अंडर ऑनकफेयर 52 रेडिंग्स फेस्टन एंड मेर्डर रेडिंग स्लोटन द एक्जेक्ट ओरसाक फॉर द सिंकन ए बिना बरेक है बकेंट है अब बोले हैगा getijd omstandigheden juist zijn van de passagierslijst en mogelijke nalatigheid. De kapitein en enkele bemanningsleden zijn aangehouden voor verhoor. Volgens de autoriteit testen de kapiteinen en de eerste machine positief op marijuana. John Botia Chalau trouwens op Ganja Pilera Bhaya sabke eerste test mee milal hai. Overleden de spreker van angstige taferelen. Velen brachten uren door in het water voordat zij werden gereid, terwijl familieleden wanhopig wachter wachten op nieuws over de vermiste dierbaren. Op de Guyanese regering bolle toegewezen een diepgaande onderzoek instellen naar de ramp. Premier Mark Phillips, minister van OE, die euro is op verklaard gekregen dat iedereen die verantwoordelijk blijkt te zijn voor de nalatigheid of overtredingen ter verantwoording zal worden geroepen. Op de kapitein Lungaja Pique और चलावत राबोटिया भैया एक बारे में सरनाम जोन है मीडलीफ बताइक करिसेगा गायाना के और बोले है ब्यूरलान गायाना इस कप्स एस में पसाचीज एवं मानस लेदन अनबोर्ड में से और बोले एक बारे में मिनिस्टर बाउफा बैतलान से साक के और हंडल इंडस्ट्री के बोले गायाना के अमतनार स्कोट हुक दो तोत के भविष्यवान हीर बे नोड अंडरस्टैंडिंग टू खवीजन। तो बड़ा दुख के बात है कि इतना जनता गायाना में पानी में बुड़ के मर गए है, बहुत अफसोस के बात है। मारे एक फिर जो एरक में से दी कैप्टन सो फिल में से aan boord hadden en daar gaat ze nog met marijuana rokende en hoe ze precies geel hekken hebben. Ja, zijn naam is eindexamen tijd en eindexamen uitstel hoe je uitstel hoe je school me omdat vakleerkrachten naar hij bij baraduk gebaat is hoe hij eindexamen de school ke he bullet tekort aan vakleerkrachten. और बोले हैगा उसे के चाहिए अष्टस्थालक जो लेस चाहिए अफरोंद करे के एक एग्जाम जो है बोले लात्र मोमेंट पे हुई और ये बात हुए है खमीस का मोंगो टापू के
eindexamenkandidaten nog bezig met lessen voor het vak adreskunde. De school heeft pas onlangs een leerkracht gevonden die bereid is de leerlingen te begeleiden. We hebben niet zo lang geleden een collega gehad, gevonden om de kinderen te helpen, mensen. De Jebisocho Suriname, die is mee. Eindexamen, Junhe, Aruk Hasakgeheer. Omdat tekort aan vakleerkrachten, mensen. Ja, wat hij bij honderden geloven kan bij jou toen jij nu Krishna Janam Astami hey. Aure Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ja, per resideer kreeg hij. Zo'n go. Gelovigen kunnen.

hond de geloven gebijen hier betaal je he hamare mausiloon betaalwe atwaar ke reis versier de kar ego kar he so versier kalera Sri Jagannath Sri Baladev en Sri Subhadra ji door de straat van Kasaba Holome or bole hai rath yatra raha beter bekend als car festival where for the 11e keer in Suriname gehouden. Toen Oesap Koep Moise Ratyatra Rat Versierker ke. Of Sri Jagannath ke. Sri Baladev. En Sri Subhadra ji ke. Oma Dhar ke. Of Sabar Yat Ratyatra Nikari se. Of bole de deelnemers legden een route. Door 5 kilometer. Saban Gela eindbestemming ra. Iskon gebouw. Door de internationale. Societ voor Krishna. Consenes. In de welgelegenheid. Gelegen mensen, hoe wel gelegen ke hoek pe hem janela, aur sab khai ko ik sab baante bhaiya tulun jano hai, ye hai ga iskon ke Hare Rama Hare Krishna ke, aur bole daar werden beelden van drie golden, bole feestelijk verwelkom met gebieden van de vuurwerkshow en een bloemenhulde waarbij vanuit een heiskraal bloemen over de godheden werden uitgestrooid mensen, dat is zeker heel heel mooi, de eeuwenoude de traditie uit India die inmiddels taal van landen dunia bhar pe hui ge hai aur 2016 mein Suriname mein bhi hui ge hai aur bole sab gana bhajan kare hai nache hai aur bole prasad baate hai offer kare van voedsel dat binnen in de hindoeïsme als gezegend wordt beschouwd uitgedeeld aan de deelnemers en omstanders sab ke sab baate hai hamari janta aur rath yatra itna samaro ke saath mein sab nikari se ego groep sterke jonge mannen die grootste deel van elkaar vertrokken namen ook andere gelovigen om beurten plaats aan de dikke witte touw waarmee de kar werd bewogen. Tatai se jawan jawan jawan jawan london sab ghainche bhaiya aur utatai seven ghainchi se aur batawe hega het was een salak toch Mahadev Bainat Madhuriya Lili Devdas namens de organisatie aur batawe hega Volkes Bainat heeft ook het uitdelen van prasad een diepe spirituele betekenis. Prasad is de genade van Heer. Het voedsel wordt eerst aan hem geofferd en wat hij terugkrijgt, dat zijn de genade mensen. तो एक बारे में आप सबको बहुत बहुत बधाई है रथ यात्रा के मालूम ना है दिन हाँख में कब निकलेगा लेकिन वो निकलेगा जरूर कल हमें इस कौन से कांटेक्ट हुआ है और उसके बारे में कांटेक्ट हुआ है वो सब जोर तोर से शुरू करेंगे यहाँ पर भी रथ यात्रा निकालने के आप लोग जानो हैं स्केप स्ट्रास से रथ यात्रा निकलते हैं लेकिन वहाँ पे सब बेशक में फरबाउन में से आज दाट क्लार इस खान ze dat doen. Gisteren heb ik contact gehad met de voorzitter van ISKON. Dus dat gaat wel gebeuren. Dus dat gaat wel gebeuren in Den Haag. तो हमारे जनता हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हम चलते हैं प्रेसिडेंट सिमोन के जेनिफर सिमोन 22 तारीख के वुसदाग के यूली के ऊपर ट्रैक होएगा इंग्लैंड जाए भैया हाँ बोले बड़ी संतोखी ये घूमत रहा बोले घूमे संतोखी जा है जो देश देश जाता सबके बोले हैगा बोले सुनो पर ऐसे करे जा है लेकिन सिमोन भेजा जनता भी होकर में बोले हैं बोले जाब के कुछ ब्रेक ना करे हैं तो 22 तारीख को इंग्लैंड जा है बोले जा है बतियाए हुआ पे ऑन वीकलिंग फंड सुरिनाम से इकोनॉमिक मारे हुए जा है इंग्लैंड में बतियाए भैया और बोले द वर्क बसुक फिन प्लास ऑफ आउटनोटिंग फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टेले एंड मा डील आउट फॉर इंस्पानिंग फॉर द रेगिंग फॉर द इंटरनेशनल पार्टनरशिपन द फर्स्टर्कन एंड न्यू इन्वेस्टिंग मोगलकेडन द बफोर्डरन तो अब देखो कौन सी ब्रेक करे भैया जाए कि जिमोन इंग्लैंड में तो ये बात है हमारी जनता
सिमोन के बारे में। अब देखो भाई, हम जाएला इतालिय में, और इतालिय में भैया, इतालिय में बड़ा हड़ताल भइल है। इतालिय में एगो मरकान के सिपाही दागी से मरकान से मान बेड पुलिसी ऑप्ट्रेड ऑफिस इतालिय ना दूर फन मरकान से मान बेड पुलिसी ऑप्ट्रेड स्को तो ऑप्ट्रेड कैसे को मरकान के आदमी पर गे वहां पे बड़ी हड़ताल भइल है। बोले उफ लेडन फन मरकान से मान सिपाही बोले हैगा इन बदवांग वेर कहौदन एन ओम हेल्प्स मेक द मेंस रेक्ट एक्टिविस्टन एन ओपोसिट पार्टी एसन ऑफ हेल्डरन ओग सेन बतोखर द स्ट्रेट ऑफ खान। एकर बारे में एगो हैगा अब्दुल रहमान फकीर तो ये फेयर तक यार के और बोले पांच बरी से इटालिया में रहे हैं। बोले अतवार के बोलो वाला में बोलो मर गए हैं। और बोले वो वीडियो में सब धरी से गा कि दुई गो सिपाही ओके कैसे जमीन पे पटकी से खरंत वर खहुदन। बोले है रूप मेर मांस हेल्प हेल्प। अब बोले दैट इज नी खरूत तरवेल अखेंतन ऑफ हेम सेतन। अब बोले को एम्बुलेंस में दे वर्कन। बोले तू कई के ताके है कि फकीर स्टॉप में बवी किंग। बोले विंदन द अखेंतन सेन हेक्स एंकल्स आन एलकार। अब बोले है का कुछ गोड़ हाथ बांध दे रहा इटालियन से मीडिया मेल्द करे है बोनस की पुलिसी हानिर खबेल ओम दर फकीर से अग्रेसिव खद्रूख एन खपरकेर द ऑटो हाथ बस्कादे द अखेंटन सौदन टेकन हिम। Ambulance personeel hebben gezegd, de man is psychisch kritiek doorgemaakt. Leden van de regering hebben een handel van de politie verdedigd. OM is in onderzoek gestart, mensen te iemand wegen. Engeland, ke bare me. Italië, ke bare me, sorry mensen. Dat is Italië, ke bare me, hamari janta. भाई हम जाइला ऑस्ट्रेलिया के ओर। एगो औरत के भैया फिर लिंग खबोर भइले फिरन देर तक यारख। एगो औरत के फिर लिंग लड़का भइल है बेबी पाई से अख्तन ट्विन तक वीक के स्वांगर रहा एन फिर दाखन एन हाथ अल फिर केंद्र नो के चार गो लड़का और रहा और चार गो फिर पाई से हो गया आठ गो भैया। अलेक्सा बेंडाल एगो माई है और इस स्वांगर भाई ला बोले स्कॉट दैट बोले है फिर लिंगन बे ऊपर 15 मिलियन स्वांगरस्कापन फॉर कॉमन फीलिंग 15 मिलियन आदमी में से एगो औरत फीलिंग खबर करे है। और बतावे है दिस ऑन खबर दैट द सेल्फ द प्लासेंटा डीलन द मदर एंड हर मन हादन अल किंड्रन। और बोले ए एगो रहा एन एंड 10 यार आउट दैट ओल्डर्स वारन इन नोरो फॉरवर्ड जोसेफ सुरिस नतुल्ले को चार लड़का पाएगा बेबी। पास खबर है मेशे हेवन द नाम मेशे रहा भैया पास खबर है मेशे ओके नाम है इमिली हरियत कैटरीना एंड अलेक्सा क्रीगन। अलेक्सा फनूब नार बखलेदर बेंडाल दी हर प्रachtige eer betoon vind de baby's blijven op de neonatale intensivister care afdeling van het ziekenhuis tot dus voldragen ze maken het volgens Bendal betaige hega ikker bare meer seven kosten paisega medische kosten paise reizen dagelijk levensonderhoud paisego busje paise met 20 of 12 zitplaatsen. Or betaige de actie heeft al meer dan 66.000 Australische dollar, dat is 41.000 seven ook er gaat harise in de maxima MZ is de Veldhoven is in mei ook een feeling geboren. Oh, betaai gee he. Het ziekenhuis zei dat niet eerder hebben meegemaakt mensen. To चार लड़कन चार गो बेबी पाई से पास खबर हमें जना चारो मेशे है भैया चारो बहिन है इमेला हरियत या पास खबर मेशस तो मेशस है इमेला हरियत कैटरीना एंड अलेक्सा। हाँ दोस्तों तो बधाई हो यहाँ से भी कि चार चार बीवी आप लोग जानो भैया। फुटबॉल में स्ट्राइड भइल है सब कोई बैना देखी मैं फिर हम बोली हम बताई दे और उड़ा स्पाय से और इंग्लैंड तो त्वीर के खेल ले रहा हूँ माँ इंग्लैंड जीत गए है मार अर्जेंटीना खेली से और वो खेली से का स्पाय से और यहाँ पर बताए आप लोग जानो 8-0 से
Argentinië haar gehe. En onze wereldkampioen is Spanje geworden, mensen. Ja, pevertijgen je he. Lionel Messi hebben ook andere Argentijnse spelers van zich laten horen. Naar de nederlaag tegen Spanje. En in de WK-finale 1-0. Rodrigo de Paul slaat terug naar de critici en complotdenkers. Terwijl Leonardo Pardes zijn ruzie met de Spanjaarden negeert, mensen. स्पोर्ट के बारे में छोटा मैं आपको बता दिए है कारण कि पूरा दुनिया तो ये खेल लाइव देख चुका होगा तो जोनी बोले अब तो के हम का बताई तो ये सब बात है ये सब समाचार आपको हम सुनाते हैं हमारी प्यारी प्यारी मीठा मीठा जनता भैया एक बस चौफेर क्रैक दी यार तीन बरिस के जहल पाई से एगो बस चौफेर भाई तुलन जानो एकर बारे ऑन तक कलर को मिंदर यार स्कूलीर के बारे में एकर बारे में आप लोग के बताई देली मैं अब पता मिलल तीन बरिस के जहल यरमिया पाई से और एकर बारे में मिंदर यार दी अन सोरख वाक्साम है वास टू फॉर ड्राउट सो हैवन सो हैवन मिस ब्रेक ऑन तक द हैंडलिंग सो हैवन कंप्लीट और बोले advocaat Chandra Algu kon er geen sprake zijn van één kind dat een zorg van een buschauffeur was toevertrouwd. Zij stelde dat de taak van een buschauffeur slecht is om scholieren veilig naar school te brengen. Hier mij jij kan ontdekken aan. Hij zal pijn zijn. Ja, wat hij gegeven heeft. Bole 9-jarige scholier heeft gestopt. Hij betaalde dat advocaat gaf aan dat haar cliënt de hand in de broek van een 9-jarige scholier heeft gestopt. Maar betoogde dat er geen sprake was van ontdek. Volgens haar zou de jongen tijdens het geval hebben gelachen. En had bij de buschauffeur als een vriendelijke persoon ervaren. Die heeft de jongen bij de politie verklaard. Ook zouden er volgens de verdediging nooit meer klachten zijn geweest voor in de school op omgeving zijn volgens de advocaat ook er waren mee bolle he bolle grenzen zijn overschreden or je me toen ja ik nu sta niet raar ik er foto bij raar of ze maar film van ik er waren mee daar deze de 10 के जहल ये आदमी पैसे हमारे जनता देखो एडवोकेट एसात का बोले है बोले कोरस पुलिस श्री नाम लेक स्वार खिस्तलक सी बोले सलाम के सिपाही जो ने एडवोकेट बोले एसात बोले हैगा बोले हैगा बोले सर नाम के सिपाही बोले खिस्तलक मुड़ी नक्कमा है सबके ही को एसात बोले एडवोकेट में एगो एडवोकेट बोले को प्रोक्लामा में और बोले हैगा conclusie aan de hand van de vele schandalen die Sipahi kregen bolle sterke arm de afgelopen periode verwikkeld is geraakt ki verdamping bhaiya pata na mile Sipahi haat se verdamping paisa chal ja sona chal ja drugs chal ja quick chal ja hai aur colombian se drugs figuur Sipahi humne inhe ko chhod de bhag ja hai chhod ke jahal ma se to mere da 15 Sipahi pakdan hai एकर बारे में एडवोकेट बोले हैगा बोले क्वाट ने एरखर हुए हैं मेंसे बंद क्लोप ओक द सेटिक ओक नाम ने फोरग न्यूज बस लाइफ वन बलेस मार्कर और बोले गेहेम इन द कमिटे जनरल द स्पीकर वार डोर ऑलस ओक गेहेम ब्लेव कोरस इज सीक मार द बिलीव द ट्रांसपेरेंसी इज का हील सुक इज अबाउट एसएस एसएस बोले हैगा एडवोकेटवा और बोले वीआईपी पार्लियामेंट ने तारिए सिड्रिक वन सिम्सन Samson bole he bole Surinaamse gemeenschap ke bole in alle openheid geïnformeerd te worden over de onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kwik ke bare mein abbe pata na hai aur kwik ke karan बोले इतना मछली मर गए हैं तो लो जानो कैसे साथ के पुलिस ब्यूरो में से को बड़का कोलंबियन से फिगर रहा जो ड्रग्स के बारे में ऊ निकल के भाग गए हैं अब भाग गए कि सबनों के निकाल दे भैया पैसा फेंके हुई 58 यार कोलंबियन से अरेस्टान योर्की इल्जेर अरिसा ओर्टेगा रात के ऊ निकल के भाग गए हैं और बोले सेलन हाउस विस्ट ऑन स्नैपन हर खात ओम अखन फन पुलिस इज द क्लास SK en 2 aspirant AGBJ. Zij zijn door de afdeling interne terugzaken. Een keer waarin mee. Ja, wat eigenlijk ook pakken aan heeft.
तो ये बात है हमारे जनता तो सिपाही के जहुआ विश्वास ना भैया त दिसुआ में तू का करे जइयो भाई जे तो के बचाई उही लुटेड़ा हुई ये है। सोचो भैया आप लोग जानो है एक न्यूज आप लोग के और हम दे रही फिर से हम बताए निखर फेफ तक यारख बुरू भैया ऑफिशियल फरदाक फन मोर्ट ऑफ अद्रियन 20 यारख योना टोन पिनास अंटवर्प में दगा वल भैला तो लोन जानो है कर बारे में बुरु शुक्रवार के अपी फॉर द रेक्टर गइल है और एक के काबले पकड़ के बंद करी से फुल ऊपर हेक्टनिस ब्राइफ में से तो ये बात हुआ है अंटवर्प में दोनों में झगड़ा भइले द्रियन 20 यारख इतवास का स्टाफ और बोले गला दिस इज वासी गला आइट प्रातक करे में तो जिस एन आइट हंड खलूपन वर्ड विसलिंग बोले सो एर क्लब सेंट आइट वान स्टीफन एस अ स्कॉट हैवन खलोस्ट बोले द कोकल ट्रॉफ पिनास इन ओमकीफ फाइन सेंट ऑक्सल बोले है द हिल्फ फॉर द प्रोबेर द करियन मेयर करके मारू आदमी बच मर गए है अपी कर बारे में सकवा कितना दूर जाई आप लोग को हम जैसे रहेंगे हम बताएंगे हमारे यारो हमारे जनता। तो आप लोग को अभी हम और बताएंगे हम आप लोग को एक गीत सुना दी तो अभी हम आ जाएंगे मस्ती भरा है समा।

दोस्तों एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, तो पूरा घंटा हमारा हो चुका। तो हम जाते हैं भैया एक दुख भरी समाचार यहाँ पे। बहिन बिचारी गुजर गए सूरीनाम देश में और सब गए उसका मट्टी लेने को मर्त्योवारियों में। तो बहुत दुख की बात है, जब उसका लाश वहाँ से लेकर अब जाना चाहते थे लोग, बस उसके भाई जो है, उसके भाई भैया ग्लेन जो है इस्तीदार नाम लिखा शकमेन से गिर गए वहाँ पर शकमेन से दुर्द्रुफ खाई नतीलक। अब जैसे ओके एम्बुलेंस पे ली गए है, एम्बुलेंस आयल है, तो ब्लैक भाई के ओकर भाई भी गुजर गए भैया। तो अब जब भाई भी मर गए और बहन तो मर गए रहा, तो ओकर लाइक रानू के फिर सफर मारतवारियों में धर दी से, कारण कि अब उजाई न सके है, भाई भी गुजर गए है, तो फैमिली बहुत दुख में है। बोले साहब बस लो तन ओम द इरफान फॉर रानू एंड ग्लेन लातर दी से भी खसामलत हौदन परिवार की। ये परिवार जो जिसमें जिसके घर में इतना बड़ा दुख है, रेडियो फाहन की तमाम टीम आपके दुख में शामिल है फैमिली। तो ये बात है ईरान में भैया और अमेरिका के लड़ाई हुए देर तक, दो दिन अमेरिका से अनफॉलन में से और ये बातचीत हो रहा है। ईरान और अमेरिका के लड़ाइयाँ बहुत जबर है दोस्तों, कब इमोई हुई भाई पता ना है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। अब देखो भाई दे ना बहंदल काल्पनिक वैत ओम क्रिमिनल फरमोहन अफ तपकन दे ना बहंदल करे है, जितना आदमी क्रिमिनल से पैसा बनाई से सरनाम में सब चाहिए उस सबके बसलाख करे के है फैत फोर्स तेल मुद ओफर है मेल मोकल कहीं के इवन ओम फरमोहन दो दोर क्रिमिनलिटेट इस फरक्रेकर अफ तनीमन ओन खदाख वार है शेख बफिन बोले कर बारे में एनडीपी के। बोले इंग्रिड कार्ता बिंग बोले फोर दिन रपर्ट्यूस बोले बाकी भैया इबतिया तो हम में टड़ी डड़े लगे वैत निकारें इस तो प्लास है मैं वैतवा तलों चलाई पर यो मिसदा दखर सेलन मेरकन कि स्ट्राफ बार हंदलन निटलोन द फर ओर दिल खान व काल प्लिकन से कार्ता ब्रिंग ते द बहंदलिंग। और बोले फॉल्स कमिशी बिद द हैडिकर वेट केवी अनफोल्डोंने फॉर मुकलक है फोर्सिंग एन सिस्टेमैटिक फिनैंशियल इतरा ढेर ड्रग्स।

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। Full hot one.

नमस्तस्य नमः नमः हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों। हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सबरवा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णा दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम सर्वनामी संगीत लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो, ये यश उम्मीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि प्रकट हो। मैं दिल फील लेजर प्लेजर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ब्लेस्ड रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो साथियों, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फनमान डॉक्टर फ्रेडा tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers: kantoor 073-65-2247 of Studio Katarka nummer 073-62-2077. Quality guarantee or service staat van Hindustani. काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। एनी तो फरखेत है उनसे क्वालिटी है जिसते गारंसी एन नतीर्क नतीर्क नतीर्क फूलती से altijd lekker erbij. Fahun Hindustani Radio, toch? हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके रोशिता बहन जी आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। जिस तौर तरीके से रोशिता बहन जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है, ये उम्मीद है कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को जरूर पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद रोशिता बहन जी और आपको भी एक शुभ हैप्पी हैप्पी वीकेंड फुल टीम की तरफ से। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा है तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। विवाह संस्कार तो बीत चुका होगा ना, कंगन भी छूट चुका होगा। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं साथियों, फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां बधाइयां खुशियां खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। ओ परम पिता परमेश्वर से हम संत मिलकर बिंदी दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए ना। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो कमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फिल तरक्त में उसी दीवान से जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए और जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु। सुख वैग और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी रोजाना सुनते रहना, हो सके तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फन हार्त बीत कामयाब हुए हो तो हमारे फुल टीम की तरफ से आपको तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड नेचुरली फॉर ऑल खासो डोर। और हो सकता है कि आप कल या आज परसों कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मोर्ख इस वीर अंदाज है ब्लेफ होम डोर खान। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास थोड़ा और जोर तो से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आ के कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधु, रथ वो तो
thuis, op school, op werk, overal hebben we dat geleerd. Never give up, brother and sister. So, so, lobby, lobby, and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dus mijn prijs weet maar voel team dat is zo zwaar. Dan fijne vakantie. Blijf genieten van ons lekkere warme land. Nu zomer, hè? Lekker, hè? En natuurlijk, je gaat het zeker leuk vinden. Want Fahon Worldwide, Soso Lobby, Lobby and Blessings. Voor onze tijdje hebben we bij deze jatrapjaar op zoek naar meer warmte. To aapko bhi hamare full team ki taraf se ek shubh yatra, fijne vakantie. Tamam log sunte hai, Fahon Hindustani Radio ko op hun vakantie adres internet ke leru dwara op hun laptop, tablet of smartphone. To aap bhi sunie hem log ko tijdens uw vakantieverblijf. Internet geleren dwara is het wel mogelijk. Zo bent u en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk Hamari Den Haasjerka. The one and only Fahon Hindustani Radio. 24 hours at your service, mi gudu. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूं वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ आई डू फिल्म ललकार 1972 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या छुका लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है साथियों ये कब टूट जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि अब तू ना स्टॉल दैट लीव्स कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ आप सुनेंगे साप्ताहिक हमारे सरनामी संगीत पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना चटनीस वगैरह और दूसरे अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक बैलेंस सोल सॉन्ग्स एटसेट्रा एटसेट्रा बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं शेर शायरी भी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा तो जहां पर हो जिस हाल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो loves you all and naturally so so lovey lovey and blessings to all of you Rafi Saab

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो साथियों आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम मैं शुरू करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का एक जबरदस्त गायक उस्तादों का उस्ताद बैठक गाना का महा महा गुरु और सूरीनाम देश का भी एक इंटरनेशनल कलाकार द ग्रेट रॉबी उदित राम जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं एक जबरदस्त सॉन्ग हमारे सूरीनाम देश के संगीतकारों के साथ कि कैसे खेलना जाए।

शाबाश शाबाश उस्तारों का उस्तार और हमारे बैठे गाना का सुरिनाम देश का एक महा महा गुरु इंटरनेशनल कलाकार और जिगरी दोस्त बड़का भाई द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉबी उदित राम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 17 मिनट गुजर चुका है 5 बजकर आप चुने आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर धनाक्षर के फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है। सेशन 20 जुलाई 2020 का शाम का रविवार का शाम का प्रोग्राम आप के श्रोताओं में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का बड़े स्टूडियो से। तो प्रोग्राम को फॉलो करते रहना। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का द ग्रेट महेंद्र प्रसाद। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक लाइव रिकॉर्डिंग है और कोई ना बनाए ये गाना जो काफी लोग गा चुके हैं और अभी गाने वाले हैं लेकिन ये एक नया स्टाइल में लाइव रिकॉर्डिंग।

आज उस्ताद महेंद्र राम प्रसाद जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, बैठक गाना न्यू स्टाइल, और ये भी एक लाइव रिकॉर्डिंग था। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है और 6 मिनट रह गया है 5:30 बजने में। अगला बयान एक जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, जो अपने आप को मिस्टर बैठक कहलाता है, और वो सुनाते हैं हम लोगों के अपने यानी हम लोगों का देश के बारे में ये कहानी कि जय जय सूरीनाम। यस, जय जय सूरीनाम।

आज हमारे सूरीनाम देश का मिस्टर बैठक का गाया हुआ अति सुंदर बयान, जय जय सूरीनाम। फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जुन है ही साथियों, घड़ी की तरफ देखता हूं तो पूरे 5:30 का वक्त हो चुका है और रविवार शाम का प्रोग्राम सेशन 20 का ये हसीन शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे दैनाक शहर का तापमान तकरीबन 21 डिग्री है और कुछ बारिश था सुबह में, लेकिन अब natuurlijk en het zonnetje schijnt, maar rond 7 uur verwachten ze nog een klein beetje regen. Dus natuurlijk is het lekker warm en het waait ook rond de 5 windkracht. प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। एक और नौजवान कलाकार तैयार हो गया है आप सभी को एंटरटेन करने के लिए, और बहुत ही कम उम्र में काफी नाम कमा चुका है। जूनियर उस्ताद फ्रॉम सूरीनाम एंड हॉलैंडेस सुजल उमराव जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग लोंडा के नाच मैशअप भैया एंड बड़ी जोन जूतवा से सब से ज्यादा स्नेल तू नाच सके हुई और पहन लिए गनो अच्छा।

शाबाश बस इंडीस का बनाया हुआ ये अति सुंदर बयान और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये जो गाना आपने सुना ये आई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है. Dus dit wordt dan toekomst zo'n beetje. Hè? Dus één iemand doet het werk en alles ja, gaat via de computers. Ook zang, muziek, alles is gemaakt met AI technology. Maar het klinkt heel leuk. Hè? Dus dat wordt zeer zeker onze toekomst om muziek te luisteren en ook te maken, denk ik. एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश का माएस्ट्रो जयवंत कुन कुन जी को लाते प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को सोने के खरवा बाया निमस्ताए.

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, द ग्रेट जयवंत खून खून जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुन रहे थे। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है, 12 मिनट रह गया है 6 बजने में और आप जोर तोर से सरनामी संगीत सुन रहे हैं। अगला बयान मशहूर गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का बैठ गाना एक महा महा गुरु मां और द चटनी ऑन द बैठ गाना क्वीन फ्रॉम सूरीनाम, द वन एंड ओनली श्रीमती मोतीमाला भोला सिंह जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनिए।

शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादीन श्रीमती मोतीमाला भोला सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। 7 मिनट रह गया है 6 बजने में, तो आज का इस पहला अध्याय का जो आप सुन रहे सरनामी संगीत का जो हमेशा एक तरह बैठक गाना होता है आखिरी बयान और उसके बाद न्यूज और विज्ञापन। लेकिन उससे पहले मशहूर गाने वाला हमारे होलैंडीज का इंटरनेशनल कलाकार हमारे सुरीनाम्स आर्टिस्ट का जो होलैंडीज का एक फ्रॉम द बरूंगस्ट एंड बिगेंस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम मोमेंटेल फेल गफ्राग्ड आर्टिस्ट द वन एंड ओनली मैस्ट्रो शिवम राजाराम टुगेदर विल सेलेक्ट द बीट्स ससुर घरवा चटनी मैशअप

अवश्य मशहूर गायक हमारे ऑल इंडीज का द वन एंड ओनली द चटनी किंग शिवम राजा राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। और दिख जाए महान संगीतकार द ग्रेट सेलेक्टा बीट्स के साज और संगीत पर यह अति सुंदर बयान बनाया गया है। तो एक मिनट बाकी है 6 बजने में साथियों, पहला अध्याय हमारे सरनामी संगीत का आप सुन चुके, तो आप सभी को लेकर चलते हैं विज्ञापन और देश विदेश का समाचार के तरफ। ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। दूसरा अध्याय कुछ और जबरदस्त है, सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और कुछ शेर शायरी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप शुरू था के जमा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज्ड फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नैटुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोसलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नैटुरली बिदंक्ड फॉर हेड लाइस्ट्रेन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहता आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और ओवल पता आप सभी को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फन मांडा टॉट फ्राइडा टाइडेंस कंटोर यूरन ऑफ द फॉल्ड टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07362247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07362247। जो भी रेडियो का काम होना डेंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम है। तो साथियों इसी तरह हम लोगों के बारे में रेक्लाम बनाते रहना चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग काम करते हैं और आप लोग हम लोगों के प्रोग्राम सुनते रहते हैं। इसके लिए फूल टीम की तरफ से तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश भी निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड रिसेंट हैव ओक ऑन्स एक कराओक टीम कृपया रिसेंट नो वो उफनाल एंड बस्तानाल bijna, ja, iets meer dan een jaartje met een paar omroepers voor de gezelligheid zijn we begonnen. En het is helemaal zover uitgelopen dat we uitgenodigd worden op feestjes, parties om ons act te komen vertonen. En naar gelang wij geoefend hebben, is het kwaliteit ook wat beter geworden en we krijgen heel veel complimentjes. Vooral heb ik samen gezongen met onze broeders van de karaoke team Take a Chance en onze Mahaguru, de one and only Bhai Chandra Sen Gangaji was er ook aanwezig en die heeft de sterren van de hemel voor ons gezongen daar. Ik heb ook wat laten horen hoor. En zo houden wij ons bezig. To Abhi Aker is chota sa mota sa jo Fahun Hindustani Radio ka parivar bante ja raha hai aur bante ja rahe hai aur ban chuka hai. Aap bhi usme aakar shamil ho sakte hai. Sabhi jankari aap tar kare van maandag tot vrijdag op de volgende telefoonnummer 07365 2247 en vragen naar onze teamleider van Fahun Hindustani Radio, the one and only maestro Johnny Number One. Waar bhi jald se jald hum logo ka member bane aur ro ko bhi banaye kyunki mere sile hai mere vreugde zeg me toch. द्वारा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते है प्रोग्राम की तरफ दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत का। तो कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनिए। जबरदस्त गायक को लाते हैं प्रोग्राम में अन अल ओमबकेंद फनी ओम्स ओमरूपर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये किशोरदा का गाया हुआ है सुपरहिट सॉन्ग री अरेंजमेंट बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या जो तुम हंसोगी।

हॉलैंडीज का जबरदस्त गायक जो काफी सालों से गा रहा है और आप ही का जाना पहचाना हुआ अनोंसुर साथी द वन एंड ओनली मैस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुन रहे थे। म्यूजिक रे अरेंजमेंट बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या। 13 मिनट व्यतीत हो चुका है, 6 बजकर जो तोड़ी सर नामी संगीत चल रहा है और आप चुन है आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर हमारे डन हाक्षर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का खबर इन इंडिया एन बुखोन में करियर मेद बाबला स्टेज ऑर्केस्ट्रा टुगेदर मेद कंचन In 86 is hij naar Nederland gekomen met de Strangers. Muziekformatie heeft hij heel veel furoren gemaakt. En nu met heel veel bandjes. En nu ga ik een heel nieuwe nummer van hem ten gehoor brengen. En speciaal voor jullie allemaal een hele nieuwe van maestro Shekhar Kumar Ki Main Hoon Don. En natuurlijk is hij ook... The Don onder de zangers.

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना, और ये भी खास करके मशहूर गायक हमारे हॉलैंडीज का द ग्रेट शेखर कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंड देश का, आप सुनिए द ग्रेट अरविन अब्दुल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान जो री अरेंजमेंट किया है। देखा जाए एक बार फिर मैश्रो अशोक अयोध्या जी का रिमिक्स एंड री अरेंजमेंट किया गया ये अति सुंदर बयान, और ये भी व्हाट अ ग्रेट वॉइस का मालिक मैश्रो अरविन अब्दुल की कोई सागर दिल को बहलाता नहीं।

बात है जबरदस्त गायक हमारे ऑल इंडीज का मैस्ट्रो इरविन अब्दुल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये तीन सुंदर बयान श्रोताओं ने सुन रहे थे और म्यूजिक रे अरेंजमेंट बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या। एक और मशहूर गाने वाले हमारे ऑल इंडिया का प्रोग्राम में वेट कर रहे हैं आप सभी को ये अति सुंदर बयान को सुनाने के लिए द ग्रेट संगीता भगेलू जी को लाते हैं प्रोग्राम में और ये अति सुंदर बयान आप सुनिए उन्हीं के आवाज में। आशा भोसले जी का गाया हुआ ये अति सुंदर बयान वो बीते दिन ही।

वो भी ते दिन याद है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का खबूर इन पाकिस्तान है, और फनफ 1983 is hij de lead singer van de muziekformatie The Strangers, en daarna ook veel gezongen in alle bandjes rondom. Een hele bekende, beroemde zanger, international kalakar, hamare Hollandees ka, maestro Bobby Jacob ka je bilkul superhit song, Chalo Aaj Chalte Hai Hum.

अति सुंदर बयान दिल को छू लिया। मैस्त्रो बॉबी याकोब जी का गाया हुआ अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। चलो आज चलते हैं हम। म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्त्रो इरफान साबिर और साथ दिया है भाई अशोक अयोध्या जी। तो साथियों वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए मैं शेर्स के चाहने वालों के लिए। आज के शेर्स कुछ मजेदार शेर्स है, कभी दर्द से भरा हुआ कभी दिल का दुखा हुआ शेर्स, लेकिन आज कुछ मजेदार हंसने वाला शेर्स है। तो अर्ज किया है मेरे यारों का यार भाई भूपेंद्र जी की, हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताबों में सुख किसने पाया है, लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियों देखने, लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने, और सर कहते हैं देखो इतने बरसात में लड़का पढ़ने आया है। ये भी होता है देखा ये पगली, इतना एटीट्यूड तो तू किसे दिखाते हैं, अरे ये पगली इतना एटीट्यूड तू किसे दिखाती है, तुझ जिससे मेकअप करती है ना, तू जिससे मेकअप करती है ना, उसे हम अपना वैंक ब्राव को खेलते हैं। ये भी होता है यार चप्पल छोटी हो जाए तो पांव में नहीं आती, वाह वाह, चप्पल छोटी हो जाए तो पांव में नहीं आती, और अगर गर्लफ्रेंड मोटी हो जाए तो क्या होता है यारो, बाहों में नहीं आती। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। एक गर्ल ने मुस्कुरा कर कही अपने बॉयफ्रेंड से कि जानू अगर तुम अमीर बन गए तो मुझे क्या दोगे, तो लड़के ने मुस्कुरा के बोला सिर्फ धोखा ही धोखा। मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा, मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा, मैं तो ये सोच रहा हूं उस रास्ते पे मेडिकल स्टोर खोल दूं, मस्त चलेगा। ये भी होता है, होता है। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए एंड फॉर फरामद्रिंग एम्पायर खराब खरीद केयर। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारों, एक और जबरदस्त गायक इंतजार कर रहा है अपने आवाज को सुनाने के, और वो है वो भी हमारे हॉलैंडीज का एक जबरदस्त गायक उखबोर इन पाकिस्तान बहन मेट सिंह करियर हीर इन नीदरलैंड में द म्यूजिक फरमासी टू नेस्टी ऑन द लेनिंग फन ज्वाला एंड अशोक सागर मलिक जी के आवाज में ये उनका नया सॉन्ग सुनिए कौन है जो सपनों में आया। प्रोड्यूस ऑन रे अरेंजमेंट बाय मैस्त्रो ज्वाला।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को हॉलैंडीज का मशहूर गाने वाला माएस्ट्रो सागर माली। एक और जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूं प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए, और इस बार गाने वाला है एम्स्टरडेम हॉलैंड का मशहूर गाने वाला माएस्ट्रो उमर वाहिद हुसैन, द किंग ऑफ सोल, स्पेशल फोर से निकाला हूं ये अति सुंदर बयान, दिल तो कहता है एंजॉय द म्यूजिक।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल तो कहता है हमारे हॉलैंडिश एम्स्टर्डम शहर का मशहूर गायक द वन एंड ओनली द किंग ऑफ सोल मैस्ट्रो उमर वाहिद हुसैन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप लोगों सुन रहे थे। और जबरदस्त गायक फ्रॉम द वाहिद हुसैन फैमिली, और इस बार निजाम जी को लाते हैं और वो सुनाते हैं मस्ताना ऑर्केस्ट्रा ऑन द लीडिंग फ्रॉम द मैस्ट्रो हफीज खान के साज और संगीत पर ये अति सुंदर बयान की वो दिन याद करो।

आप श्रोताओं ने सुना और जो गाने वाला था मशहूर गायक हमारे हॉलैंडिस एम्स्टर्डम शहर का फंड वाहिद हुसैन फैमिली मास्टरो निजाम वाहिद हुसैन और साज था मस्ताना ऑर्केस्ट्रा ऑन द लीडिंग फंड मास्टरो हफीज खान। हमारा दूसरा अध्याय सरनामी संगीत भी धीरे धीरे समाप्त होने को आया, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बयान। जबरदस्त गायक हॉलैंडिस का उखबूर इन इंडिया और काफी संगीतकारों के साथ मिलजुल के काम कर रहा है और खूब सीखा है, क्या बात है। मिलके सुनते हैं मैस्त्रो तारिक प्रभाकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान तू।

साहून हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 3 मिनट गुजर चुका है 7:00। सेशन 20 का ये रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और हमारा तीसरा अध्याय कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिरलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोलो बिलो बियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू अनतिरलक बदंत फॉर हेट लाइस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश जरूर है इस तिहार Denk aan Fahun Hindustani Radio. If I say down, surface grant your quality ke staat. Aapka jo bhi radio ka sandesh ho, ya to zaruri khabar ho, ab maat par hum log banakar aur jitne baar aap chahenge bandhu, utne hi baar hum log elan kar denge aur ye bhi kifayat se sedam mein. Sabhi jankari iske baare mein aap tar kare van maandag tot vrijdag op de volgende telefoonnummers op tijdens kantooruren natuurlijk. Kantoor 070-365-2247. Studio Qatar kan nummer 070-362-2077. Job hier Radio Kakam Hona Denkan van Hindustani Radio. U bent van harte welkom. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, साथ ही और रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? तो बिनती निवेदन गुजारिश किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द Fahun Hindustani Radio का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Recent hebben we ook onze, ja, recent is het niet meer zou ik zeggen, het bestaat al ruim een jaar, onze karaoke team. En links en rechts hebben we een paar optredens al verzorgd en het gaat bijzonder goed hoor met ons team. Dus ik zou zeggen, volg onze social media's en onze omroepers. तो जल्द से जल्द आप देख सकते हैं कि कहाँ हम लोग आप सभी के लिए गाऊंगा बजाऊंगा, तो आप भी इसमें आकर भाग ले सकते हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 070-365-2247 om lid te worden van Fahun Hindustani Radio en vragen naar onze teamleider The one and the only maestro, Johnny number one. Fahun Hindustani Radio पे आप चून हैं। रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट। एक जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूं और इट्स अ कॉफर्ड सॉन्ग फ्रॉम अलका याग्निक जी एंड फ्रॉम उदित नारायण, मार यू हैव इट ऑल gehoord en zelfs ook her en der al gelezen. Er wordt ook heel veel met AI technology in de Bollywood film industry ook gewerkt hoor, en dit is ook een van, klinkt bijzonder goed. दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके।

0: beautiful song, wonderful song di La Galia, tum se pyar karke. Remember Satyo, aap jo sun rahe the is music with AI technology. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और एक जबरदस्त गायक को लाते हैं प्रोग्राम में, द ग्रेट मोहित चौहान, और साथ दे रहा है नरगिस तेजी और पूजा तिवारी. ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय द अमादेस. We're the Black Amadeus from Asia, bijnaam van maestro A.R. Rahman, the genius from the Chennai, from Chennai, India. Ishq Mastana, main wapas aaunga.
1: Hello, bolo.
0: Kuch dialogues ke
1: saath.
2: Hello,
1: dadaji.
2: Hello.
1: Are wa. Focus kar rahe hai, very good.
3: Kya scene hai bhai?

क्या बात है, मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टर ए आर रहमान और अल्फाजेता इरशाद कमील जी का गाने वाले जबरदस्त गायक इस जमाने का ग्रेट मोहित चौहान, नरगिस तेजू और पूजा तिवारी। 17 मिनट गुजर चुका है 7 बजकर और आप चुन है आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर फ्रॉम दी एक से थी डॉन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। मी गुडू और जबरदस्त सॉन्ग आप सुनिए कॉफरेड बाय AI टेक्नोलॉजी फ्रॉम बॉलीवुड। दिल तो पागल है।

तो सुन रहे थे क्या कर रहे हैं। उई अम्मा क्या बात है। जबरदस्त गाने वाली इस जमाने का हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का रिमेम्बर द नेम है मधुबंती बख्शी मलकाए हुस्न और मलकाए संगीत। क्या बात है। हम तत तिग्रेफान खुदरत ना मुझे एक्त या बहुत नसीब वालों को मिलते हैं ये कॉम्बिनेशन। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और एआई म्यूजिक क्रिएटेड बाय बॉलीवुड एंड फैशन फन लता जी आलवेर मेरे ख्वाबों में खमाक मैट आई म्यूजिक टेक्नोलॉजी। और क्या बात है। क्लिंकt als een huis, heel goed, maar heel leuk dat ze het ook vermelden hoor. En aap sunie, maza lijie, en wetende dat dit allemaal door computers is gemaakt. Maar ja, een mens die moet alles bedienen, hè? Dus je moet ook een dosis muzikale kennis hebben en ook een dosis isie. Dus ICT, ICT-kennis, om zulke dingen te kunnen maken. Maar het klinkt heel leuk hoor, echt. Enjoy ik, our het is onder bijaan, covered by Bollywood Film Industry with AI Technology.

क्या बात है, आप तो सुन रहे हैं ना कि AI टेक्नोलॉजी कितने आगे पहुंच चुके हैं। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री gebruikt het ook, maar niet echt openlijk, maar ze hebben wel wat nummers al gemaakt en geplaatst op YouTube, waarvan deze ook een van ze was. दोस्तों 6 मिनट गुजर चुका है 7:30 बजकर और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है ना, लेकिन उससे पहले कुछ आखिरी मजेदार शेर्स आज के मेरे हिस्से के प्रोग्राम में आप सुनिए। अर्ज किया है यार की सारे आम बिक गई मेरी मोहब्बत, बाप रे बाप, सारे आम बिक गई मेरी मोहब्बत, क्योंकि दोस्तों मैं तो गरीब था ना, इसलिए। जिंदगी बेहाल है, सुर है नाताल है, मैसेज बॉक्स भी कंगाल है, क्या आपकी SMS फैक्ट्री में भी हड़ताल है? यार अगर ऐसा है तो कुछ तो भेजो, ये मेरी मोबाइल की जिंदगी का सवाल है। ये भी होता है दोस्तों, हमसे मत पूछो जिंदगी के बारे में, क्यों हमसे मत पूछो जिंदगी के बारे में, अजनबी क्या जाने अजनबी के बारे में। आज जब बोर होते हैं तो वो बहुत याद आती है, आज जब बोर बहुत होते हैं तो वो बहुत याद आती है, क्योंकि दिल के साथ बहुत अच्छा टाइम पास करती थी वो। रोज रोज वजन नाप कर काया करना है, रोज रोज वजन नाप कर काया करना है, एक दिन तो सभी को मरना है, 4 दिन की है जिंदगी, खा लो जी भर के, अगला जन्म में फिर 3 किलो से शुरू करना है। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, उसने ये सोच कर अलविदा कह दिया, उसने तो ये सोचकर अलविदा कह दिया कि ये गरीब लोग है, मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। ये भी होता है यारो। तो ये था कुछ आखिरी शेर्स, अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं और देखा जाए मशहूर गाने वाला द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर प्रोड्यूसर मैस्ट्रो दाद अल्लानी जी के आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान, और साथ दे रही है देखा जाए नीति मोहन जी, मिलके सुनते हैं ये सुपरहिट सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने का और चांद छुपा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और ये भी म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी, द ग्रेट सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन्हीं के मधुर आवाज में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, साथ दे रही थी इस जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन, और महान संगीतकार इस जमाने का अभिजीत वघानी के साथ।

साथियों, घड़ी की तरफ देखता हूं तो 15 मिनट रह गया है 8 बजने में। अगला बयान एक कॉफर फैशन मशहूर गायक उस जमाने का, द ग्रेट महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ ये अति सुंदर बयान का फैशन आप सुनिए। विद आई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस एंड अरेंज्ड बाय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री।

Beautiful song, the great Ravi Sharma, meer bekend als music director Ravi ji ka banaya hua ye beautiful meetha dhun aur likha hai alfaze the great lekhak Sahir Ludhianvi ji aur Mahendra Kapoor ji ka gaya hua ye ati sundar bayan covered by Bollywood with AI technology. साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान इस जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट पलक मुशाल जी का ये सुपरहिट सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो अमाल मलिक और लिखा है ये अति सुंदर बयान को इस जमाने का महान और मशहूर लेखक द ग्रेट मनोज मुंतशीर जी ने. मिलकर सुनते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग कौन तुझे.

Beautiful song Dil Ko Chhu Lene Wala Nagma aap shrotaon ne suna abhi. Composed and arranged by Palak Mushal ka ye mashhoor music director the great Amal Malik ji ka banaya hua ye ati sundar meetha dhun aur gaane likha tha the great Manoj Muntashir ji. साथियों यही तक था आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया. हमारे बात आज श्रोताओं को सेवा करने वाले हैं महान अनोन्सर साथी और हम लोगों का महा महा गुरु दवानंद ओड़ी मास्टर चंद्रसेन गंगा जी मेट सेन ओफर बकेंद प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड. उनका साथ दे रहा है भाई यूसेफ सेतू जी. तो इन दोनों का प्रोग्राम आप ज़रूर सुनते रहना और अगर हो सके तो इन दोनों के प्रोग्राम में आप ज़रूर अपना मन पसंद नगमा को बेल करके मांग सकते हो. तो मुझे आप सभी इजाज़त दे अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज़ के जरिए मेथड प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग में संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम. तो मुझे आप सभी इजाज़त दे और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ और आज महान गायक The man with a golden voice from Pakistan, the great Mehdi Hassan ji ke yaad mein.

द टाइटल फ्रॉम द मूवी गीत गाता चल से भी आप सुन रहे थे, आपको सुनाने वाले थे जसपाल सिंह। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मन से हो, कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं।

0: जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लिए इस दुनिया में हमको भी जीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, अब वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चला है 8:03। ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाँ शहर से। तो बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिसके घर में कोई शादी हुआ कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश। तो पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया बीरबल की, सुरेन भगवान जी के। भैया सुरेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए, और आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है, और मैं अपने तरफ से और मेरे सामने बैठा भैया यूसुफ की तरफ से आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। भैया सुरेन भगवान जी इनको यूलिय ठीक बोल रहे भैया यूसुफ। 26 तारीख जुलाई है और आप तत्पर है। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा या शाम होगी या रात होगा, बहरहाल आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे, आपका हृदय से स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। गीत गजल के कार्यक्रम लेकर हम यहाँ उपस्थित है भैया यूसुफ के साथ, और पूर्ण आशा है आप पार करोगे 9 से 5 तक 3 5 से 7 तक 2 तक 7 फिर तक या तो 9 से 5 तक 3 2 से 7 तक 2 तक 7 तक गीत गजल के कार्यक्रम में। भैया यूसुफ अपनी आवाज़ सुना दे भैया, का कर ले आज दिन के बरूर
1: दिन के,
0: कुछ ना कुछ तो जरूर कर ले भैया।
1: 12 uur तक से फिर अपन फेशे
0: मोय geweldig
1: en dan even naar huis gegaan
0: een beetje uitblazen
1: ja ik ga daar uitrust kan leren of zaterdag je baagje je film studio geht gezellig
0: mooi dank je wel
1: ja
0: bij Jozef welkom nogmaals als altijd
1: ja.
0: En wij hopen dat de luisteraars zullen bellen. En onze programma is tot 10 uur 's avonds, dus niet op het laatste moment bellen, heren en dames, liever eerder. Is wat, jahan tak mera khayal hai, ek line free hai, ek line khali hai. Jo khali hai, wo einde hota 77 tak se, theek? Haan, 77 tak jo einde hota hai, wo tar is wat khali hai, aap tar kar sakte hain. 07-3-65-22-47 या तो 07-3-62-77। चलिए पहला सेलेक्शन हम पेश कर रहे हैं इस तरह से, और ये है गीत।

0: दिल की।
1: मैंने चांद देखा है, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत। रात्रि के प्रोग्राम है सोनद गीत गजल के कार्यक्रम में। चलो हम देखते हैं लाइन पर कोई है। फॉर हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफ। हेलो
2: या एक और भाई मित्र
1: दक्षिला कैसे है? हाँ अब सुनाइए। ठीक है कई में हो रसीला
2: या न्यूवेल
1: दक्षिला कैसे रही ले
2: या खत हुतर भाई
1: सब कुछ प्रीमा
2: या
1: ना तब मोय यूसुफ करे सब काम उम घर के बर्तन वर्तन धोवे कि ना
2: करे
1: हो ना तो फ्लिंक लड़का है। हाँ नहीं फ्लिंक लड़का एक एकर अल्खमीन हो तो एकलिंग बहुत तेज है। एंड हु इज इट सीला फर्दर
2: या खत हुतर भाई
1: हैप्पी क्यों फरमा को फंदा अहमद इट्स
2: या और सही कर
1: ओ का कल फेसेस गए रे का हम तो
2: हां फेस गए ली रह लिए
1: गो ओ मोय मोय मोय एंड लोय के फेस का हाथ
2: या और तो फेल लोय
1: मोय सीला अब बताओ कुछ धल्ले है दारू पानी ना हो तुम दारू छोड़
2: नहीं भाई एक वसनी तो इस तुम ना खोज पाई ली
1: इस खुद के इतनी सीला थैंक यू वेल अब बताओ कौन गाना मांगत रहे थे
2: पा फिल्म स्कूल मास्टर
1: हां हां
2: हो दिलदार बोलो एक बार
1: हो दिलदार बड़ा विशाल गाना है जाने का है बोली ला यंग यार में है हम लोग फिर तो फाइव तो क्लास में रही तब जाने चार पांच लंदन में स्कूल में ऐसे साल माल हम लोग ही गनवन बैठ के बांगे पर बादाम के पेड़ रहा तो दो महीने साथ बेंजामिन स्कूल दार बैन लिखे तो बैठ के हम लोग गावत रही सब गनवन
2: ओके
1: या हमार ना यार खलीदे सो हाँ फिल्म स्कूल मास्टर नहीं प्रिमा एंड फॉर देयर साथ और कुछ रहा हासिला बतावे
2: ना भाई नहीं एक वंसी वो फाइन आउटस्टैंडिंग
1: ओके थैंक यू
2: एंड फॉर द फॉलोइंग केयर वेल
1: सीला थैंक यू वेल हेल फील लाइस प्लेसिर
2: या और थैंक यू भाई
1: एंड थैंक यू वेल
2: या दाख भाई
1: दाख सीला ये थी इपन ब्यूरो के रहने वाली माशुका सीला जी। और अच्छा देखे फॉन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफत
3: अनहील हुई नाफत अस्सलाम वालेकुम राम राम और नमस्कार सस्क्रियाकार आदाब
1: वालेकुम अस्सलाम भैया नमस्कार कैसे समाचार हैं
3: चले चले कैसे सब
1: बस चले धीरे धीरे क्योंकि जा है तो लोग की कृपा से मालिक के दया से चाहे
3: हाँ वो तो है सही बात
1: सवेरे हम जाग गई बोली देखी हमारे प्लेटफॉर्म थे कि कोनो जमराज के प्लेटफॉर्म लगे पहुँच गए हाँ हो सके गैली सूते ना जगली तो
3: हाँ झमरा पहले उत्तर सपना में आएगा तब तो के बांध छोड़ा आएगा को तू तू कर ले खाली मार बार सूरत रही ले
1: हाँ खाली हाँ ओ सब लिखा है ओकरे लगे तो
3: लोग के ना हैप्पी कर सकी वहाँ दुर्गा चाहे मार बात सुने के
1: बहुत हाँ जाने
3: जो परिश्रम के बात सुने
1: जाने वो झुक गया आसमान में जरा जिंदर कुमार मार गया रहा देवस भंडा से उठा बता बुकुआ तो भैया मोहम्मद बताओ कुछ धल्ले हैं
3: हाँ एक और धली अपन भाई और बुबू खातिर
1: हाँ मोई बताओ
3: है कितना प्यार है तुमसे ये जान लो
1: अच्छा
3: तुम ही जिंदगी हो इस बात को मान लो
1: वाह
3: तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरा पास बस एक जान हैगा जब जी चाहत मांग लो
1: अरे वाह क्या बात है
3: ये मार भाई और बुबू के
1: मोई मोई भाई और फुआ का दिन
3: ना बुबू के
1: ओ बुबू
3: ओ हाँ ओके नाम तोर को लिखा के नाम
1: ओ सीला
3: हाँ ओकर खातिर
1: ओ इसकुदान
3: हाँ भाई और बुबू के खातिर
1: ओके नहीं प्रिमा हम लिख ले नहीं आई
3: सर भैया यूसुफ के और ओकर बीवी के
1: या ओके नहीं प्रिमा
3: और एगो भी हैगा
1: हाँ हाँ एकदम
3: माई तरी से लंबा हैगा
1: गो एंड
3: नाराजगी कदम कदम हो जाएगी रूठे जाने से क्या होगा या तो फिर भी आएगी भूल जाने से क्या होगा रिश्ता तो फिर भी रहेगा
1: क्या हो
3: जाने से क्या होगा अगर साथ लिखे होगा जिंदगी के सफर में किस्मत फिर धुंधी लाएगी दूर जाने से क्या होगा
1: हाँ वाह क्या बात है Nee, mooi.
3: Ik doe nog een wadakalipaike.
1: Na te mooi, hè. Dank je wel. अच्छा भैया मोहम्मद अब बताओ कौन गाना से हम लोग आज तो की खुश
3: हैं वो फिल्म मतलब गुमनाम के 1965 के गुमनाम गुमनाम है तो क्या हुआ हम काले हो तो क्या हुआ
1: वो हम काले हैं तो क्या हुआ
3: हाँ वो बदल के
1: कि गुमनाम है कोई
3: हाँ ना वो खाली हैगा
1: वो हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले
3: सब सुनने वाले का ना दिल के खातिर
1: हम काले हैं तो क्या दिलवाले हैं
3: हाँ क्या हुआ
1: काले हैं तो
3: वो मोहम्मद रफी गाए थे और एक्टर के और प्लेबैक करी से ऑफ एक्टर कैसे मोहम्मद
1: हां री जाने में री कर ओके ब्रो ऐसे ही रही
3: अच्छा तो ऐसे रही अच्छा सब कोई के मसला बोलिए
1: भैया मोहम्मद बहुत बहुत हिल फैन आफन
3: और मार भाई के और बुब के मसला बोलिए फोन
1: जरूर सही कर
3: लीजिए अच्छा अस्सलाम वालेकुम
1: राम और नमस्कार
3: शुक्रिया कर
1: ये था भैया मोहम्मद दनहा के रहने वाला तो भैया यूसुफ कोई है अच्छा ओके अच्छा तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं वो ये है इस तरह से आ रहा है

0: स्कूल मास्टर में से निकाल रहे हैं। और ये शानदार गीत हमने पेश की, ये द्वैत और पेश करवाने वाली थी ईपन ब्यूरक, ईपन ब्यूरक के रहने वाली माशुका सीला जी की तरफ से। उनका माशुक जो मेरे सामने बैठा हुआ है, भैया यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, सीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, भैया यूसुफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया यूसुफ कोई है लाइन पर? अच्छा, लाइन इस वक्त क्लियर, आप तार कर सकते हैं नल से ईफन तक द्री फाइव एन सस्तक ट्वेन ट्वेन तक सेफन फेर तक, या तो नल से ईफन तक द्री ट्वेन सस्तक ट्वेन तक सेफन एंड सेफन तक। आप तार कीजिए क्योंकि समय तो बीता जा रहा है, इस वक्त 6 मिनट व्यतीत हो चला है 8:30 ओवर हाफ नेगन इवेंट ऑफ स्टैम्प ऑफ फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है भैया मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद एक गीत मांगे हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले फिल्म गुमनाम में से निकाल कर हम चला रहे हैं, लेकिन भैया मोहम्मद ये गीत मांग रहा है सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, और साथ ही साथ उनका भाई यूसुफ जो मेरे सामने बैठा हुआ है, और बुबू सीला जी जो इपन ब्यूरक के रहने वाली है, और साथ ही साथ मेरे लिए और कारला के लिए। तो लीजिए ये शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं भैया मोहम्मद के लिए, शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए आपके मांगी हुई गीत भैया मोहम्मद इस तरह से आ रहा है, और आपकी फरमाइश हमने पढ़ दी, अभी फिर पढ़ देंगे।
1: गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: जितना कुकरू इंदौर हो गए महमूद के फानिस्तानी रेडियो द्वारा पेश किया गया ये गीत, और ये गीत चला हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, और ये गीत चला भैया मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए भैया मोहम्मद को, और साथ ही साथ भैया मोहम्मद ये गीत मांगे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं के लिए, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी बस्तीर यानी मीद वर्कर्स के लिए, और साथ ही साथ ये गीत उन्होंने मांगे हैं अपने भाई यूसुफ के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है, और उनके बूबू जो शीला जी है वो इबन बेरुख में बैठे हुए, और साथ ही साथ मेरे लिए और करला के लिए। हम सब की तरफ से भैया मोहम्मद को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया मोहम्मद, उम्मीद है आप सुने होंगे और कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फान हिंदुस्तानी रानी खुद नाफंत हिंदुस्तानी रेडियो के हम लोग के प्रोग्रामक है कि तू तार कर दे कैसे श्रोता हो भैया अनिल सरजू वो हमारा सहयोगी है
1: भाई भाई हम एगो गाना माल जाय करवा रहे अब भी हम लोग के प्रोग्राम रहा जे रेडियो सुने हम लोग के प्रोग्राम रहा जहाँ पे जो भाई सहित रेडियो पे बा भाई गंगा सहित प्रोग्राम करे है वो भाई वो गाना हम लोग के संगे पे गाइस बा और गाना हम मान लो तूने भाई स्क्रीन से
0: अच्छा
1: अंदाज में तू गाना गाइले बाटे बहुत विकराल गए जितना जिन्हें रात में दोरो बैठ वो बचल बतिया थे बहुत अंदाज में गए बहुत मौज गए और जो बैल प्रोग्राम तौर और भाई यूसुफ जो प्रोग्राम का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है मोल के सुनत बहुत मौज करे भाई रेडियो पावन पे बहुत मौज बा के बैल प्रोग्राम भी बा हम लोग के
0: थैंक यू भाई अनिल यानी हम लोग प्रोग्राम प्रोग्राम का कहिए कि जमे लॉयसर अपन दिल के भड़ास निकाल सके कोई कुछ बोले मांगे तो बोल सके कुछ शेर शायरी एटसेट्रा एटसेट्रा दस ऐसे हिलमल फ्री इट इज एन ओपन ओपन टाइट ओपन मोमेंट
1: और हम एक चीज मांगे तो बोले कि जो गाना भी भाई गाय समा लो सब कोई खत्म नहीं गनवा गनवा फिर गाय करवा हमें इतना मोह लगा सुनत हमारे लोग फिर से गनवा सुने भाई हम जाएंगे तलाबाज से में और मोह लगा सुने जितना मने सुने सच बात है जो इस वक्त पाहुन के सुने सच बात है कभी काल कारो को काम लगी तो हम लोग के भी ले चुके तो हम लोग लाइव सुन सके हम लोग के भी हम लोग बेने को फागुन से प्रखामा कर दे कारो को के हम लोग रेडियो को बकैन कर भी इज इज वेलकम और आ सके अपने से आप लोग सुनिए कि भाई गंगा का आवाज और स्टाइल में कौन ढंग में गावे बहुत अच्छी बात है भाई गंगा स्टेज पे इतना इतना मोह तू गावे इतना विशाल आवाज है बहुत हम में बहुत बेचिएगा और गनवा हम बैठ के मायले सुने
0: अच्छा भैया यूसुफ
1: पूरा टीम से हम लोग कैसा भाई
0: और बिना धरिए भैया अनिल बहुत बहुत धन्यवाद गाना तू मंगले वास्तव में को मोई गाना है हम कोशिश कर ली थोड़ा बहुत पता नहीं बाकी सब कोई तो कोशिश कर रहा है बाकी हाँ जितना कराओ का खुरूप के है सब कोई विशाल गावे है जो जो तू बोले है जो कोई कराओ का खुरूप फाउन के मांगे है एंड देन क्यों ना सर जॉनी बनाद रहे दूसरा बीत से बहुत धन्यवाद भैया अनिल
1: या भाई वो गाना में सुना दे अपन एक दफे पर को प्यार से सुन लिया कर
0: ठीक है अब हम ट्राई कर रहे हैं
1: ठीक है भैया
0: या भैया अनिल दंग के या खुरता खुरता अरबिया ओक या
1: ओके सही का तो सब सो सो बेला सही वेलो करने मरान
0: ओ खवाल दे मोय
1: सही कर भैया
0: वो सही वक्त
1: ओके ओके भैया हम हमारे यहाँ आने रात ओके आन कर दे हमारे यहाँ पे इसे आईपैड पर फॉलो कर दे ओके हम सुना बेगाना ओके भाई कर दे
0: एक दुई को गाना है
1: प्रोग्राम है सही ना फल
0: अबे दुई को और है तत्वर वाल ड्राई कर दे ब्रो रेखल
1: ओके रेखल भाई अबे
0: ओके
1: ओके भैया
0: नमस्कार भैया अनिल अच्छा ये था भैया अनिल सरजू हमारा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कोलीग जो इस वक्त घर पर है और कार्यक्रम सुन रहा है।

0: सब कुछ मोई, लड़कन वालन सब अच्छा,
1: सब सब मोई,
0: नाती पोता नतकुरी नतकुरी जितना है।
1: ये को पोता खाली हम में है।
0: हाँ, अरे भाई
1: छोटा वाला, हाँ, चार बरिस के।
0: हाँ, मोई तो मोई
1: और सब कोई मोई।
0: तो प्रीमा भैया बताओ, कोनो शेर शायरी धल्ले है?
1: ओ या या या
0: या सी
1: ये को खोज ली हम।
0: हाँ, गो अहेड।
1: वक्ति तो देखी मोई से बोली बुरेलवा पहले तो
0: पहले पहले पहले
1: हम फेरी करेला समख में से है जो सब सब कुछ ज्यादा जाने हैं अस्तोर ऊपर बक बक बक बक कर करे है। हम खोजली तो सोच ली अपन माए लोग के आज तो बोले है अरे होते सात बहत तो चूहा खाए बिलार भाई भक्ति अपने घूम घाम के सब करके करो रलाती रलाती टूट जाए एक से एक गाना देव और भूख बिल्ली सब करती चूहा इस दिन तो खा ले
0: मुंह से मुंह से।
1: हाँ तो वो समझ ना। हाँ तब मुंह से खा ले और बैठे जैसे भक्ति जैसे कुछ करी
0: नहीं, बड़ा बड़ा दिन पसंद ली वाला।
1: अच्छा अब सीधा जब अपन देश से हमारे मौसी के को हेलो बुक रहा हम बोलबे अरे बिचारी उफल इधर फो रखे यार हम बोलबे हमें बुकवा दे तो कि तो हमने लिखी।
0: हाँ तो ले ली बुकवा ताकि वो बैठ कहीं फर्स स्टॉफ हो गए लवी स्टॉफ हो गए
1: भजन और गाना गाता और इसी जो आज मसला तो ये मसला ना है।
0: हाँ मसला है
1: और सोच ली लाच मैंने जिनवा कब सोचे कि बोल बे तो इनमें से भूल जाबे
0: ना तो लिख लिए देर अग्गे से याद होई।
1: हां तो सच्चे के। हां
0: लिख लिए मैं तीन वन भुला जे हम जानी ला
1: दिस इज उमेवा है दिस इज ना
0: कुछ याद रहे तो देर का मा टेलीफोन निकाल के खंदो में अंपायर वर्ड लिख लेला
1: मन जानी
0: ला हम एक दो रोज बाद भुला जा
1: या मैं सच बोलिए अबे अबे देश के को करे अबे तेजस को करे याद हो वो अबे लिखब तो तू आइए तो बोलिए है कुछ ही रहा विक से आउट हो गया हम लोग
0: तो जाने का करिए जब पेन और ना रहे कागज को ना रहे इन द ब्यूट तो मप वो का नाम टेलीफोन पर इन स्प्रे कर दिए तो
1: ओ या या या या हाँ तो वही कुकुरवा में थोड़ा कुछ कागज
0: इन स्प्रे कर दिए पार दिन स्क्लार तो पार रहे
1: या या या खड़े
0: तू एक बुक। अच्छा भैया बताओ कौन गाना से आज हम लोग तुझे खुश कर सकेला।
1: देखो गाना है मान मैंने लेफा के सारे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के उस वार लेफो कैसी मुन्नित सब लाइफ स्थान को दूर खाने
0: रुक जाना रुक
1: नहीं तू कहीं हार के
0: तू
1: राही और राही
0: हार के रेखल
1: ये जो साइवेर है जो बद्री बद्री
0: तो बहरे ना तक
1: बाहर
0: ना तक रेडियो सुन और गाना सुन।
1: हां सुने ना सुने
0: इसको जान
1: बैठा लाइट
0: ओके फॉर बिया थैंक यू वेल
1: या
0: फाइन आफ्ट हेल फील लाइस प्लेजर एंड टोट ओवर टू वीक मत आ फंदा ओवर वीक हम ना रहा। हां
1: हां मोई बात मोई
0: जखली तक मम्मी लाते बोल दे फिर
1: इसको
0: जान
1: ओके फाइन ना फाइन आफ्ट
0: थैंक यू
1: फाइन
0: अटेंडिंग दा दा बिया। ये थी बिया जी उतरह के रहने वाली। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है ये कहाँ हमने रख दी गाना। हाँ चलो सुनते हैं और ये गाना है रोतरदाम रोतरदाम के रहने वाली उर्शीला जी के लिए। उर्शीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए इस उर्शीला जी आपकी मांगी हुई गीत हमने प्लेयर में रखे हैं। सिर्फ बटन दबाना जरूरी है इस तरह से आ रहा है उर्शीला जी के लिए रोतरदाम के रहने वाली।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: www.fahonfm.nl पर आप चुन है जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। गीत गजल के कार्यक्रम इस वक्त जारी है। इस उम्मीद के साथ आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे और चलिए देखते हैं। जी हाँ, अभी तो लाइन जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है मेरे सामने बैठा हुआ भैया यूसुफ, माशूक यूसुफ। माशूक यूसुफ के तरफ से उनका माशूका जो इपन ब्यूरो में बैठी हुई है, शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए यूसुफ के तरफ से माशूका सीला के लिए शुभकामना के साथ इस तरह से

फिल्म तवायफ में से निकाल कर तेरे प्यार की तमन्ना पद्माश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में रवि के साज पर यह शानदार गीत हमने पेश की। ओवरफान हिंदुस्तानी रेडियो और पेश करवाने वाला था हमारा अमरूपर जो है, हमारा सहयोगी जो है श्रीमान अनिल सरजू। अनिल सरजू ये गीत मांगे हैं शुभकामना के साथ सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, और ये गीत चला भी हम लोगों ने चलाए हैं भैया अनिल के लिए और उनके धर्मपत्नी राबिया के लिए। अनिल जी और राबिया जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद ये गीत मांगने के लिए। घड़ी पे देखूँ तो 18 मिनट व्यतीत हो चला है, 9 बज के हमारा प्रोग्राम रहेगा करीबन 10 बजे तक भैया यूसुफ के साथ। अब चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है एक अनाउंसर्स चॉइस। चलिए अनाउंसर्स चॉइस हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से।

जवान तुम हो जवान हम हैं, ये शानदार गीत पेश हुआ। और देखिए फिल्म दुनिया में से निकाल कर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है बेया जी, पितरा के रहने वाले बेया जी के लिए। हाँ, पितरा के रहने बेया जी के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम पेश करिए। बेया, आपकी मांगी हुई गीत प्लेयर में हमने रख दिए हैं और सिर्फ ऑन करना बाकी है। उतरक के रहने वाली बेया जी के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये शानदार गीत आ रहा है इस तरह से।

ओ राही एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना है। ये शानदार गीत हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँच पर, और ये गीत को चलवाने वाली थी इधरा के रहने वाली बिया जी। इधरा के रहने वाली बिया जी के लिए शुभकामना के साथ बिया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पावन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, और आप सब आपको भी एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है बिया जी के लिए इधरा के रहने वाली। भैया यूसुफ कोई लाइन पे है अभी नहीं? अच्छा ओके। अतः चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है एक अनाउंसर चॉइस। चलिए ये अनाउंसर चॉइस हम आपको सुना रहे हैं पद्मश्री महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में इस तरह से आ रहा है।

0: फिल्म नई रोशनी में से निकाले हैं पद्मश्री महेंद्र कपूर और लता जी, ये दोनों मिलकर ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि ये अनाउंसर चॉइस था। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफन फ्रॉम बिया, कैसे रहले है?
1: चले है धीरे धीरे, चले है धीरे धीरे, मैं तालो दुरुक्त एंड सो
0: मुए दुरुक्त रहे तो मुए तो आज दस से खात इस हर से
1: सिमनस या दत वाल या दत वाल दुरुक्त इस खूद मा बनाई इस दत इस बनाई दत एंड दी दी तो मुझे क्या खाले एंड दी उमर पीछा ना छोड़े हैं
0: ना तो जान गनवा जाने राफी का तेरा पीछा ना छोड़ बस सोनी हूं
1: याद आते सर दीता ओ हरदम हमारे पीछे पीछे जो चीज हम प्लान करे उतना हमारे पीछे पीछे रहे ऑल टाइम।
0: हां तो
1: वो मैं ना पीछा छोड़े हमारे दीता
0: कंतीस कंती कोई तो तेरे पीछे है
1: याद आते हम मनाई थी कि कौन इंसान हमारे पीछे पीछे रहा।
0: अरे इंसान के विश्वास ना है
1: हां
0: इंसान के विश्वास ना है
1: That's okay. Mä dittä kain nok fäkta, mä mät insaan kain nit fäkta.
0: Nei. Beja, batao, kuch dhalle hai? Kuch daru pani dhalle
1: hai? daru pani hai pek nis, mara na huwe ta sanam. Ya, malicha nao, hum na jani, hamal gana bhi laas hoi ga, oho bhi ta, tak chich karate, ugan mo laas tum ga. Na, chap maar einche khappa.
0: तेरे नाइनों ने चोरी किया। हेलो चोरी किया हाँ ठीक है भैया बताओ अब कौन सी रख ले तू।
1: हाँ कुछ भैया तो दुख है रहब फिल मैन से खबर
0: नहीं तो सुन लो एक हम तो मांगला और मने ही बैल कर एक सानी फिरते
1: नहीं एक सख फिल मैन से है खबर जैसे मखनी लंग हो वन बट के ढेर गाना ड्राई करे तो
0: ना खाली दो जने यही है ना नखंदाम फन अलमेर मुफरो अंशला जोन जो कोई बैल करी तब नहीं तो झूठे बैठल
1: बदलते इंसानों की बात हमसे मत पूछो। हमने अपने हमदर्द को अपना दर्द बनते देखा है। कभी कभी हम एक इंसान के खातिर पूरी दुनिया से बेदार हो जाती है। अकेले चलना सीखो, यहाँ साथ देने वाले भी रास्ता बदल लेते हैं, जिसे तू अपना दुनिया समझते वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अंत में तुम ही तुम्हारे हैं।
0: सही बात है।
1: सो इस तो
0: 16 आना सच।
1: हाँ, अंत में ऐसे हो जा है कि कोई ना है तो आगे पाछे, इतना लड़कन रही सब कोई रही, मैं दुख में और तो दुख भी कोई सहे ना पाई भी अपने सहे के परी तो या चलो दून तो खातर
0: भैया खगोल थैंक यू वेल
1: या एक तो सेक फाइना आफन
0: या ओके
1: एंड तो द फॉलोइंग केयर
0: या तो द फॉलोइंग केयर भैया थैंक यू
1: वेल इट वुड रियली ओवर डन
0: या ही फील लाइक अ प्लेजर एंड
1: या थैंक यू वेल
0: तो द फॉलोइंग केयर
1: तो द फॉलोइंग
0: वीक में सेम विद द नीड एंड वीक दैट दिस नीड
1: ओके सेम विद द नीड
0: नी को ओके दिस के हम लोग आगे फिर
1: ओके ओके ओके
0: ये थी बेया गजराज जी दरहा के रहने वाली। तो बेया गजराज जी के बाद हम चलो पेश करते हैं और पहुँचते हैं अलमेरा। दनहाक से पहुँचते हैं अलमेरा। अलमेरा में बैठी हुई अंशला जी, अंशला जी ये गीत मांग रही है। अंशला जी आपकी मांगी हुई गीत हम लोग प्लेयर में रखे हैं, अभी आप ये गीत मांग रहे हैं अपने पतिदेव श्रीमान नवीन गोपाल राय के लिए। नवीन गोपाल राय के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ अंशला की तरफ से नवीन के लिए चलिए ये गीत इस तरह से आ रहा है। अंशला जी

क्या बात है, ये शानदार गीत पेश हुआ ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गजल के कार्यक्रम में, जबकि आज सोनदक सेशन ट्विंट जुली है, जुलाई है। और देखते हैं आंशला जी, आंशला जी रहने वाली अलमेरा की, अलमेरा के रहने वाली आंशला जी की तरफ से ये गीत पेश हुआ उनके प्यारा दंपति पतिदेव, जी हाँ पतिदेव, श्रीमान नवीन गोपाल राय जी के लिए। भैया नवीन, उम्मीद है गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप इत्मीनान से सुने होंगे। भैया नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आंशला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ धन्यवाद पेश किया जा रहा है आंशला जी और नवीन जी। तो चलिए आखिरी गीत हम पेश कर रहे हैं, वो है देखते हैं दनहा के रहने वाली बेया गजराज जी, बेया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ। चलिए ये गीत हम चला रहे हैं, देखते हैं एन दत्ता के साज पर निखती अख्तम फिरत का ये गीत है, 1948 का ये गीत है, फिल्म है प्यार की जीत। फिल्म प्यार की जीत बहुत पुरानी फिल्म है, हम कि डर लग जाए यार ताल बोलत। बहरहाल भैया जी आपकी मांगी हुई गीत चलो हम पेश कर रहे हैं। इस तरह से दनहा के रहने वाली बेया जी के लिए शुभकामना के साथ बेया जी इस तरह से आ रहा।

तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया। ये गीत सुरैया जी ने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रात के गीत गज़ल के कार्यक्रम में। हमने निकाले हैं निगतिन अख्तम फिरतिक से ये गीत और पेश किए हुसनलाल भगत राम के साज पर। चलिए ये गीत चला दना के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया जी, उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। अब ये गीत हम लोगों ने पेश किए बेया जी के लिए। बेया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए थोड़ी से ये गीत सुनाते हैं और उसके बाद

बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हम लोग आपसे मिल रहे हैं अगले सप्ताह, नहीं कहो क्रिसमस को, आने वाला रविवार को हम सब नहीं रहेंगे। हाँ, दोंदरदाग के मैं आपसे मिल रहा हूँ। दोंदरदाग तो सतवाल फ्यूरन फैफ्टीन तिरतवाल फ्यूरन ग्रीवीर तुस्तमेदख। और मुझे इजाज़त दीजिए भैया यूसुफ के भी, और यहाँ से आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी मिलकर आपकी सेवा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए भैया यूसुफ को, एक शुभ रात्रि।

प्रिंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ न फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी के नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्दे करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नहीं खत का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है साजन

बहुत ही प्यार करते हैं, तुझको जन्म ताराया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं थी मुकेश का ये सॉन्ग है।

बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइकी मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको सुनाएंगे मुकेश एवरग्रीन मेलोडी सॉन्ग है ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे और गीत है इस फिल्म में दोस्तों लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांझ करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा। निकटी होंद द्रियन जस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: Hartstikke.
1: Zo, die kan wel een cool best.
2: Yes, doostu. To ye kuche. Beech beech me kabhi kabhi. Achhe achhe gee sunane ke mood me hum ho jate hai. और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने, भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

इसमें फिल्में हैं और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक सेफ नफेटा फाहून।

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारी यारों? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म के नाम है खल नायक। इस नहीं सोन ओ फिल्म से मार अति से ही लमोई नंबर लात हुई वीडियो के खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कुछ पूर्वाभासी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न कि जिन लोगों को सपने आए उसका उनको पूर्वाभ्यास पहले से पता चल गया था और उनके सपने इतने ऐतिहासिक बन गए कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। ऐसे ख्वाब यानी सपने उन्हीं व्यक्तियों को आते हैं जिनका जीवन कुछ आध्यात्मिक रहा हो अथवा जिनमें सत्व गुण की प्रधानता रही हो। इनका समाधान फ्रायड के सिद्धांतों से कदापि नहीं हो सकता। उन स्वप्नों में बड़ी विचित्रता होती है जिनके द्वारा बहुत से व्यक्तियों को भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो चुका है तथा आज भी हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कम से कम एक दो बार ही ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं कि उसके सपने सच होते हैं, जिसके कुछ ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। सुनने वालों, ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं कि जिनको सपने आने से पहले ही उसका पता चल जाए कि सपने क्यों आएगा और सपने में क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई देंगी।

महाराज हरिश्चंद्र का स्वप्न। भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र था और वो सच के देवता कहलाते थे। सुनने वालों, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। महाराजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण साम्राज्य दान कर दिया था और अगले ही दिन उन्होंने वास्तव में अपना राज्य त्याग दिया। सुनने वालों, महाराजा हरिश्चंद्र जी को ये सपना आया कि इन्होंने अब विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया और उन्होंने अगले दिन वही सच कर दिखाया और अपना सारा राज्य दान में दे दिया और उसे त्याग दिया। अभिनेता चंद्र मोहन का रेस का घोड़ा। एक प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय चंद्र मोहन का घोड़ा रेस में दौड़ने वाला था, परंतु रात को ही चंद्र मोहन को स्वप्न आया कि उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते खड्डे में गिरकर मर गया है और सचमुच उनका घोड़ा ठीक उसी स्थान पर मर गया जहां उन्होंने स्वप्न देखा था। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में बुद्धिमान का स्वप्न। बाइबल में बालक यीशु ने जन्म पर उन्हें देखने आ रहे बुद्धिमान लोगों में से एक को सपने में हेरोड की तरफ ना जाने का निर्देश मिलता है और वह दूसरे रास्ते से अपने देश लौट जाते हैं। जोसेफ के सपने में एक देवदूत उसे बच्चे और पत्नी के साथ मिस भाग जाने का निर्देश देते हैं। इन स्वप्नों के कारण यीशु के प्राणों की रक्षा हो सकी।

हिल प्रिक तथा प्राचीन शिलालेख। प्रोफेसर हिल प्रिक ने एक प्राचीन शिलालेख का संपूर्ण एवं स्पष्ट उत्तर स्वप्न में ही एक बेबीलोन के गाइडर से प्राप्त किया था।

वासुदेव का स्वप्न। मथुरा के कारावास से भगवान श्री कृष्ण को बचाकर नंदगांव ब्रिज में पहुंचाने में सपनों का योगदान कुछ कम ना था। उसी रात माया रूपनी देवी वासुदेव के स्वप्न में आकर उन्हें ऐसा करने का आदेश ना देती तो सत्यवादी वासुदेव शायद ऐसा कभी नहीं करते।

लेखकों की रचनाओं की प्रेरणा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कई गीतों के भाव स्वप्न में ही प्राप्त हुए थे और बाण भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कादंबरी भी उनके स्वप्न की ही देन है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं जो बंगाल के थे। तो उनको जितने भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कादंबरी, और उनका उन्हें ज्ञान स्वप्न में ही पहले हो गया था।

जूलियस सीजर की पत्नी का स्वप्न। शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में एक स्वप्न का जिक्र किया है। रोमान साम्राज्य के ऐतिहासिक लेखक प्लूटक के अनुसार सीजर की पत्नी कानिलिया ने एक रात स्वप्न देखा कि उसके पति सीजर की हत्या हो गई है तथा विरोधियों का षड्यंत्र सफल हो गया है। अगले दिन उसने अपने पति से अनुरोध किया कि आज वह दरबार ना जाएं। उसी दिन दरबार में उनकी हत्या हो गई।

आज मैं आपको अलग अलग लोगों के वृत्तांत सपनों में सुना रही हूँ, जिनको सपने आए और वह हकीकत में वो सच हुए। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। जे डब्ल्यू डने का स्वप्न। जे डब्ल्यू डने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अपने एक स्वप्न का वर्णन किया है। वह एक बार स्वप्न में एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था, जो एक द्वीप था और जो ज्वालामुखी के खतरे में पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी दरारों से भाप उफन कर निकल रहे थे। उसके मन में वहाँ के 4,000 निवासियों को बचाने की लालसा जागृत हुई। उसने उसकी यथार्थ संभव चेष्टा की और जितनों को बचाया जा सकता था उसने बचाया। कुछ ही दिनों बाद डने ने डेली टेलीग्राफ नामक पत्रिका में माउंट पीले ज्वालामुखी के विस्फोट की चर्चा पड़ी, जिसमें पश्चिम द्वीप समूह में मार्टिनी के द्वीप के सेंट पियर नगर में 40,000 व्यक्तियों को उनकी प्राण रक्षा के लिए जहाजों द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने का जिक्र था।

भूपूर्व राष्ट्रपति कनेडी की दुर्घटना। कनेडी को अपने साथ होने वाली दुर्घटना का अभ्यास स्वपन द्वारा एक दिन पहले ही हो गया था। वह टेक्सास की यात्रा पर गए और गोली लग जाने के फलस्वरूप उनकी यह लीला समाप्त हो गई।

यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सब सुन रहे हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन की प्राण रक्षा। यह सन 1885 यानी आख्तिन फाइफन ताख्तक में भारतवर्ष के वायस राय थे। एक बार आयरलैंड में उन्होंने अपने किसी मित्र के घर पर स्वप्न देखा कि जंगल में जाते हुए किसी व्यक्ति के करहाने की आवाज़ सुनी, यानी रोने की आवाज़ सुनी, जो पीठ पर बड़ा सा संदूक लादकर ले जा रहा था, जो इतना विकराल तथा विभक्त था कि वह डरकर जहां के तहां ठहर गया। डफरिन ने जोर से पूछा, इस बॉक्स में क्या है? इतने पर ही वह व्यक्ति अदृश्य हो गया और डर के कारण उनकी नींद खुल गई। कुछ समय पश्चात उनको फ्रांस में राजदूत के रूप में जाना पड़ा। एक दिन ब्रांड होटल में किसी राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वह ऊपर की मंजिल में जाने वाली लिफ्ट के पास थे तो वह देखकर चकित रह गए कि स्वप्न में देखा गया विभत्स चेहरे का व्यक्ति ही उस लिफ्ट को चला रहा है। वह होटल के मैनेजर के पास गए और उस लिफ्ट मैन के बारे में पूछताछ करने लगे, तो इतने में ही वह लिफ्ट मकान की पांचवी मंजिल तक पहुंचकर टूट कर गिर पड़ी और उसमें सवार सभी मारे गए। स्वप्न के कारण उनकी प्राण रक्षा हो सकी।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। युद्ध भूमि में अर्जुन का स्वप्न। माँ भारत में जब अभिमन्यु मारा गया तो उसके पिता अर्जुन ने आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की कठोर प्रतिज्ञा की। अपने शयन कक्ष में जाकर यानी अपने स्लाप कामर में जाकर श्री कृष्ण के आदेशानुसार महर्षि व्यास द्वारा बताए गए शिव मंत्र का जाप करता हुआ वह निद्रा देवी के अधीन हो गया। निद्रावस्था में अर्जुन ने एक स्वप्न में देखा। स्वप्न में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम पशुपत नामक सहारक अस्त्र से ही कल जयद्रथ को यम सदन पहुंचा सकते हो, इसलिए मन ही मन में शंकर जी का स्मरण करो। भगवान शंकर की कृपा से उनके भक्त होने के नाते यह शस्त्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार अर्जुन ने स्वप्न में ही आचमन किया और शंकर जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। स्वप्न में ही अंतरिक्ष में उड़ते रहे। उत्तर दिशा में एक सफ़ेद पर्वत देखा। कुबेर सरोवर के दर्शन हुए जिसमें खिला कमल पुष्प देखा। गंगा तट पर साटिक मुनियों के पर्वत थे। मंत्रशर पर्वत देखा। ब्रह्मतुंग एवं अन्य काले पहाड़ देखे। रत्नों से भरा समुंदर देखा। फिर एक पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। प्रणाम सूक्ति उपरांत अर्जुन की अभिलाषा देखकर हंसते हुए बोले, वत्स पास के सरोवर से धनुष बाण ले आओ। वहां पर दो नागों का परिवर्तन देखकर अर्जुन ने उनसे पशुपात अस्त्र देने की प्रार्थना की। शंकर जी ने अभिदान के साथ पशुपात अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन का वह स्वप्न सिद्ध हुआ।

डूबते जहाज का दृश्य। डॉक्टर मेसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 29 जनवरी यानी कि नेघन देर तक को कप्तान समुद्र का एक जहाज सिडनी से कोयला भर कर चला। 9 फरवरी को उसमें पानी भरने लगा और वह एक गांव में जा बैठे और एक सप्ताह इसी प्रकार बहते रहने के बाद 16 फरवरी को किसी जहाज ने उन्हें बचा लिया। 9 फरवरी को ही कप्तान की 13 वर्षीय कन्या को स्वप्न आया कि उसके पिता का जहाज डूब गया और उसका पिता फटे कपड़े पहने घर आया है। उसने अपनी माँ को जगाकर स्वप्न सुनाया।

ट्रिले द्वारा वर्णित स्वप्न। श्री ट्रिले ने अपनी पुस्तक में एक स्वप्न का वर्णन किया है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर अमेरिका जा रहा था। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने उसका एक टिकट खरीदा। जहाज रवाना होने से 10 दिन पहले उसने एक स्वप्न देखा कि जहाज का एक सिरा ऊंचा उठ गया है और उसके यात्री आसपास तैर रहे हैं। न्यूयॉर्क से कोई तार आने पर उन्हें यह यात्रा स्थगित करनी पड़ गई और टिकट वापस कर दिया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 14 या 16 को डूब गया। सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि टाइटैनिक के ऊपर फिल्म भी बनी है।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। मेरना ने भावी पति को बचाया। पोलैंड की एक लड़की ने मेरना को एक रात स्वप्न आया कि उसका भावी पति, जो सेना में काम कर रहा था, किसी सुरंग में फंसा है जहाँ मोमबत्ती जल रही है, और वह बार बार मेरना का नाम लेकर पत्थर हटवाने की प्रार्थना कर रहा है। डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया। पर एक दिन वह एक किले के पास से गुजर रही थी कि एकाएक चिल्लाने लगी कि यही वह स्थान है जहाँ उसका भावी पति फंसा हुआ है। पत्थरों को हटाकर दरवाज़ा निकाला जहाँ से निर्बल मैली कुचैली हालत में एक व्यक्ति घिसट कर बाहर निकला, जो फौजी स्टोर की रखवाली कर रहा था, जहाँ एक गोला गिरा था और वह दब गया तथा खाद्य सामग्री और मोमबत्तियों के सहारे जीवित बना रहा। श्री विष्णु महादेव भट्ट सन 1910 में श्री सावकार के दल में एक क्रांतिकारी थे, और सन 1915 में लोकमान्य तिलक, केसरी और मराठा पत्रों के सहायक संपादक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में तीन स्वप्नों का वर्णन किया है जो इस प्रकार थे।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। गणेश गीता का ठीक स्थान, उनके एक मित्र श्री डी के साठे BA BSc एक अच्छे वैज्ञानिक सोंगली इंजीनियरिंग कॉलेज में गणेश के सच्चे भगत थे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्वप्न में कोई अनजान व्यक्ति उन्हें श्री गोध लेकर के घर से गणेश गीता की रेशमी जिल्द खरीदने लाने को कह रहा है, जो ऊपर के कमरे में अलमारी के दूसरे खाने में तीसरे नंबर पर रखी है। चाहे उन्होंने पुस्तक व्यवसाय छोड़ दिया था, फिर भी पुस्तक वहीं मिली। सुनने वालों कि उन्होंने जो पुस्तक उनको चाहिए थी वो उनके घर की अलमारी के ऊपर ही पड़ी थी और उनको वहीं से मिली। सुनने वालों, ये है आप सबका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपको थोड़ा और आगे बताने की कोशिश करूँगी छींक के बारे में। छींक तो हम सबको आती है और छींक को हम अशुभ भी मानते हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। एक नाक दो छींक काम बने सब ठीक, छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। सुनने वालों, हमारा नाक एक है लेकिन अपनी छींक महाअशुभ होती है, वो तो आप सब जानते हो। सुनने वालों, अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ, गौ की छींक मरण का संकेत देती है, कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा, फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दहानी द्रव्य विनाशे, पीठ पाचली सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे, ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी। शराब संधनी सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक अथवा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या धोबिन रास वाला विशेष अशुभ होती है। आसन शयन शौच दान भोजन औषधि सेवन विद्याराम और बीज बोने के समय शुद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ छींक के बारे में थोड़ी सी, कि जब हम लोगों को छींक आती है तो हम उसे अशुभ मानते हैं। सुनने वालों देखो ना, हम लोग हिंदुस्तानी हिंदू लोग उसे अशुभ मानते हैं और बकरा लोग उसे शुभ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आई तो देखा जब छींक आती है तो कहते हैं खजोन ताइद। मैंने कहा वो छींक आने पर खजोन ताइद कहते हैं कि तुम ठीक ठाक रहो, तुम्हारी सेहत ठीक हो। और हम जब भारत में थे तो छींक आती थी कहते ओहो कहीं बाहर जा रहे हो, पैर झाड़ के जाओ, जाओ रुक जाओ एक सेकेंड के लिए। सुनने वालों, ये सब जो मैं आप सबको बता रही हूँ या सुना रही हूँ, ये सब हमने स्वप्न विज्ञान से निकाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं छींक पर कार्य, कि जब हमें छींक आती है हमें कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसका फल क्या है। छींक पर कार्य, गमन करना, कि हम जब कहीं जा रहे हैं घर से निकल के तो कार्य में बाधा, उसका फल मिलता है अगर किसी को छींक आ जाए तो। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न, कहते जब एक से ज़्यादा छींक आए तो कार्य शुभ हो जाता है। प्रवासी के बाईं ओर अशुभ है कार्य करने जाना, खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ विधन, अगर छींक आ जाए हम कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाती है। व्यावसायिक कार्य, कि अगर हम वैसे कुछ कार्य करने बाहर जा रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित करें।

इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है ही, पर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान भी उसके पास ही है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: कुष्टुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब फिर इकट्ठे हो चुके हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो हम सब लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। संदेश क्या रहेगा आज, वो अभी हम सब सुनेंगे राजेंद्र जी से। और इस समय जो शांता जी भी कुछ तैयार हो चुके हैं, तो शांता जी आप पहले कुछ सुनावे तो राजेंद्र जी की ओर हम सब बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज से बेहतर कुछ नहीं, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। मेरी आवाज़ के प्यार सुनने स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आज के ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में तो बढ़ चलते हैं सुनने के लिए राजेंद्र जी की ओर।
2: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा आदर और प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आपने अभी शांता जी से सुना कि आज आज और अभी की जो बात करी है वो बहुत ही अच्छी लगी, सबको लगी होगी। और आज का जो प्रोग्राम है दो प्रोग्राम, एक तो बिल्व पत्र का है, बेल पत्र जो भगवान शंकर को बहुत ही प्रसन्न हैं और जिनसे वो बहुत खुश होते हैं, और दूसरा है द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो हम पूर्ण रूप से आज द्वादश ज्योतिर्लिंग और बिल्व पत्र की बात सुनेंगे। सुनने वाले श्रोताओं इसको आप बड़े अच्छे से सुनेंगे और मनन करेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
0: राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कह दिए है। तो अगर जो ज़्यादा ना कहूँ
2: जी,
0: तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए हर सप्ताह की तरह आप एक सुंदर सा गीत और रखते हैं, तो वो सुंदर गीत की ओर हम सब बढ़ते हैं जिनका मन उदास है उनके लिए, ताकि वो इस कार्यक्रम को और खूब भावना से सुन सके। तो गीत का बोल आप ही कह दीजिए राजेंद्र।
2: उदासी मन काहे को
0: डरे,
2: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। अभी राम जी बेड़ा पार करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।

0: जी सुंदर गीत जो आपने चलाए और हर सप्ताह की तरह सभी सुनने वालों के लिए, और ये तो हमारे बात है कि कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और आज का विषय जैसे कि आपने कह चुके हैं कि 8 दिनों जो कि है जिसे बेलपत्र ना तोड़ा जाए, तो ये संदेश अभी तो हम सबको प्राप्त होने वाले हैं, पर ये बताइए कि आज के दिन आपके कैसे बीते।
1: हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा बीता है। मेरा हर दिन अच्छा ही रहता है, और जब अम्मा मेरा दिन अच्छा रहेगा तो दूसरे का भी अच्छा ही रहना चाहिए। तो आप बताइए कि शांता जी, आपका आज का दिन कैसा बीता?
2: मेरे भी बहुत अच्छे से बीते और मैं भी बहुत खुश हूँ। और रहा देख रही थी पर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो में उपस्थित हो हम अपने साथी और समाज को सेवा करने के लिए।
0: पर शांता जी,
2: हाँ जी,
0: कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले जरूर कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं देख रहा था आप स्टूडियो की ओर बढ़ रहे थे तो गुलदस्ता लेकर आए हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ मिठाई लेकर आए, कहीं आज आपका हैप्पी बर्थडे तो नहीं है?
2: हैप्पी बर्थडे वैसे तो जब सुबह आँख खुल जाती तो हैप्पी बर्थडे हो जाती है।
0: ऐसा
2: क्योंकि हर दिन मिलता या आँख खुल जाता है, जाने हर दिन एक मौका मिल गए है कुछ अच्छा करने के लिए। और ये गुलदस्ता जो है तो मेरी आदत है, जहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ,
0: जहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ,
2: ये मेरी आदत है ना।
0: आपके आने से और जहाँ पर लेकर फूल लोग जाते तो वहाँ का
2: माहौल
0: बदल जाता है ना।
2: हमने देखे यहाँ पे आए तो जो वहाँ व्यक्ति बैठे थे वो सभी खिल उठे। हाँ, वो सभी के 32 ही हमने देख ली।
0: बोले तो सभी को 32
2: सभी का 32 ही हमने देख ली।
0: सुनने वालों, अभी हम सब कार्यक्रम जो आगे बढ़ाने वाले, पर शांता जी आपने तो मुझसे नहीं पूछा कि मेरा कैसा दिन हुआ।
2: आपने मौका नहीं दी तो हम क्या करें, तो मैं यही पूछ लेती हूँ संजय जी, आप
0: दिन ठीक था, वैसे तो बुरा नहीं था, पर आज काम ज्यादा था ना, समय का कमताई और काम का दबाव।
2: अच्छा,
0: ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश और हमारे सभी सुनने वालों के लिए, हम सब कुछ संदेश लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कहा जाता है कि जैसे शांता जी सोचते कि हमें भी और सेवा के ओर बढ़ना है, तो छोटा रूप में ये भी सेवा समझो, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम सब साथ में मिल करके और कुछ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि राजेंद्र जी ने सुना ही चुके हैं कि आज का अविषय, राजेंद्र जी पहला वाला कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज का जो विषय पहले वाला, 8 दिनों में बेलपत्र तोड़ना मानते हैं अशुभ, शिव जी कहते हैं।
0: तो शिव जी का एक गाना क्यों नहीं चला देते?
1: हाँ, सबसे पहले शिव जी का एक गाना
0: चला देते हैं राजेंद्र जी।
1: जी जरूर।

0: कोटि नमन दिगंबरा, अभी आपने पंचाक्षर शिव स्त्रोतम सुना, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं आज का जो कार्यक्रम है उसकी तरफ, कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है बेलपत्र, जिसको कहते हैं कि बेलपत्र में तीन पत्ते होते हैं और कभी कभी पांच पत्ता भी देखने को, चार पत्ता भी मिलता है, बहुत कम, लेकिन एक पेड़ में हो सकता है कोई एक आध हो, लेकिन ऐसा हमने देखा है भारत में भी। आगे बढ़ते हैं, बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को तथा दोपहर के बाद नहीं तोड़ना चाहिए।
1: ये तोड़ना नहीं चाहिए?
0: कब नहीं तोड़ना चाहिए?
1: किस दिन, एक बार फिर बोल दो।
0: चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को तथा दोपहर के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। सुबह सुबह तोड़ सकेला?
1: सुबह सुबह तोड़ सकते हैं, पर शाम में नहीं,
0: नहीं
1: दोपहर में नहीं,
0: दोपहर के बाद नहीं,
1: दोपहर के बाद नहीं, यानी कि रात्रि में नहीं तोड़ना चाहिए।
0: हाँ, दोपहर मतलब 12 बजे के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। फिर
2: एक छोटी सी सवाल है
0: जी,
2: आपने कहा चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, आप कैसे जानोगे कि कब चतुर्थी है, अष्टमी है, नवमी है, एक इसका गिनती कैसे करोगे?
0: इनका गिनती बहुत ही सरल है, जब चंद्रमा,
2: हाँ,
0: चंद्रमा के अनुसार आपको पता चल जाता है। संजय जी आप बताइए कैसे इसका पता चलता है?
1: अमावस्या होता है जब चंद्रमा एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है,
0: मतलब एकदम
1: एकदम काला,
0: जीरो जीरो
1: जीरो, और नियोमान बोले ना,
2: पूर्णिमा,
1: पूर्णिमा कहते हैं जब पूरा
0: पूरा हो जाए चंद्रमा,
1: हाँ पूरा चंद्रमा हो जाता है, ऐसा होता है। और उसी दिन से जहिया पूर्णिमा होता है उसी दिन से गिना जाता है, तो लगभग 14 रात्रि में वो फिर दोबारा जो पूर्णिमा से अमावस्या हो जाता है, कृष्ण पक्ष लगते तो एकदम अंधेरा हो जाता है और शुक्ल पक्ष होते हैं तो उजाला हो जाता है
0: पूर्ण चंद्रमा।
1: हाँ, तो ये कोई खास बात नहीं शांता जी, ये तो घर घर को पता है, और आप तो भी ऐसे ही अपना कार्य करते होंगे क्योंकि एकादशी व्रत तो आप रखते हैं।
2: ना, इसलिए मैं पूछी क्योंकि आप जानते हो, मैं जानती हूँ, राजेंद्र जी जानते हैं, ऐसे भी कई सुरतागो हैं।
1: आपके चलते कितने लोगों भी इस बात को जान जाएंगे।
2: नहीं तो
0: हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन तिथियों को बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, इसलिए कभी भी इन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने व मनोरथ पूर्ण करने वाला माना गया है, लेकिन बिना बेलपत्र चढ़ाए शिव की पूजा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि शिव जिस चीज़ से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं वह बेलपत्र ही है।
1: है कि शिव जी का बेलपत्र इतना प्रसन्न है, त्रिगुणम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पापहरणम बेलपत्राणी समर्पयामि न
0: जी।
1: हाँ, तो हम इस समय हमारे टेलीफोन जो हमारे भाई जी टेलीफोन किए हैं, थोड़ा से अगोल लेना, अभी हम लोग आपसे बात करेंगे। पर ये बात हो जाता है कि शिव जी के बेलपत्र सबसे प्रिय,
0: सबसे प्रिय होते हैं,
1: तो यहाँ हॉलैंड में होता है शांता?
0: हॉलैंड में बेलपत्र मैंने नहीं देखा है कभी,
2: उसका पौधा हमने देखी है।
1: हाँ, पौधा हो जाता है कहीं काल के, पर बड़ा नहीं होता है,
2: अब पता नहीं है, हमने दिखी नहीं।
0: हाँ, मुझे लगता है कि हॉलैंड में अगर बोएंगे बेलपत्र तो हो सकता है, लेकिन
1: नहीं, लोग कितने कोशिश किए राजेंद्र जी, पर यहाँ पर देखो नीम का पेड़ तो बड़ा बड़ा हो जाता है ना।
2: हाँ,
1: पर बेलपत्र में पता नहीं क्यों कि ये और यहाँ नहीं, क्यों नहीं होता ये नहीं पता मुझे। तो आगे का वृतांत क्या है राजेंद्र जी?
0: लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना करते समय सप्ताह के दिनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में से एक दिन ऐसा भी है जब बेलपत्र को तोड़ना अशुभ माना जाता है। ज़्यादातर लोग यह सोचकर शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र अर्पित करने से शिव अधिक प्रसन्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
2: अच्छा।
0: शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी पेड़ से पुष्प व उसके पत्तों को बेवजह तोड़ना पाप का भागी बनाता है।
1: शांता, ये बात तो मुझे नहीं पता था राजेंद्र जी।
0: हाँ, तो अब आपको पता चल गया था, आप मनन करें इस विषय में, इसलिए इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें। बेलपत्र भी एक बेलपत्र भी एक पौधे पर होते हैं, वैसे तो एक ऐसा भी समय होता है जब बेलपत्रों को तोड़ना मना ही रहता है, लेकिन उस दिन के बारे में इतनी आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए बेलपत्र तोड़ते समय यदि कुछ मंत्रों का जाप करें तो इस पाप से छुटकारा पा सकते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र जी
0: जी,
1: गीत की ओर बढ़ने से पहले
0: हाँ
1: भला ये तो बता दो कि मंत्र कौन सा।
0: हाँ, वो मंत्र है अमृतोद्भव श्री वृक्षा महादेव प्रिया सदा गृहिणामी तव पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात। इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे बेलपत्र को तोड़ते समय
2: जी,
0: तो कोई पाप नहीं लगेगा आपका।
1: राजेंद्र जी, पर आप तो संस्कृत का दाता, संस्कृत का दाता, तो इसे थोड़ा से और हमारे भाषा में, हमारे सरनामी में थोड़ा से बता दे कुछ।
0: हाँ, संस्कृत का दाता नहीं बोलेंगे, संस्कृत का ज्ञाता बोल सकते हैं। दाता मतलब जो देने वाला, ज्ञाता मतलब जो जानने वाला, थोड़ा
1: हाँ,
0: जानने वाला
1: जी। और आप तो हम लोग के गुरु है, तो
0: हाँ,
1: इसमें थोड़ा से और बोले तो सरनामी में कुछ बोल दे।
0: अमृतोद्भवा श्री वृक्षः, अमृत अमृत का समान है महादेव को उपासना करीला सदा, मतलब रोज गृहनामी ग्रह घर में तब पत्राणी, इसके बाद पत्र पत्र को शिव पूजार्थ मादरात, शिव की पूजा करने के लिए तोड़ सकते हैं, ऐसा इसमें एक मंत्र है।
1: सही बात, तो इस बात को अब हम सबको ये ज्ञान को प्राप्त हो गया है कि बेल पत्र तोड़ने में भी मंत्र का और उपयोग किया जाता है ताकि आपको कोई प्रकार के दोष ना लगे।
0: हाँ, क्योंकि बेल पत्र अमृत के समान होता है और उन श्री वृक्ष से जो महादेव का वृक्ष है उससे लेते हैं हम लोग, तो पहले उनकी आज्ञा लेनी होती है, इसके बाद शिव की पूजा के लिए पत्र तोड़ना होता है, यही इस मंत्र का उद्देश्य भी है।
1: क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ,
1: तो हम फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे क्योंकि दोस्तों ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य बस यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा से और प्रकाश आ जाए और हमारे विशेषज्ञ लोग जो हम लोग के लिए खोज खोज करके चुन चुन करके और विषय रखते हैं, और हमारे साथ राजेंद्र जी और शांता जी और मैं खुद यहाँ लेकर आपके लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा गीत इस समय राजेंद्र जी जो प्लेयर पर रखने वाले हैं।

भोलेनाथ की जो धुन है ओम जय शिव ओंकारा, उससे पहले की हम वो बाद में, और ओम जय शिव ओंकारा के पहले जो डम डम डम डमरू बजे, इसके बाद शिव ओंकारा होता है, तो हमने थोड़ा सा लिरिक्स पहले सुना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डमरू की तरफ, डमरू बजेगा और डमरू डमरू जो है मटकी में बजता है।

0: डम डम डम डमरू बजे, जब डमरू बजता है तो इसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू हो जाता है। शास्त्रों में बेलपत्र तोड़ने को निश्चित काल तय है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। 6 माह तक बासी नहीं होता बेलपत्र, बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं होता, इसलिए आपको जाके सरनाम और इंडिया से बेलपत्र मंगा के 6 महीने में एक बार मंगा लो और इसके बाद 6 महीने तक चलता रहेगा। मैंने देखा है गंगाराम पंडित जी के यहाँ के भी 6 महीने तक बेलपत्र रखा ही रहता है। मैंने बहुत बेलपत्र उनके यहाँ भी देखे हैं, बीच में चढ़ाते रहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो लें और फिर उसको श्री भगवान शिव पर चढ़ा दें, यह उतना ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है।
1: 6 महीना तक बेलपत्र बासी नहीं होता?
0: नहीं।
1: पर अभी आपने कहा कि कोई चढ़ाया हुआ बेलपत्र तो उसे आप धोकर भी चढ़ा सकते हैं।
0: हाँ, चढ़ाया हुआ बेलपत्र को दोबारा धो लिया जाए तो वो भी उतना ही माना जाता है,
1: उतना ही कीमती हो जाता है।
0: उतना ही कीमती हो जाता है।
1: ओके, यानी कि बेलपत्र धोकर भी चढ़ा सकते हैं।
0: हाँ, धो के चढ़ा सकते हैं
1: और 6 महीना तक वो
0: बासी भी नहीं होता।
1: बासी नहीं होता
0: जी। दूसरा नंबर है कि घर की दरिद्रता होती है दूर। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसका पेड़ लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
1: लक्ष्मी का प्राप्ति
0: जी,
1: यानी कि पैसा अंदर आए।
0: हाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति मतलब लक्ष्मी का आशीर्वाद है तो पैसा धन की कोई अन्न धन
1: पैसे तो कहने के बात यह है कि लक्ष्मी ना सिर्फ पैसा है पर वातावरण बदल जाता है।
0: हाँ, लक्ष्मी ना सिर्फ पैसा है, वातावरण बदल जाता है, अन्न भी है, धन भी है और वस्त्र भी है।
1: सही बात।
0: तो सब चीज में लक्ष्मी की कृपा होती है तो हो जाता है। काशी समान होती है ऐसी जगह। पुराणों के अनुसार जिस स्थान में बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ हों जैसे घना वन, वह स्थान काशी के समान पवित्र माना जाता है। वहाँ हर रोज शिवलिंग की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है।
1: तो ये एक काशी का समान ये क्यों कहा है आपने राजेंद्र जी? क्योंकि काशी तो एक तीर्थ स्थान है ना।
0: हाँ, काशी वाराणसी जो भारत में है वो भगवान शंकर की नगरी है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने वो नगरी जो है अपने त्रिशूल पे बसाई हुई है। इस दुनिया में उसका नहीं है, वो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में अलग से बसाई है, वो काशी की बात चल रही है।
1: तो शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं राजेंद्र जी, देखते हैं कि बटन उसका ऑन होता है आज कि नहीं।
0: शांता नहीं जी? बटन ऑन ही है। आप कहिए शांता जी।
1: कही
2: नहीं, काशी जैसे आपने कहा त्रिशूल पे धारण की है शिव जी ने
0: जी।
2: अच्छा, हाँ तो
0: जो
2: प्रलय होगा जैसे हम जानते हैं कि फिर भी जो काशी पे शिव जी जो अपने त्रिशूल पे धारण की है वो नहीं डूबेगा।
0: नहीं, जब प्रलय इस धरती का होगा तो इस धरती में काशी नहीं आता है तो वो तो भगवान शंकर बताएंगे कि वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, क्योंकि उनके त्रिशूल पे बसा हुआ है।
2: अच्छा।
0: हाँ, और एक बार एक कथा के अनुसार ऐसा आता है कि एक श्राप किसी को दे दिया था कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो फिर वो काशी चले गए थे क्योंकि काशी इस दुनिया में नहीं आता है, वो तो भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ है।
2: अच्छा।
0: हाँ, तो अगले जो बात है, पेड़ लगाने से बढ़ती है सुख शांति। घर के आंगन में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर पाप नाशक और यशस्वी हो जाता है। अगर पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा हो तो इससे यश बढ़ता है। वहीं घर के उत्तर दक्षिण में पेड़ हो तो सुख शांति बढ़ती है और बीच में हो तो मधुर जीवन बनता है। तो ये देखो बेलपत्र की इतनी महिमा,
1: इतना महिमा। राजेंद्र जी, इस पे मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँगा क्योंकि ऐसा हुआ, कह सकता हूँ ना
0: जी? हाँ,
1: ऐसा हुआ। एक बार मैं इंडिया गया, आज से बहुत साल पहले की बात है, कुछ 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर दिल्ली में सफ़र करते करते हम लोग पहुँचे गांधी जी का, जहाँ पर उनको देहांत हुआ था,
0: राजघाट, जहाँ पे उनको सम्मान से रखा गया है।
1: नहीं, राजघाट पे तो वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया।
0: अच्छा,
1: ना, जहाँ वो म्यूजियम बनाया गया।
0: ओके, हाँ,
1: म्यूजियम
0: ठीक है।
1: तो हम वहाँ गए तो वहाँ पर हम पीछे में, और क्योंकि बगीचा बढ़िया बनाया गया ना।
0: हाँ।
1: तो वहाँ एक इतना बड़ा सा पेड़ था, और उसमें गोला गोला सा फल की तरह लटके
0: बड़े,
1: ये बेल पत्र का फल इतना भारी भारी, और क्या उसे भी चढ़ाया जाता है या नहीं?
0: हाँ, वो बेल पत्र का जो फल है वो तो चढ़ा है ही जाता है। बेल पत्र मतलब पत्ता और बेल पत्थर मतलब फल, उसको बेल पत्थर बोलते हैं, पत्थर जैसा मजबूत होता है।
1: हाँ,
0: वहाँ उसको भी भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, पूजा में चढ़ता है।
1: ओके ओके,
0: फल के रूप में।
1: शांता जी, अगर इस पे आप कुछ नई दलांस में हम सबको सुना सकते तो बहुत अच्छा होता।
2: हाँ, हम तैयार है।
1: तैयार है तो राजेंद्र जी, शांता जी इसी वृतांत अंतर्गत कुछ नई दलांस में चलाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, और उसके बाद में हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: जरूर जरूर।
2: हाँ जी, तो यहाँ से हम दच भाषा में नई दलांस में बिल व पत्र के बारे में कहूँगा। बेलव पत्र हेफ अन हेल स्पेशल रिलाट सी मेथ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा इज डोल ऑफ बेलव पत्र ऑफ द बेल ब्रादरन। आज अन पर्सोन मेत अ हेल्दर हेज दूत लॉर्ड शिवा बेत एन अन बेल पत्र आन बीत आन द शिवलिंग सेहन द हेयर हैंड मेत आलस वत है वेंस। दारोम इज बेलव पत्र een van de belangrijkste ingrediënten die wordt gebruikt voor de aanbidden van Lord Shiva. Bilwebladeren zijn van de houten appelboom. Dit blad is driebladig, wat de heilige drie-eenheid betekent: Brahma, Vishnu en Mahesh. Het betekent ook dat drie ogen van Lord Shiva. Volgens Shiv Mahapuran is de bel het symbool van Lord Shiva. En dat is een beetje in het kort uitgelegd wat belwapatra is en voor wie het gebruikt wordt.
1: दोस्तों, जैसे आपने सुनी कि शांता जी भी नीदरलैंड्स में, जो हमारे बच्चे खास करके जो हिंदी भाषा और नहीं समझते हैं, हमारे सरनामी भी नहीं समझते हैं, तो छोटा रूप में शांता जी भी कोशिश करके, खोज करके और आपको नीदरलैंड्स में इस बारे में सुनाए। राजेंद्र जी, कौन सा गीत अभी आप रखने वाले, क्योंकि आपने कह रहा था कि धमाकेदार गीत आने वाले हैं।
0: हाँ, धमाकेदार जो गीत है वो है जय जय शिव शंकर सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा भजन है भगवान शंकर का, और वही हम रखने वाले हैं, सब लोग सुनेंगे।

जय जय शिव शंकर। आपने बहुत ही अच्छा जो अभी भजन सुना है, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम। आज जो श्रोताओं आप जो सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत का जो, तो सबसे पहले हम एक शुरुआत करते हैं स्त्रोत से। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिनी महाकाल ओंकार ममलेश्वर।

0: ஓம் கிருஷ்ணேஷாச்சிவாலை ஏதானி ஜோதிர்லிங்கானி சாய பிராதா பட்டினேனரா சப்தஜனம் கிருதம் பாபம் ஸ்மரணேனா வினஷ்யதி. இன் ஜோதிர்லிங் கா ஜோ 12 ஜோதிர்லிங்கோ கா ஜோ ஸ்மரண கர் லேதா சுபே சாம் உன்கே சப் பாப் நஷ்ட ஹோ ஜாதே ஹை கேவல் ஸ்மரண மாத்ர சே ஹி. இஸ் பிரகார் பகவான் சங்கர் கே ஜோதிர்லிங்கோ கி மஹிமா ஹை. இஸ் ஸ்ரோத் கே ஜாப் மாத்ர சே வியக்தி கோ சிவஜி கே சாத் ஹி சபி தேவி தேவதாவோ கி கிருபா பிராப்த ஹோ ஜாதி ஹை. ஜோ பி வியக்தி இன் ஸ்ரோத் கோ நியமித் ஜப் கர்த்தா ஹை உசே மஹாலக்ஷ்மி கி கிருபா பி ஹமேஷா பிராப்த ஹோதி ஹை. க்யா ஆப் ஜானதே ஹை பகவான் சிவ கே 12 ஜோதிர்லிங் தேஷ் கே அலக் அலக் பாகோ மே ஸ்தித் ஹை.
1: राजेंद्र जी जरूर जानता हूँ, थोड़ा से जरूर जानता हूँ, क्योंकि भारत एक ऐसा दुनिया है, इतना बड़ा देश है जहाँ पर ना कि श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग पर और भी लिंग है ना.
0: हाँ, भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंग तो है ही हैं, बहुत सारे जो और लिंग हैं. तो ज्योतिर्लिंगों की कुछ लोगों का कहना है, जो महापुरुषों का कहना है और कुछ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उनका कहना है कि इनका दर्शन जरूर करना चाहिए. तो संजय जी, आप बताइए कि आपने कितने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं.
1: राजेंद्र जी जरूर, मैं मेरे मुझसे तो अभी तो जवान हूँ, अभी तो जीवन के प्रारंभ हुआ है, अभी तो ज्योति का प्रकाश में छोटा सा ज्योत जल रहा है और प्रकाश आने वाले है. तो जरूर, पहला दो ज्योतिर्लिंग हमने जो गुजरात शहर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर शिव जी का बड़ा सा मूर्ति है नागेश्वर
0: सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ है.
1: हाँ जी,
0: एक सोमनाथ है और दूसरा नागेश्वर है.
1: हाँ, सोमनाथ और नागेश्वर, तो यही दोनों का अभी दर्शन हुआ है. और ख़ास करके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ है ना राजेंद्र जी, तो जहाँ जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि बेलपत्र वहाँ पर और चांदी वाला बेलपत्र मिलता है.
0: हाँ,
1: तो वो चांदी वाला बेलपत्र आप हर बार धो करके स्नान उसे करा करके और फिर चढ़ा सकते कहते.
0: चांदी वाला बेलपत्र जिसके बाहर में चांदी का वक्र बना होता है.
1: हाँ जी
0: हाँ, तो वो लोग वैसे करते हैं कि उसको हर बार धो के उसी को छुड़वाते हैं.
1: जी, तो हमारे सुनने वालों ये इस बात को जानते या ना हो तो ये बात भी जान ले कि अगर आप गुजरात का ज्योतिर्लिंग और का दर्शन करने के गए तो ये मत भूलना अपने लिए लेकर आना वो चांदी वाला, और वहाँ मिलता है बेलपत्र, तो आप अपने लिए हमेशा प्रयोग कर सकेंगे. और जो सोमनाथ है वो उसका तो वृतांत तो बड़ा अद्भुत है राजेंद्र जी.
2: तो संजय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके बात पे, जैसे आप कहने कहा ना कि चांदी का बेलपत्र, तो जैसे हमारे यहाँ हॉलैंड में नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे भी सोनार के लगे जाकर ऐसे चांदी वाले बेलपत्र बना सकते हैं.
1: मेरे ख्याल से मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये शायद राजेंद्र जी इस पे कुछ कह सकेंगे.
0: हाँ, हम यही कहेंगे कि जो जिस जगह की जो महिमा होती है, उस जगह से वो चीज़ ली जाए तो उसका ज़्यादा
2: असर
0: नहीं, उन लोगों का ज़्यादा पता होता है कि कैसा क्या बनाना है. यहाँ मुझे नहीं लगता कि
2: अच्छा,
0: नीदरलैंड में सब लोग चांदी का किस प्रकार से बनाएंगे.
2: अच्छा,
0: तो आपको अगर चांदी का बेलपत्र चाहिए तो आपको भारत से ही लेना चाहिए.
2: अच्छा,
0: और नागी वो पे
1: नागेश्वर,
0: नागी शम दारुके बने, दारुके बन का बन के बगल में नागेश्वर धाम है.
2: अच्छा, तो उसमें कोई धातु मिलाते होगा.
0: चांदी धातु है ऑलरेडी, और जब आप वहाँ पे जाते हैं नागेश्वरम दारुके वन में, तो वहाँ पे एक वस्त्र पहनाते हैं. अगर आपको पूजा करनी अंदर और किसी का काल सर्प योग अगर है
2: जी,
0: तो वहाँ पे पूजा करके उसका काल सर्प योग समाप्त हो जाता है. हाँ, नाग नागिन का जोड़ा की जोड़ा मिलता है चांदी का, उसको वहाँ पे लेके वहाँ पे पूजा होता है. उस पूजा करने के बाद काल सर्पयोग जो होता है उसको दूर हो जाता है. तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है वहाँ पे जाते हैं, मैं भी गया हूँ. मैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया, तो मैंने काल सर्पयोग के लिए नहीं गया, मैं ऐसे दर्शन के लिए गया था. तो मैंने ये इस प्रकार से देखा.

0: तो इस पर कहते हैं महाकाल जी, महाकाल कहते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरे विश्वास हूँ, ये कहता है महाकाल जी।
1: सुंदर रूप से जो अपना पिठाड़ा से निकाल कर और शांता जी ने हम सब के लिए और सुनाए। राजेंद्र जी, शांता जी इसी प्रकार से हम सब के लिए लेते आएंगे और हम सब की सुंदर सुंदर और कहावतें जरूर सुनाए। राजेंद्र जी, आगे के कार्यक्रम क्या है और
2: आगे
1: क्या
2: का कार्यक्रम
1: आप सुनाने
2: है?
1: वाले हैं।
2: इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं कि कौन से द्वारिका, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। सोमनाथ, सोमनाथ की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि श्लोक में भी सोमनाथ ही आया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है,
1: सबसे बड़ा,
2: सब पहला ज्योतिर्लिंग।
1: राजेंद्र जी, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग,
2: सोमनाथ के तो आपने दर्शन भी किए हैं,
1: किया, पर वहां पर जब चले जाओ ना, बिल्कुल उसके पास है ना, क्या बोले,
2: समुद्र के किनारे,
1: समुद्र
2: में,
1: के किनारे
2: जी, गुजरात में,
1: गुजरात के किनारे, समुद्र के किनारे शीतल हवा बह रहे हैं और वहाँ पर सबसे मूल्य बात यह है कि हम लोग का दर्शन वहाँ हुआ आरती का।
2: हाँ,
1: तो आरती इतना विशाल रूप से वहाँ होता है
2: जी,
1: कितना भीड़ भाड़।
0: भारत में जहाँ आरती होता है शाम में, सुबह शाम में, ऐसे तो सुबह में और शाम में ऐसे तुम घूमोगे कोई आदमी ऐसे नहीं देखेगा, बट जब वक्त होता है
1: आरती के समय पे,
0: तो दाव नहीं पड़ता है कि कहाँ तुम हो, चलने के लिए दाव नहीं होता वहाँ,
1: तो राजेंद्र,
0: इतना श्रद्धालु से सब आ जाते हैं।
1: तो ऐसा चीज हॉलैंड में क्यों नहीं बनाया जाता? राजेंद्र जी,
2: आप हॉलैंड के महाराज आप हैं, आप बनाइए, हॉलैंड में आपका पूरा हक है बनाने का, बनाइए आप हॉलैंड में।
1: ऐसा होना चाहिए कि यहाँ हॉलैंड में भी कुछ बनना चाहिए कि लोग जाने कि अभी आरती को जाना है और
2: हाँ,
1: जा करके पूरा कार्यक्रम आरती का।
2: तो आप बताते रहे थे कि जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के हमारी महाराज हैं वो बनाना चाह रहे हैं एक मंदिर
1: जी,
2: तो उसी मंदिर में इस प्रकार से अभी से आप, आपके पास तो संदेश रेडियो से बोलना है और इतना बजे आरती होगी तो सब लोग आ सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। वो मंदिर जल्दी से जल्दी बने और यहीं से आप अनाउंस करें कि इतना बजे आज आरती होगा इस प्रकार का, तो आप उसमें
1: कि आरती का कार्यक्रम हॉलैंड देश में भी होए।
2: हाँ, होए, जरूर होए।
1: चलो आगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में।
2: हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं है, पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने 6 रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने ही की थी।
1: ये दक्ष प्रजापति कौन है राजेंद्र जी?
2: हाँ, दक्ष प्रजापति जो हैं वो भगवान ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष प्रजापति राजा थे और सती के पिता हैं और भगवान शंकर के ससुर हैं। तो दक्ष प्रजापति,
1: ये वही दक्ष प्रजापति है।
2: हाँ
1: जी जी जी जी, तो कथा के अनुसार हम सब कई बार ओ तो यही
2: ये वही दक्ष प्रजापति हैं
1: जी, तो उन्होंने श्राप दे दिया था चंद्रमा को।
2: हाँ
1: ओके, तो आगे
2: 6 रोग होने का श्राप दिया था।
1: 6 रोग?
2: हाँ,
1: रोग कहते हैं बीमारी का,
2: 6 रोग एक बीमारी का नाम है, उसमें पूरा स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है।
1: ओके,
2: हाँ, तो उस इसलिए चंद्रमा को आप जब देखते होंगे तो उनमें थोड़ा धब्बा दिखाई देता है।
0: वाकई में?
1: अच्छा, तो राजेंद्र जी हमें तो थोड़ा से और जल्दी करना है।
2: हाँ, तो इसके बाद हम चलते हैं मल्लिकार्जुन पे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो मल्लिकार्जुन जो है आपका आंध्र प्रदेश में है और हैदराबाद से 150 किलोमीटर आगे है, आपको बीच जंगल में बहुत बड़ा जंगल मिलता है और उस जंगल की विशेषता ये है कि जब आप जाएंगे तो आपको एक जंगल के जो टोल टैक्स है वो लेना पड़ेगा और वो टोल टैक्स आपको जब ले तो उसको आप जो टोल की पर्ची देते हैं आपको हाँ। वो फेंकना नहीं, जंगल का सफाई का ध्यान रखते हैं वो लोग।
0: अच्छा।
2: तो एक सीख मिलती है वहाँ से कि आप उस पर्ची को संभाल के रखिए, जब 100 किलोमीटर पार हो जाता जंगल तो उसके बाद आपको वो पर्ची वापस देनी है। तो जब आप पर्ची वापस देंगे तो वो कागज़ के बदले आपको पैसा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कागज़ को कहीं इधर उधर नहीं फेंका, संभाल के रखा, तो उससे एक जंगल की खूबसूरती बनी रही। किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और जब भी आपको मौका लगे कोई डस्टबिन मिले तब ही डालना चाहिए। तो उस जगह से ये भी अपने को एक सीखने को मिलता है, एक सीख सीखने को मिलती है।
1: तो राजेंद्र जी, इस बात पे तो मुझे भी कुछ याद आ गया कि ऐसा हुआ एक बार कि हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, आगरा जा रहे थे
2: जी,
1: दिल्ली से। तो टोल हम लोग खरीदे ना
2: हाँ,
1: तो वो रिटर्न का था
2: हाँ।
1: पर ये हुआ कि बस खरीदे, बस थोड़ा दूर गए, बस जेब से निकाल करके उन्होंने फेंक दिया कागज
2: हाँ।
1: लौटने पे इतना मुसीबत हुआ क्योंकि बस आप खरीद सकते हैं दूसरा बार, वो खरीदना भी पड़ा
2: हाँ।
1: पर उन्होंने ये प्रश्न रखा कि आपके क्यों नहीं है रिटर्न का, क्योंकि वो गाड़ी दिल्ली का था और उसको पता था कि ये उस तरफ से आए हैं
2: हाँ।
1: तो काफ़ी गड़बड़ हुआ। तो ये एक संदेश है कि आप अगर टोल का जो कार्ट यानी कि जो पर्चा लिए हैं तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए और अपना प्रकृति को उसमें कोई प्रकार से कचरा आदि ना छोड़े।
2: जरूर।
1: तो तीसरा लिंग का नाम क्या है राजेंद्र?
2: महाकालेश्वर।
1: महाकालेश्वर
2: हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया आपको मल्लिकार्जुन के बारे में,
1: बता दो।
2: वहाँ पे लड्डू मिलते हैं बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े लड्डू,
1: उतना बड़ा, वो तो हमारे सिर की तरह है ना
2: हाँ, सिर से थोड़ा छोटा रहता है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लड्डू आपको 4 लड्डू मिलता है। वो लड्डू एक आप खाइए, एक अपने साथ जो उसको खिलाइए, 2 घर ले आइए, एक रिश्तेदार को दीजिए, घर में दीजिए। एक लड्डू से बहुत सारे लोग खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े लड्डू वहाँ पे मिलते हैं।
1: वो स्पेशल चीज़ है
2: हाँ, स्पेशल चीज़। तो जो लोग जाना चाहते हैं तो उनको अगर पहले से कोई जानकारी हो, मंदिर के थोड़ा पीछे एक बहुत बड़ा जगह बना है जहाँ पे लड्डू बनते हैं और वही लड्डू की एक पर्ची लेनी पड़ती है, पर्ची दो लड्डू लो पैकेट में एकदम बढ़िया से पैकिंग करके वो लोग देते हैं और वही लोग बैठ के भी खाते हैं।
0: अच्छा।
2: तो जैसे किसी लोग का व्रत रहता है, उपवास रहता है, वो एक लड्डू खा ले तो पूर्ण हो जाता है
1: पूरा
2: हाँ पूरा।
1: ओ, तो ये बात तो हमें पता
2: हाँ, लड्डू वाली बात जरूर आप जब जाएं हाँ। वहाँ पे तो ये जरूर ध्यान रखें,
1: ध्यान रखें। पर हाँ। ये है खास करके मल्लिकार्जुन,
2: मल्लिकार्जुन में।
1: चलो तो आगे देखते हैं, मल्लिकार्जुन जो जाएंगे तो लड्डू का ध्यान होगा,
2: जरूर ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं महाकालेश्वर की। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। भस्मारती का आप जानते हैं
1: ना?
2: भस्म मतलब एस, आस,
0: आस,
2: राख,
1: राख,
2: राख से आरती होती वहाँ पे, भस्मारती उसको बोलते हैं। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। तो जब आप महाकालेश्वर में जाएंगे
0: जी,
2: तो 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से अगर जाएंगे तो 1 किलोमीटर पहले ही ट्रेन छोड़ देती है और वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। रास्ते में भांग बहुत अच्छी मिलती है, अगर आप थोड़ा सा भगवान शंकर का प्रसाद लेना चाहते हैं तो 1 गिलास भांग पीजिए।
1: तो राजेंद्र जी, एक भांग का गीत चला दो।
2: हाँ, भांग जरूर चलाएंगे, भांग का गीत। और इस प्रकार से आप वहाँ पे जब जाएंगे तो, और सुबह सुबह वो भस्म आरती 4 बजे होती है,
1: सुबह सुबह
2: हाँ 4 बजे होती है,
1: 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उसे कहते हैं,
2: ब्रह्म मुहूर्त में। और जब आप जाते हैं महाकाल में तो वहाँ पे गंगा जल ले जाते हैं लोग, तो गंगा जल वहाँ पे जाने नहीं देते, एकदम नज़दीक दूर से आप एक पाइप लगा है, जब रास्ते में जाते हैं वहाँ से उस पाइप में डाल देंगे तो वो घूमते हुए वो सीधा आपका चढ़ जाएगा वहाँ। आपने यहाँ डाला पाइप में,
1: हाँ जी,
2: एक बर्तन में, बर्तन से पाइप लगाया, पाइप से डायरेक्ट आप जाएंगे तो डायरेक्ट वो गंगा जल या जो भी आप दूध है या
1: चढ़ाना चाहते हैं है,
2: तो वहाँ चढ़ जाएगा। तो आप उसको वहाँ पे टीवी में देख लेंगे कि वहाँ पे चढ़ गया
1: उतना दूर।
2: हाँ उतना दूर। तो वैसे घूम के जाना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन लगती है, कभी कभी तो 4-5 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी 6 घंटे भी लगते हैं, डिपेंड करता है कि कितने लोग आए
0: जी।
2: और वहाँ 2 रास्ते, एक रास्ता आगे की तरफ से VIP दर्शन, उसके 500 का पर्ची कटता है, और एक लंबा रास्ता है, तो ज़्यादा करके लोग लंबा रास्ता जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें भगवान शंकर के जो आप कष्ट को सह के जाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है।
1: ठीक है, तो एक गीत की ओर बढ़ते हैं राजेंद्र जी।
2: जरूर एक गीत की ओर बढ़ते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं महाकाल के बारे में?
1: महाकाल के बारे में जरूर कुछ और संदेश दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लड्डू का विशेष कार्य नहीं है ना, यहाँ कोई स्पेशल मिठाई जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं?
2: हाँ, वहाँ पे बहुत सारे हर प्रकार का है, लेकिन स्पेशल मिठाई नहीं, वहाँ पे कोई स्पेशल मिठाई नहीं ऐसे चढ़ाया जाता है, लेकिन और वहाँ पे भगवान शंकर के जो बूटी है वो चढ़ाई जाती है।
1: भगवान शंकर का बूटी, और ये कुछ खास बूटी है जैसे कि चंदन आदि और ऐसा?
2: नहीं, भगवान शंकर की बूटी तो होती है भांग और धतूरा।
1: भांग और धतूरा।
0: और ये धतूरा क्या होता है?
1: शांता जी ने पूछ लिया धतूरा क्या होता है राजेंद्र जी।
2: गंगाराम पांडे जी के घर के बाहर जाएंगे तो वहाँ मिला धतूरा लगा हुआ है।
1: वहाँ तो मैंने देखा है भाटा ऑटोमेटिक लगा।
2: नहीं नहीं, धतूरा भी लगा है।
0: धतूरा भी लगा है। हाँ।
1: तो चलो वो जा करके शांता जी जरूर आप वहाँ पर जा करके और देख सकते हैं कि किस प्रकार से और शिव जी का धतूरा, क्योंकि ये एक चीज है जो हॉलैंड में खूब होता है।
2: हाँ
1: हाँ, ये खूब होता है यहाँ हॉलैंड में धतूरा, और सोमर में सिर्फ ना
0: जी।
1: हाँ, पर हॉलैंड में ये खूब होते हैं, और ये हम सब के यानी ज़्यादा तादाद में लोग अपने घर पे ये बोए हैं।
2: अब आगे बढ़ते हैं एक महाकाल का ओम नमः शिवाय का जो भजन चल रहा है वाला है उसकी ओर बढ़ते हैं।

0: ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర ధామ మంగళం. ఓం మంగళం ఓంకారేశ్వర మంగళం, మహాకాళేశ్వర మంగళం. అభి ఆపనే మహాకాల్ జో సునా హై, భజన సునా హై, బహుత్ హి అచ్చా హై. ఇస్కే బాద్ బఢ్తే హై ఆగే ఓంకారేశ్వర కి తరఫ్. ఓంకారేశ్వర జ్యోతిర్లింగ మధ్య ప్రదేశ్ కి ప్రసిద్ధ శహర్ ఇందోర్ కే సమీప స్థిత హై. జిస్ స్థాన పర యహ జ్యోతిర్లింగ స్థిత హై ఉస్ స్థాన పర నర్మదా నదీ బహతీ హై ఔర్ పహాడీ కే చారో ఓర్ నదీ బహనే సే యహాం ఓం కా ఓంకార్ బన్తా హై. ఓం కా ఆకార్ జబ్ బన్ జాతా హై తో ఓం శబ్ద కి ఉత్పత్తి బ్రహ్మా కే ముఖ సే హుయీ హై. ఇస్లీ కిసీ భీ ధార్మిక శాస్త్ర యా వేదో కా పాఠ ఓం కే సాథ్ హీ కియా జాతా హై. యా జ్యోతిర్లింగ ఓంకార్ అర్థాత్ ఓం కా ఆకార్ లియే హుయే హై. ఇస్ కారణ ఇసే ఓంకారేశ్వర నామ సే జానా జాతా హై. తో జబ్ ఆప్ జాయేంగే వహాన్ పే ఓంకారేశ్వర్ మే తో వహాన్ పే ఏక నదీ కో పార్ కర్నా హోతా హై, పుల్ బనా హువా హై, ఉస్ నీచే ఉతర్నా హోతా హై, నీచే ఉతర్ కే ఫిర్ థోడా సా ఊపర్ చడ్నా హోతా హల్కీ పహాడీ హై.
1: ఆప్నే బోలే కి పుల్ బనా హువా
0: జీ.
1: పుల్ క్యా చీజ్?
0: పుల్ నా జానిలా
1: నా.
0: పుల్ మతలబ్ ఫ్లై ఓవర్.
1: ఫ్లై ఓవర్
0: హా. ఉస్కో ఏక జో నదీ హై
1: హా
0: ఉస్కే ఊపర్ సే పుల్ బనా హై ఔర్ ఫిర్ ఉస్సే సబ్ సే నీచే ఉతర్నా హై. జబ్ నీచే నహానే నహానా హై ఔర్ జబ్ ఆప్ ఉస్ నదీ మే నహా లేతే హై తో బహుత్ భూఖ్ లగ్తా హై.
2: అచ్చా
1: ఐసా
0: హా ఐసా హై ఔర్ ఫిర్ వహాన్ పే ఊపర్ చడేంగే
2: హా
0: తో భగవాన్ ఓంకారేశ్వర్ కే దర్శన్ కరేంగే. ఉస్కే బాద్ దూసరా బగల్ మే ఏక ఔర్ పిండీ హై ఉన్కే దర్శన్ కర్తే హై. ఇస్కే బాద్ వహాన్ పే బహుత్ సారే హోటల్ బనే హై, ఖానా ఖానే కే లియే ఢాబా బనే హై, లోగ్ బహుత్ భూఖ్ లగ్తీ హై తో వహాన్ పే ఖానా ఖాతే హై.
1: తో ఇస్మే
0: నర్మదా కే జో నదీ హై ఉస్మే
1: నర్మదా నదీ గంగా చ జమ్నా చైవా గోదావరి నర్మదా సింధు కావేరీ జల్ సన్నిధిం కరు. తో సభీ శ్రేష్ఠ నదియో మే నర్మదా నదీ పే
0: హా. గంగేశ యమునేశ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలస్మిన్ సంధిమన్ కురు. ఈ మంత్ర ఆప్ స్నాన్ కర్తే సమయ భీ
1: ప్రయోగ కర్ సకతే,
0: ప్రయోగ కర్ సకతే. తో నర్మదా కా జల్ పీనే సే భూఖ్ జ్యాదా లగ్తా హై.
1: ఓ తో ఉస్మే వో శక్తి హై,
0: వో శక్తి హై.
1: తో అబ్ తో జానా పడేగా వహాన్. శాంతా జీ ఆప్ గయే నర్మదా నదీ?
2: నర్మదా వే నహీ గయే, హమ్నే గయే ఉత్తర్ కే కాశీ కే కేదార్నాథ ధామ హమ్నే గయే ఔర్ వారణాసీ కాశీ విశ్వనాథ హమ్నే పహుంచి దర్శన్ హుయే.
1: దో దర్శన్ హో గయే,
2: దో దర్శన్ హో గయే.
0: బహుత్ అచ్చా హై, బహుత్ హి జల్దీ ఆప్ సబ్ జ్యోతిర్లింగో కే దర్శన్ కరేంగే. ఆగే బఢ్తే హై కేదార్నాథ్ కి తరఫ్. జబ్ శాంతా జీ నే కేదార్నాథ్ కా నామ్ లియా తో ఆగే తురంత కేదార్నాథ్ కి హి బారీ ఆ గయీ.
1: జైసే ఆప్కో కర్నా హి పడేగా రాజేంద్ర జీ.
0: హా జరూర,
1: క్యూంకి
2: బహుత్ అచ్చా కేదార్నాథ్.
1: శాంతా నే కేదార్నాథ్ కా దర్శన్ కర్ లియా
2: జీ. 15 కిలోమీటర్ హై చల్నే కే లియే, అగర్ ఆప్ చల్నా నహీ చాహతే
0: హా. పహలే 14 కిలోమీటర్ థా లేకిన్ అబ్ ఔర్ థోడా జ్యాదా హో గయా క్యూంకి బీచ్ మే ఏక జో పహాడీ టూట్ గయీ థీ వో పూరా హిస్సా హి బహ గయా థా. అబ్ బహుత్ దూర్ సే రాస్తా తో वो फिर 2 किलोमीटर ज़्यादा हुआ और गाड़ियाँ उस जो रास्ते जो जगह जहाँ पार्किंग थी वो भी पूरा ख़त्म हो गया.
2: अच्छा।
0: तो 5 किलोमीटर पहले पार्किंग करते हैं तो कुछ लोग वहीं से पैदल जाते हैं तो 22 किलोमीटर हो जाता है. और जो लोग वहाँ जो लोकल गाड़ियाँ हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें जाते हैं
2: हाँ।
0: तो 5 किलोमीटर कम हो जाता है. अभी मैं जब पहले भी गया था और बाद में भी गया
2: हाँ।
0: 2014-13 के पहले जो था वो अलग है, अभी जो अलग है. तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इस समय जाने के लिए.
2: अच्छा,
0: पहले रास्ता कम था, अभी ज्यादा हो गया है
2: जी.
0: लेकिन भगवान जब आपने देखा है कि त्रासदी से पहले पूरा वो सब एकदम क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है उसके पीछे आके एक बहुत बड़ा पत्थर आया और वहाँ पे कुछ भी जो मंदिर है उसको कोई भी क्षति नहीं हुई. तो अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा होता तो भगवान शंकर लोग जो कहते हैं कि अपने ही रक्षा न करें तो दूसरे के कैसे करेंगे. लेकिन उन्होंने देखा और वो पानी पूरा अंदर आया और वो वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर बनाया था पांडवों ने, इसलिए वहाँ पे पानी एक तरफ से आया दूसरी तरफ से निकल गया और मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई. और उसके पीछे जो बेग आता पानी का
2: हाँ।
0: वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर आकर लग गया
2: जी.
0: तो उससे पानी डिवाइड हो गया लेफ्ट एंड राइट एकदम मंदिर पे. देखते हैं कि मंदिर को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं,
2: कुछ नहीं हुआ,
0: कुछ नहीं हुआ,
2: कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. मंदिर है वाकई में अभी चुप क्यों देखी
0: हाँ. अभी जो लोग जाते हैं दर्शन के लिए तो वो पत्थर का दर्शन जरूर करते हैं और वहाँ पे तो बहुत पूजा होती है.
2: अच्छा हाँ,
0: केदारनाथ की बात चल रही थी. केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुखों ज्योतिर्लिंगों में आता है. यह उत्तराखंड में स्थित है. बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है. केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है।
1: राजेंद्र जी, ये अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछ लूं कि जो 2013 में जो वृतांत हुआ था ना,
0: जी
1: यही केदारनाथ के पास हुए थे?
0: केदारनाथ में ही हुआ था,
1: वही हुआ था।
2: हाँ,
1: एकदम बहुत गंभीरता से वो आए।
0: हाँ, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा, केदारनाथ के ऊपर एक ताल था बहुत बड़ा, वो टूट गया था और एकदम पानी बेग से आया। तो जब पहाड़ों का कोई ताल टूट जाता है, बड़ा ताल, और पानी का जो खुल जाता है एकदम बेग से चलता है, तो वो पूरा लेके चलता है अपने साथ,
2: वो सब अपने
0: मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे साफ सफाई करके करते हुए करता है। लेकिन वो इतना ज्यादा सफाई कर दिया था कि बहुत ही ज्यादा, वो बात तो दोहराने
1: नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि वो
1: काफी व्यक्ति का मृत्यु भी हुए थे,
0: बहुत लोगों का, हजारों लोगों का। लेकिन वो जो नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम तो केवल द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी के केदार क्षेत्र का भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भीमा शंकर की तरफ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे स्थित में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। भीमा शंकर पहाड़ी के ऊपर है, एकदम काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है और फिर नीचे जाना पड़ता है।
2: अगर ये तीर्थ करना चाहते तो एक एक बार में ये सभी तीर्थ नहीं कर पाओगे? काफ़ी दूर है।
0: हाँ, बहुत दूर है। भारत के कुछ पूरब में, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर में, कुछ दक्षिण में है, तो एक बार में तो नहीं कर सकते हैं
2: ना,
0: आपको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर आप एक ही बार में भी करना चाहे, यहाँ से नीदरलैंड से जाके भारत में, तो हो सकता है।
1: राजेंद्र जी, यहाँ से जैसे हम सब सत्संग करने को जाते हैं तो लोग हैं जिन्होंने कर चुके हैं।
2: हाँ,
1: यहाँ हॉलैंड में कई कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं, पर अभी तो हमारा दूसरा हुआ है और शांता जी आपका भी दूसरा हो चुके हैं,
2: दो हो गए।
1: तो अभी देखेंगे कि कैसे आगे हम सब बढ़ेंगे, क्योंकि राजेंद्र जी आपने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके।
0: हाँ जी,
1: द्वादश।
0: हाँ, मैं तो 12 का तो सबका कर चुका हूँ, लेकिन कई ज्योतिर्लिंग ऐसे जिनका कई बार भी कर चुका हूँ। जैसे दिल्ली से नज़दीक जो ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं उनका, और उत्तराखंड के जो 4 धाम है, तो मैं तो हर साल जाता था चारों धाम में।
2: हाँ।
0: तो अभी कोरोना के चलते हुए नहीं जा पाया हूँ, जाऊँगा। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है वो दिल्ली से नज़दीक है, वो एक रात की जर्नी है और एक दिन में पूरा करके और अगली रात वापस आ सकते हैं। तो हम
2: अच्छा।
0: लोग अधिकतर जाया करते थे महाकाल में,
2: महाकालेश्वर
0: जी। तो इस प्रकार का जो आपने सुना भीमा शंकर का, फिर इसके बाद आते हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी को वाराणसी भी बोलते हैं और काशी भी बोलते हैं। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्मस्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। जैसे आपका अभी क्वेश्चन था कि प्रलय आने पर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि बना रहेगा, क्योंकि ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे, इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे।
1: जी, तो ये हुआ काशी विश्वनाथ। और
0: तो मैंने देखा यहाँ का महत्व, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, हमने साउथ के लोग भी और नॉर्थ के लोग भी, काशी में जब उनका उम्र ज़्यादा होता तो वो कहते हैं हम काशी में ही अपना शरीर का त्याग करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग अपना घर लेके और काशी में रहते हैं। तो काशी भगवान शंकर जब ये प्रलय आएगा, अभी इसमें भी आया है वृतांत की प्रलय आएगा, तो भगवान शंकर काशी में, काशी को अपने त्रिशूल में उठा लेंगे फिर, और जब प्रलय समाप्त हो जाएगा फिर नीचे रख देंगे, जमीन पर रख देंगे। तो काशी वैसे ही बनी रहेगी। और काशी में कहा जाता है कि काशी में मरने वाला व्यक्ति
2: जी
0: स्वर्ग को जाता है, और महगर में मरने वाला व्यक्ति नरक को जाता है, ऐसी मान्यता थी। लेकिन कबीर ने इसको एकदम खंडन किया और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आप महगर में मरने के बाद भी स्वर्ग को ही जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो काशी में मरने के बाद भी नरक को जा सकते हैं। तो कबीर दास चले गए थे मरने के लिए महगर में। महगर एक स्थान है, इस ये शिक्षा यही मिलती है कि अच्छे कर्म करो, जहाँ जहाँ भी आप हैं वहीं आपको स्वर्ग की जैसी ही अनुभूति होगी। अनुभूति का मतलब महसूस
2: जी।
0: तो आप नीदरलैंड में कुछ बोलना चाहते हैं डच में इस बारे में?
2: नहीं
1: बोले, नहीं बोलना चाहते।
0: ओहो, तो कोई बात नहीं, आप हम चलते हैं एक।
1: शांता जी क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी आप एक दूसरा गीत की ओर बढ़ रहे हैं।
0: हाँ,
1: और जरूर गीत चलाते चलो, चलते चलो, चलाते चलो। और यहाँ की ये बात है कि जैसे आपने कहा कि दू खुद कैक नियोम बोले खुद है
2: जी।
1: काशी विश्वनाथ ऐसा ज्योतिर्लिंग जिनका जानकारी हम सबको प्राप्त हुए, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है राजेंद्र जी कि हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग के बात आज हो रहा है
0: जी।
1: तो अभी हम सब कितने पहुँचे?
0: हाँ, अभी
1: छः हो गया होगा।
0: हाँ, हम अभी एक काशी विश्वनाथ शंभू की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, छः तो हो ही चुका है।

0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप लोगों ने अभी सुना है काशी विश्वनाथ के बारे में पूरा भजन से भी और भगवान शंकर के मंत्र से भी और पूरा नमः शिवाय का ओंकारेश ओम ओम से भी। आगे बढ़ते त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। तो इस प्रकार ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबकेश्वर की महत्व है। वैद्यनाथ
1: राजेंद्र जी, यहाँ तो कुछ क्योंकि त्र्यंबकेश्वर यहाँ का महत्व तो आप बताए नहीं, इसमें यहाँ कुछ खास चीज पे हम सबको ध्यान देना।
0: त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् विवंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो त्र्यंबकेश्वर का महत्व जो वही है कि त्र्यंबकम् यजामहि, जो त्र्यंबकम् त्र्यंबकम् जो लोग त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् विवंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, अमृत्व की प्राप्ति चाहते हैं, मृत्यु को जीतना चाहते हैं, वो भी इस त्र्यंबकेश्वर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो लोग एकदम इस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, तो ज़रूर त्र्यंबकेश्वर का जाप करना चाहिए।
1: बहुत धन्यवाद आपके राजेंद्र जी जो और ऐसे विशेष बात।
0: महामृत्युंजय मंत्र है त्र्यंबकेश्वर जो है,
1: महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, तो इससे कितना और श्रेष्ठता कितना भलाई हम सबके हो सकते हैं। तो आगे कार्यक्रम में
0: आगे बढ़ते हुए वैद्यनाथ की तरफ चलते हैं। वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में नौवां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, झारखंड पहले बिहार में था, अब अलग हो गया है, पूर्व में बिहार प्रांत के संभाल प्रगना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। ये झारखंड में एक पड़ता है और वहाँ पे आप अपना सामान बैग इत्यादि अंदर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो जाती है। लेकिन वहाँ पे वैद्यनाथ मतलब वहाँ पे जो शिवलिंग है उस पे एक लेप लगाया जाता है हर्बल मेडिसन का।
2: वही तो मैं, ये नाम कहते हैं ना वैद्यनाथ, वैद्यनाथ वैद्य कहते हैं डॉक्टर को,
0: आयुर्वेदिक डॉक्टर को वैद्य कहते हैं।
2: हाँ।
0: और उस हर्बल का जो लेप होता है उसको एकदम भिगा के और उन पे हर समय रखा जाता है। तो मैं गया हूँ जब वहाँ पे, तो मैंने वो देखा है
2: वैद्यनाथ में,
0: वैद्यनाथ में लेप लगा हुआ हर्बल का।
2: अच्छा।
0: हाँ,
2: तो वो लेप वो शिवलिंग पे लगाते हैं?
0: शिवलिंग पे लगाते, एकदम ठंडक रखता है।
2: अच्छा।
0: इसके बाद है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। संजय जी ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन किया है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान पर स्थित है। धर्मशास्त्र में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारका पुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
2: श्रद्धा और विश्वास के बात है ना।
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत हम सबको पहले सुना देते तो और अच्छा होता।
0: गीत के बोल है जय जय शिव शंकर, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने गाया है, बहुत ही मधुर गीत है। हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ।

0: बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, बहुत ही अच्छा बजा रहा लोगों ने, ईमानदारी से भी बजाया और बजाते ही रह गए। आगे बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। संजय जी, आप तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए हो, आपको तो पूरा पता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका में स्थित है।
1: हाँ, ज्योतिर्लिंग में तो आप एकदम बस सही कह रहे हैं शांता जी की, एकदम गुम हो गए। तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी कि हम सबको जाना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का ना
0: जी।
1: तो उतरे वहाँ गुजरात एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे उतरे तो गाड़ी लिए और गाड़ी लेकर के हम लोग को जाना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन से पहले हम लोग को ले गया वहाँ पर द्वारका,
0: भेंट द्वारका,
1: भेंट द्वारका,
0: भेंट भेंट
1: भेंट द्वारका, उसके बारे में कुछ।
0: भेंट द्वारका का मतलब है,
1: क्योंकि हम गए तो वहाँ तो बस ऐसा हुआ राजेंद्र जी कि हमने गया बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ पर, बस वो ले गया सीधे मुझे, हम सबको वो जहाज में,
0: पानी वाले जहाज,
1: पानी वाला
0: जी,
1: और उसमें जा करके हम लोग बैठ गए। जबकि जहाज के वहाँ उस पर लिखा था 150 कैपेसिटी, उसमें 400 आदमी।
0: हाँ, तो 150 की कैपेसिटी में 400 आदमी जाएंगे तो उसका तो आनंद ही अलग हो जाएगा।
1: आनंद तो अलग था
0: पूरा, ऐसा ऐसा भी हाँ।
1: और वहाँ जा करके हम सब वेद द्वारका, वेद भेंट द्वारका ना,
0: भेंट भेंट द्वारका।
1: उसके बाद में हम लोगों का सीधा वहाँ वहाँ दर्शन हुआ। तो उसके बाद में हम लोगों को किसी कुंड, वहाँ किसी कुंड है जहाँ
0: पानी चढ़ता है,
1: हाँ, तो वहाँ ले गया गया रुक्मणी कुंड मेरे ख्याल,
0: रुक्मणी कुंड,
1: हाँ। तो वहाँ पर हम सब गए, फिर जा कर के द्वारका में हम लोग पहुँचे।
0: हाँ, जो भेंट द्वारका का, वहाँ पे एक शंकराचार्य का पीठ भी है और बाएं साइड में शंकराचार्य का पीठ है और दाएं साइड में भेंट द्वारिका, वो द्वारिका का मंदिर है। और जब समुद्र के अंदर जाके और आगे भेंट द्वारिका है, तो भेंट द्वारिका में तंदुल चढ़ते हैं, तंदुल यानी चावल चढ़ते हैं, कच्चा चावल चढ़ता है। वो क्यों चढ़ता है कच्चा चावल, कि जब सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों मित्र थे और सुदामा जी बहुत गरीब हो गए थे
2: जी,
0: क्योंकि उन्होंने चने चबा लिए थे, खा लिए थे पहले ही, और चुपके से, और झूठ बोला था कृष्ण से कि मेरे दांत जो है
2: जी,
0: कटर कटर इसलिए कर रहे हैं कि ठंड ज़्यादा है। तो उनको मित्र के साथ गुरु से कपट, मित्र से चोरी या हो निर्धन या हो कोड़ी, तो गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए, ये तो फिर आपको निर्धन होना पड़ेगा तो कोड़ी होना पड़ेगा। तो भगवान जो सुदामा जी जो है निर्धन हो गए थे,
2: तो
1: जब निर्धन माने
0: जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं,
1: गरीब
0: गरीब हो गए
1: पोती सुमा
0: जी। तो जब वो उनकी पत्नी ने कहा कि आपके तो मित्र कृष्ण है, आप कहते हो कि मेरे मित्र कृष्ण है, तो आप उनसे एक बार दर्शन करने जाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कपड़े भी ठीक ढंग के नहीं हैं और वो कहाँ वहाँ के राजा हैं और मैं यहाँ सुदामा हूँ, इस प्रकार का कैसे जाऊँ। तो उनकी वाइफ ने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा चावल ही लेके जाइए भेंट के लिए। तो उनकी बीवी ने, उनकी पत्नी ने पड़ोस के घर से थोड़ा सा चावल लिया था, मांग के लाई थी और एक पोटरी में बांध के भेज दिया था द्वारिका में, तो चले गए थे। तो इसलिए वहाँ पे भगवान कृष्ण ने फिर उन्होंने छुपा के रखा चावल अपनी हाथ के नीचे की, बताओ ये इतने बड़े वो है, मैं इनको चावल दूंगा तो कैसे लगेगा। तो उन्होंने उनको चावल एकदम छीन लिए वहाँ से, कि आज आपकी वो आदत आज भी नहीं गई छुपाने वाली, भाभी ने चावल दिए हैं, तंदुल दिए हैं और फिर भी आप उनको छुपा रहे हैं। और एकदम तीन मुट्ठी चावल थे, दो मुट्ठी खा ली
2: जी।
0: और जब दो मुट्ठी खा ली तो जो रुक्मणी जी थी उन्होंने रोका कि अरे आप क्या करने जा रहे हैं
2: जी।
0: दो मुट्ठी खाने का मतलब यहाँ पे ये था कि एक मुट्ठी खाने से एक लोग का राज, दूसरे मुट्ठी खाने से दो लोग का राज दे दिया सुदामा जी को, और तीसरी मुट्ठी पर उन्होंने कहा कि रोक दिया कि आप हम लोग कहाँ रहेंगे
2: जी।
0: तो इतनी बड़ी मान्यता चावल की है भेंट द्वारिका में
2: जी।
0: इसलिए वहाँ पे चावल ही चढ़ते हैं, आज भी चावल चढ़ते हैं
2: जी जी जी।
0: तो ये भेंट द्वारिका का है।
1: तो कहने के तात्पर्य ये है कि दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने को जाए तो जरूर इस स्थान को भी देख करके आना चाहिए।
0: हाँ, जरूर इस स्थान को देख कर आना चाहिए। लेकिन जब आप नागेश्वर जाते हैं उसके आगे ही है, और जब आप जाते हैं इस तरफ तो अलग अलग दोनों कोने पे सोमनाथ एक कोने पे, नागेश्वर बीच में भेंट द्वार के उस कोने पे है, तो इधर से आपको उधर जाना पड़ता है। तो आप जब जाएंगे तो गुजरात के तीनों तीर्थ को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने ही की थी। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया है। आपको पता होगा कि जब स्थापना भगवान राम ने जब सीता जी को रावण उठा के ले गए थे और उन्होंने वहाँ पे भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए समुद्र के किनारे में, तो उसी समय रावण को बुलाया गया। रावण ही वहाँ पंडित थे
2: जी,
0: क्योंकि
2: जी।
0: उस प्रकार का पंडित कोई था ही नहीं।
2: बिल्कुल।
0: तो भगवान राम ने उस ज्योतिर्लिंग की वहाँ पे स्थापना करी और पूजा करी।
2: हाँ।
0: तो इसलिए उसका बहुत बड़ा विधान है।
2: हाँ।
0: इसके बाद बढ़ते हैं आगे घृणे, और जब आप वहाँ पे रामेश्वरम में जाए तो वहाँ के बगल में श्रीलंका है। 30 किलोमीटर की दूरी में एक स्थान है धनुषकोटी। धनुषकोटी से 30 किलोमीटर बोट से आप श्रीलंका जा सकते हैं, लेकिन श्रीलंका के लिए आपके पास वीजा होना जरूरी है। चाहे तो भारत का भी हो तो भारत वाले को भी वीजा लगता है।
2: अच्छा।
0: या कोई देश का भी, उनको वीजा लेना पहले पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन वीजा जरूरी है। इसके बाद बढ़ते हैं घृणेश्वर। घृणेश्वर मंदिर है का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी द्वारा व गुरु व श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। एकनाथ महाराज जो हुए हैं उनकी समाधि भी इसी स्थान पे है।
1: बोले तो एकनाथ,
0: एकनाथ एक बहुत बड़े स्वामी हुए हैं। एक केवल वो एक एक ही चीज़ को मानते थे एकनाथ, इसलिए उनका नाम पड़ा
1: एकनाथ।
0: हाँ, वो गुरु है और उनकी समाधि भी उसी स्थान पे है। तो इस प्रकार आज जो वृतांत रहा ज्योतिर्लिंगों का, इस प्रकार से रहा। और मुझे अति खुशी होती है इस बात से कि लोगों ने बड़े अच्छे से सुना होगा और इस चीज़ का लाभ भी उठाएंगे भारत में जाके और मनन करेंगे कि ज्योतिर्लिंगों की विशेषता क्या है।
1: तो इसमें भगवान शंकर के और कुछ न कुछ संदेश इसमें छोटा रूप में और रखा गया। तो दोस्तों, जरूर इसके इस कार्यक्रम से अपना जीवन में, जीवन का ज्योति में कोई प्रकार से प्रकाश आपके जो आ सके तो जरूर उन्हें प्रयोग करें। राजेंद्र जी, आगे का संदेश क्या है? क्योंकि
0: आगे का संदेश तो हमारा यही है कि जब जैसे ही हमारा समय यहाँ पे 2 घंटा बीतता है, हमारा लास्ट वाला जो कार्यक्रम रहता है वो लगता है कि उससे पता चल ही जाता है कि लागी छूटे ना अब तो सनम। मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी ने बहुत ही अच्छे और उसमें मधुर स्वर में इसको गाया है। काली टोपी लाल रुमाल 1959 यानी कि 1959 में ये सॉन्ग गाया गया था और आज भी वैसा का वैसा है 60 साल होने के बाद भी। तो क्यों ना हम उसकी ओर बढ़ते हुए आप लोगों से विदा लेंगे। बढ़ते हैं उस गीत पर।

जिंदगी छोटी नहीं होते हैं, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश सुने, और आशा यही है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम जरूर सुनते रहना। और हमारे साथ जो शांता जी जो अपना संदेश को दिए है, और राजेंद्र जी जो पनीर के पीछे अभी बैठे हुए है, तो इन दोनों के साथ हम भी, मैं हूँ संजय, आप सभी को हार्दिक से अभिनंदन, नमस्कार।

हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। हमें जब ये गीत ही केवल सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जाने का भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के साथ इतना मैं घुल मिल जाता हूँ, लेकिन जाना पड़ता है, दूर ही जाना पड़ता है इसी समय, और अच्छा सा एक कोई कार्यक्रम लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरा सबके लिए प्यार भरा नमस्कार, शुभ संदेश।